0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी। स्वरंजनी में आज आपने सुना राग अहीर भैरव। तबले पर संगत दी थी कमलेश्वर प्रसाद ने और सारंगी पर शाहनवाज खान ने। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 6 बजने को हैं। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे सबसे पहले हिंदी में समाचार, उसके बाद 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसी के साथ 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट

0: upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with the Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Prime Minister Narendra Modi is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron in what is expected to be a highly productive and wide-ranging visit. Notably, this marks India's 13th participation at the G7 summit and the Prime Minister's 7th consecutive participation. India's regular participation at the G7 summit reflects the increasing recognition of New Delhi's role and contributions in addressing global challenges related to peace, security, development and environmental sustainability. A report.
2: India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement as well as initiatives such as Bharat Innovates in Nice and India's role as the official AI partner country at upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing and resilient supply chains. Significantly, many of the priorities identified by the French G7 presidency, including reducing imbalance, international partnerships and artificial intelligence, closely align with India's strengths and interests. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
1: Earlier yesterday, India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also linked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन 6:40 पर, और 6:45 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस का। श्रोताओं, आइए सुनते हैं चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार।

यह घटना उस समय की है जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास स्कूल के छात्र थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बालपन से ही बेहद कुशाग्र एवं तीव्र बुद्धि के थे। उनकी कम उम्र में ही उच्च स्तर की गतिविधियां व कार्यकलाप प्रत्येक व्यक्ति को हैरानी में डाल देते थे। एक बार स्कूल में उनकी कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें धर्म के विषय में बताऊंगा। आखिर हर विद्यार्थी को यह ज्ञात होना चाहिए कि धर्म का क्या उद्देश्य होता है। धर्म और शिक्षा भारतीय संस्कृति को मजबूत करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। अध्यापक बोले, आप मुझे बताएं कि धर्म का क्या उद्देश्य है, धर्म का क्या अभिप्राय है। अध्यापक की बात सुनकर एक विद्यार्थी बोला, सर, धर्म का अभिप्राय है पूजा करना। इसके बाद दूसरा विद्यार्थी बोला, सर, धर्म हमें सुख और शांति प्रदान करता है। अब तीसरे विद्यार्थी ने कहा, सर, धर्म का अभिप्राय है ईश्वर में गहरी आस्था और शुद्ध व सात्विक मन से नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करना। इसके बाद अध्यापक डॉक्टर राधाकृष्णन से बोले, बेटा, अब तुम बताओ। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने स्थान पर खड़े हुए। वह बोले, सर, धर्म हमें सिखाता है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अशिक्षितों को पढ़ाना चाहिए और जो अनाथ हैं उन्हें भरपूर प्यार देना चाहिए। वास्तव में ऐसे काम करना ही धर्म का उद्देश्य है और यही असली पूजा है। नन्हे से बालक के मुंह से यह बात सुनकर अध्यापक दंग रह गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वे सभी विद्यार्थियों से बोले, देखना, यह बच्चा एक दिन भारत का नाम अवश्य रोशन करेगा। जो बालक अभी से धर्म के बारे में गूढ़ ज्ञान रखता है, वह आगे भी इस देश को नई रोशनी दिखाएगा। अध्यापक की बात आगे चलकर सच साबित हुई। यही बालक राधाकृष्णन अध्यापक की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता और प्रतिभा से आगे बढ़ते रहे और अपने अध्यापक की बात पर खरे उतरे। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षक जगत को सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से

0: दिवस के रूप में मनाने की इच्छा की थी। उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस, बालकांड भाग 88।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखरसम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिक व्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोक सेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। कार्बो काडो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा

द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दाम्बुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने सुना बागेश्री सरकार द्वारा नजरूल गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

हवाएं भी चल रही हैं और मौसम भी सुहाना हो गया है, सुबह भी हो गई है और इसी सुबह के साथ आपके बीच आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आरती कौर लेकर कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग। तो आप सब भी जाग गए होंगे जैसे ये मौसम जाग गया है और जैसे मैं जाग गई हूँ। तो खूबसूरत गीतों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, साथ में आपके साथ बहुत सारी बातें भी होती रहेंगी और हमेशा की तरह आपके लिए छोटी सी प्यारी सी कहानी भी मैं लेकर आई हूँ। फिलहाल ये सब चीजें आप तक पहुँचेंगी लेकिन उसके पहले ये खूबसूरत सा गीत।

आइए ना दोस्तों, आप सबके लिए हाजिर है खूबसूरत सी कहानी। नाम है मुस्कान का सिक्का। ये कहानी शुरू होती है बनारस के अस्सी घाट पर, जहाँ पर एक बूढ़े दादाजी हैं जिन्हें सब मिश्रा जी कहते थे, और वो चलाते थे अपने चाय की एक छोटी सी दुकान। उनकी दुकान की एक खासियत थी, वहाँ चाय सिर्फ पैसों से नहीं मिलती थी, बल्कि मिश्रा जी की दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड भी टंगा था जिस पर लिखा था, एक कप कड़क चाय, लेकिन साथ में चाहिए 10 रुपए के साथ एक सच्ची मुस्कान। जी हाँ, 10 रुपए की चाय पीना तो आसान है, लेकिन उसके साथ एक सच्ची मुस्कान देना अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो एक बार की बात है कि एक सुबह शहर की भागदौड़ से थका हारा परेशान सा एक नौजवान लड़का, जिसका नाम अमित था, वो वहाँ आकर बैठा। अमित की नौकरी जो थी वो दांव पर लगी हुई थी, कुछ ना कुछ पंगा हो गया था और उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसने मिश्रा जी से कहा कि एक चाय दीजिए, और हाँ, मेरे पास पैसे हैं, मुस्कान नहीं है आज, मैं बहुत दुखी हूँ। मिश्रा जी मुस्कुराए, उन्होंने कुल्हड़ में मस्त सी एक अच्छी सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई और अमित की तरफ बढ़ा दी। अमित ने चुपचाप चाय ले ली, चाय पी। चाय तो वाकई लाजवाब थी, तनाव भी उसका थोड़ा कम हो गया। और जब चाय खत्म हुई तो जैसा कि होता है कि हम पैसे देते हैं, अमित ने भी अपनी जेब से निकाल कर 10 का सिक्का टेबल पर रखा। तो मिश्रा जी ने उस सिक्के को वापस ढकेल दिया। उन्होंने कहा, बाबूजी, इस दुकान का एक नियम है, अगर चाय पीने के बाद भी चेहरा उदास रहे तो मैं पैसे नहीं लेता, क्योंकि मुझे तो सच्ची मुस्कान चाहिए ही चाहिए, वही मेरी कीमत है। क्योंकि मेरी चाय का मकसद जेब भरना नहीं, दिल का थोड़ा हल्का करना है, और मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है। अमित ने हैरान होकर मिश्रा जी की तरफ देखा। उनकी सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे की झुर्रियाँ, आँखों में एक अजीब सी सुकून वाली जो मुस्कुराहट थी वो देखी, और उसे देखने के बाद मिश्रा जी जो थे वो उसे ही देख रहे थे और कहते, बेटा, परेशानी तो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, पर इस 5 मिनट की चाय के वक्त को तो अपनी परेशानी से आज़ाद कर दो। जी हाँ, अक्सर हम लोग भी तो यही करते हैं। उन्होंने ये छोटा सा ज्ञान उसे दिया और साथ ही कहा कि ये सरल जो बातें हैं ना, ये लोगों को जल्दी समझ नहीं आती, तो तुम इस बात को ज़रूर समझो। अमित ने भी इस बात को समझा, उसको दिल को छू गई ये बात, और उसके चेहरे पर अपने आप ही एक खूबसूरत सी हंसी आ गई, एक सच्ची मुस्कान आ गई। मिश्रा जी भी उसके साथ खिलखिलाकर हंसे और बोले, बस मिल गई मेरी चाय की कीमत, अब ये 10 रुपए वापस रखो जेब में और अपनी इस मुस्कान को आज रास्ते में मिलने वाले किसी और इंसान को

तो दोस्तों, आप सब ने ये कहानी सुनी और मुझे यकीन है इस कहानी को सुनने के बाद आपके चेहरे पर भी एक अच्छी सी, प्यारी सी, सच्ची सी मुस्कान आ गई होगी। अक्सर हम सब यही तो करते हैं। जी हाँ, वैसे अमित के नजरिए से देखा जाए तो उस दिन सिर्फ चाय पीकर नहीं वो निकला, बल्कि अपनी जिंदगी जीने का एक नजरिया लेकर भी निकला। बस यही तो बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, हम कल की चिंता में आज की सुबह की धूम, चिड़ियों की चहचहाट और हर चीज। अगर आपके घर में कोई आपसे प्यार से बात करता है, जैसे कि माँ के हाथ के चाय के स्वाद के प्याले को तक को भूल जाते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीजें हम करते हैं ना, इसमें हम अपना जो कल है वो तो बर्बाद करते ही हैं, लेकिन सबसे पहले बर्बाद करते हैं हम अपना आज। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आपके रास्ते में कोई भी आए तो उस उदास चेहरे को एक छोटी सी मुस्कान मुफ्त में देकर आइए।

आपकी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल दे, है ना? क्योंकि दान करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप राशन दान कर सकते हैं, आप बहुत सारी सामान दान कर सकते हैं, पैसा, दौलत, शौहरत, जो कुछ भी आपके पास है, आप बहुत कुछ है तो वो दान कर सकते हैं। लेकिन सही मायने में किसी को दिल से हंसाना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, इससे बड़ी मुस्कान और इससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस बात पे गौर फरमाइएगा। और मैं आपको जो ये सिखा रही हूँ वो मिश्रा जी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी यही है। मेरी आज की जो कहानी है उसका नजरिया आपको यही सिखाना कि सच्ची मुस्कान दान करते कैसे हैं। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम तो भाई ऐसे ही हैं।

हाँ दोस्तों, कुछ ज्यादा ही टेंशन लेके हम सब बैठ जाते हैं, तो उस टेंशन से अपने आप को दूर कीजिए। और अपने आप को अगर कोई और मुस्कुराने का आपको वजह नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, शीशे के सामने खड़े होकर एक बार आप नकली में भी मुस्कुरा के देखेंगे ना, आपको थोड़ी देर बाद खुल के हंसी आ ही जाएगी, चाहे अपनी सूरत पे, चाहे अपनी हालत पे, या चाहे आपकी उस बनावटी मुस्कान पे ही सही। लेकिन वो बनावटी मुस्कान देख लेना, बहुत जल्द एकदम सच्ची मुस्कान में बदल जाएगी। और एक बात और याद रखिएगा कि हम सब की आदत क्या होती है कि हम टेंशन को इतनी जगह अपने सर में दे देते हैं कि उसकी वजह से बोझ के तले हमारी हंसी कहीं खो जाती है। वो हंसी हमारे अंदर ही होती है, वो खुशी हमारे अंदर ही होती है, बस उसे आपको ढूंढना है। और उसके लिए आपको सबसे पहले खुद से

जी हाँ, चार कदम ही नहीं बल्कि बहुत सारे कदमों के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत सारी मुस्कुराहट के साथ आप आगे बढ़ते रहें जीवन में, यही मैं चाहती हूँ। वैसे ये जो गाना है ये है फिल्म पीके से, और इस फिल्म में आपको पता है कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत। उनका जो कैरेक्टर था उसने एक लाइन बोली थी, एक बहुत खूबसूरत सी लाइन बोली थी कि जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल की बात करें, आगे लम्हे बुला रहे हैं, क्यों ना उनके साथ चले। जी हाँ, ये लाइन जो है सच में अपने आप में बहुत ही ज्यादा दिल को सुकून देने वाली है। अक्सर हम पीछे जो चीजें हमारे साथ गलत हुआ है उसके बारे में सोच के जो अपने साथ आज हो रहा है और जो आने वाला वक्त है उसमें भी बुरा कर लेते हैं। तो बस इस बात को भूल जाइए कि आपके साथ जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो आपके पास आज है और जो आगे हो सकता है उसके लिए आप मुस्कुराना जरूर सीख सकते हैं। तो पुरानी बीती बातों को भूल जाइए, आगे बढ़िए और सच में अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ेंगे और हर सुबह को आप इस तरह से शुरुआत करेंगे तो सच में आपका दिन खूबसूरत हो जाएगा। फिलहाल आपका दिन भी खूबसूरत बना रहे, आपकी जिंदगी भी खूबसूरत बनी रहे, इसी के साथ अपने दोस्त आरती को दीजिए इजाजत का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
4: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
3: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास

0: के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा

0: सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन

0: यूनियन में मुनाकिदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडा और बरतानिया के वजीर आजम और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत ने डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर बरामदी महसूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 62,370 मैट्रिक टन LNG लाने वाला भारतीय जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाके अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बमबार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया, जबकि बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के आला तरीन सरकारी एजाज द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बावकार एजाज पर स्लोवाकिया के सदर, स्लोवाकिया की हुकूमत और वहां के अवाम का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। एजाज कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि ये एजाज भारत के 1,40,00,000,000 अवाम और भारत व स्लोवाकिया के दरमियान देरीना दोस्ती के नाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एजाज भारत और स्लोवाकिया के अवाम के दरमियान मौजूद खलूस, एतमाद और मोहब्बत के मजबूत रिश्तों का मजार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये एजाज दोनों ममालिक की आने वाली नस्लों को भी बाहमी दोस्ती और खसूसी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की तरगीब देगा और इस दोस्ती को आइंदा भी फरोग देता रहेगा। भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। ब्रेटिस्लावा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हमनसब रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के बाद फरीकैन ने अहम शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ताल्लुकात का फरोग मुश्तरका अकायद, तरजीहात और मुस्तकबिल की अलामत है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबों में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए MOU से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको ने भारत की तेज रफ्तार इकतसादी तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर आज़म के दौरे ब्रातिस्लावा के दौरान कई तारीखी फैसले किए गए, जिनमें भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को नुमायां तौर पर मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म जनाब मोदी के दौरे के दौरान कुल 11 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में दिफा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सियाहत, क्वांटम कम्युनिकेशन और मसनूई ज़हानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी और आला तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ने की तवक्को है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस जाएंगे। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में दो रोज़ा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू नई शराकत दारियों का क़याम और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़र नौ तश्कील है। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीस आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के साथ दोतरफा मीटिंगें भी मुतवक्की हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की दावत पर फ्रांस के उस शहर का दौरा कर रहे हैं जिसे एक नहायत अहम, नतीजा खेज और हमा जहद दौरा करार दिया जा रहा है। काबिले जिक्र बात यह है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में ये भारत की 13वीं शिरकत होगी, जबकि वज़ीर आज़म मोदी मुसलसल 7वीं मरतबा इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंसों में भारत की मुसलसल शिरकत आलमी उमूर में मुल्क के बढ़ते हुए रोल और अहमियत की अक्कासी करती है। यह आलमी सतह पर अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती पायदारी से मुतालिक चैलेंजों से निमटने में भारत के रोल और खिदमात के एतराफ़ की अक्कासी भी करती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: G7 मुल्कों के लिए भारत की स्ट्रेटजिक अहमियत अब ठोस इक्तसादी और तकनीकी शराकत दारियों की सूरत में मजीद नुमाया हो रही है। इसका सबूत हाल ही में तय पाने वाला भारत यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहदा है, जबकि नीस में मुनक़िदा भारत इनोवेट प्रोग्राम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत का सरकारी AI पार्टनर मुल्क के तौर पर इंतखाब भी इसी सिलसिले की अहम मिसालें हैं। ये पेशरफ जाहिर करती है कि G7 ममालिक भारत को सिर्फ एक बड़ी मंडी के तौर पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इख्तरा, मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत सप्लाई चेन्स के शोबों में एक काबिले एतमाद शराकत दार के तौर पर भी देख रहे हैं। अहम बात यह है कि फ्रांस की G7 सदारत की जानिब से तय की गई मुतअद्दिद तरजीहात, जिनमें आलमी अदम तवाज़ुन को कम करना, बैन अल-अक़वामी शराकत दारियों का फ़रोग और मसनूई ज़हानत AI शामिल हैं, भारत की सलाहियतों और मफादात से करीबी मुताबिकत रखती हैं। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फ़ीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पिछले साल 6 और 7 मई के दरमियानी रात शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, अलबत्ता वो दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने एक नई सुर्ख लकीर खींच दी कि अगर दहशतगर्दी को हुकूमत की पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका बराह रास्त और सख्त जवाब दिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी से तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। 9 और 10 मई को भारत दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने एक ही ऑपरेशन में एटमी सलाहियत रखने वाले मुल्क के 11 फजाई अड्डों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान फ़दाइया के तकरीबन 20% बुनियादी ढांचे तबाह कर दिए गए। इस ऑपरेशन के बाद आलमी सतह पर भारत को वसी हिमायत हासिल हुई और मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने भारत के मौक़िफ की तायीद की। ये भारत की बढ़ती हुई आलमी साख और बैन अल-अक़वामी बयाने पर उसकी मजबूत गिरफ्त की अक्कासी करता है। आकाशवाणी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, जो जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी की भरपूर तारीफ की।
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
5: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
4: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
3: एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर साबित कदम है और इस पर पूरी संजीदगी और अज़्म के साथ अमल पैरा है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: हुकूमत ने अपने ताज़ा तरीन 15 रोज़ा जायजे में डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल की बरामद पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आज से नाफिजुलअमल डीजल बरामदी ड्यूटी 13.05 रुपये फी लीटर से 14 रुपये फी लीटर कर दी गई है, जबकि एटीएफ की बरामद पर महसूल 9.05 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर बरामदी ड्यूटी 1.05 रुपये फी लीटर पर बरकरार है। घरेलू खपत के लिए क्लियर किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटियों की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रकीक कुदरती गैस एलएनजी लाने वाला जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। एलएनजी बरदार ये जहाज 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इस जहाज का इंतजाम शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया की क्यादत में कायम एक कंसोर्शियम कर रहा है। ये इन अव्वलीन तजारती जहाजों में शामिल है जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई जंगबंदी माहदे के ऐलान के बाद आबनाए हुरमुज को पार किया है। जनूबी कैलिफोर्निया के सहराए मोहावी में अमरीकी फिजाइया के फौजी अड्डे से परवाज होने के फौरन बाद एक B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार सभी 8 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतला दी कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:20 पर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर तैयारा गिरने के बाद हंगामी टीमें जाए वकूफ पर पहुंची। फिजाई फुटेज में बेस के रनवे के करीब सहरा से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। इसके बाद एयरफील्ड को बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे में स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 साला गोलकीपर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इससे पहले ग्रुप जी के इफ्तिताही मैच में बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी तरह आज सुबह अमरीका के मियामी स्टेडियम में ग्रुप एच के मुकाबले में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच भी 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया फैजल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के स्लोवाकिया दौरे की खबर को अवलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और स्लोवाकिया में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, नरेंद्र मोदी और रॉबर्ट फिको की मुलाकात, दिफा मसनूई ज़हानत, तजारत और सकाफती रवाबित को नई समझ देने का ऐलान। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर को शाया करते हुए पहली सुर्खी बनाई है, ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन माहिदा स्विट्ज़रलैंड में 19 जून को बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। अमेरिका ईरान मुफाहमत नामे का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खैर मकदम किया। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, जेवर एयरपोर्ट का इफ्तिताह, किसानों को पहली परवाज़ का तोहफा, मुल्क भर के 45 शहरों के लिए यहां से परवाजें दस्तयाब होंगी।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। स्लोवाकिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अता किया है। वज़ीर आज़म मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में मुनाक़िदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडा और बरतानिया के वज़ीर आज़म और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत ने डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर बरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर बरामदी महसूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी लाने वाला भारतीय जहाज दिशा बाहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाकई अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
6: ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर, शोडाउन स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरे 15 सेकेंड। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सलीम कुमार द्वारा सितारवादन राग अहिरी तोड़ी। सहयोगी कलाकार रहेंगे

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना सलीम कुमार द्वारा सितार वादन, राग था अहिरी तोड़ी और तबले पर थे अमान अली खान।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
4: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। विश्वविद्यालय स्थानीय नवाचार, लोकल इनोवेशन को बढ़ावा देने और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के प्रमुख केंद्र हैं। वे स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, अनुसंधान को क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान से जोड़ते हैं और युवा उद्यमियों को इनक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए सुनिए ये भेंटवार्ता, स्थानीय नवाचारों और कौशल विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका। डॉक्टर मनोज कुमार, कुलपति, सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान, पूर्व निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक।

0: निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: अगर हम बात करें स्वदेशी ज्ञान प्रणाली और इनके आधुनिक विज्ञान के समन्वय की, तो इसमें विश्वविद्यालयों को किस तरह की अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, और आप अपने अनुभव से एज ए वाइस चांसलर क्या सजेस्ट करेंगे छात्र छात्राओं के लिए, लोगों के लिए और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए?
2: जी, जैसा कि आपने बताया कि केंद्र सरकार ने बहुत भारी बजट अनुष्ठान के लिए और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए रखा है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इस पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको काफी एक्टिवेट हो गई है, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक ये अभी नहीं पहुंची है। तो हमें बहुत काम करना है, हमने बहुत काम किया है, पॉलिसी बन के इकोसिस्टम बन गया है, शहरी परिप्रेक्ष्य में स्टार्टअप का बड़ा रिवाज है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम यूनिकॉर्न्स भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन रूरल परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र में ये ज्ञान अभी पहुंचा नहीं है। वहां पे आज भी हर एक आदमी सरकारी नौकरी की चाहना रखता है, तो अगर हमने जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स प्रोड्यूस करने हैं तो हमें भारतवर्ष के हर एक गांव-गांव में स्टार्टअप इकोसिस्टम को ले जाना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है हमारी हिंदुस्तान में तकरीबन 1000 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं और दे आर स्प्रेड अक्रॉस द नेशन, उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका हो सकती है इस स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रचार प्रसार करने में, और दे कैन एक्ट एज द फुलक्रम्स, जो एक शीट एंकर होता है जिसके गिरद सारी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम घूमे। तो उसके लिए हमें यूनिवर्सिटीज को फुली ऑन बोर्ड करना पड़ेगा उनके साथ, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र की हैं चाहे वो सरकारी क्षेत्र की हैं, उनको ऑन बोर्ड करके उनको एम्पावर करें ताकि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम हम गांव-गांव तक पहुंचा सके।
1: अगर हम बात करते हैं ग्रास रूट इनोवेशन के, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया में आते हैं कि बहुत सारे इनोवेटिव वे में जुगाड़ सिस्टम के द्वारा कई बार जो इरिगेशन का काम किया जा रहा है, या मोटर में किस तरह से काम करते हैं, या कूलिंग के लिए काम करते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में जो बेहतरीन आइडियाज हैं जो सपोर्ट के अभाव में पनप नहीं पाते हैं, तो क्या विश्वविद्यालय स्तर पर कोई ऐसा रूरल इंक्यूबेशन सेल बनाया गया है या बनाने की योजना है जो इन जमीनी आविष्कारों को या जो विचार हैं उनको वो बढ़ावा दें, उनका पेटेंट में सहयोग करें या उनको बाजार तक पहुंचाने में उसके उत्पाद को मदद करें?
2: देखिए, कई यूनिवर्सिटीज ने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ कि हर एक यूनिवर्सिटी ये जिम्मेवारी ले। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एक क्रिएट करें और हर एक यूनिवर्सिटी की ये ड्यूटी हो कि वो अपने अंदर और थोड़ी बहुत सरकारी उसको ग्रांट मिल जाए कि हम उसके निज़म जो हैं वो बहुत सख्त ना रखें, हम उसको फ्लेक्सीबल से रूल्स बना के हर एक यूनिवर्सिटी को ऑन बोर्ड कर लें, ताकि के जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है या रूरल इनोवेशन है उसकी पेटेंटिंग होनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी है, ताकि वो जुगाड़ जुगाड़ ना रह जाए, उसकी रिफाइनमेंट होके हम एक टेक्नोलॉजी के तरीके से उसको बेच सकें, उसको लीवरेज कर सकें और जो उसका इनोवेटर है वो उसका भरपूर फायदा भी उठा सके। अब विदेश में क्या होता है, अमेरिका जैसे कंट्रीज में जैसे फेसबुक है, मेटा है, लिंक्डइन है, ये सारे वहां से क्यों पैदा हो रहे हैं, हम गांव देहात में क्यों नहीं अपनी टेक्नोलॉजी को, जिस टेक्नोलॉजी को जो हमने नई इजी मेथोडोलॉजी की है, अगर यूनिवर्सिटी का जो लैब टू लैंड हम फार्मूला लगाएं कि जो पहले लैंड टू लैब लेके जाएं, फिर उसको रिफाइन करें, फिर उसको लैंड में करें और साथ के साथ उसकी पेटेंटिंग करवा के जो उसका इनोवेटर है उसको फायदा उठा सके। ये इट शुड नॉट बी इंडिविजुअल ड्रिवन कि एक प्रोफेसर साहब अच्छे हैं वो मोटिवेट होके काम कर रहे हैं, उन्होंने 10 20 50 बच्चों का फायदा कर दिया। हमारी पॉपुलेशन बेस इतना भारी है और हमें अगर प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत 47 की

0: विजन पे काम करना है, तो हमें ऐसे हजारों स्टार्टअप्स चाहिए होंगे। हमें आज जो बच्चा सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है उसको उससे हटाना होगा, उसको एक एंटरप्रेन्योर बनाना होगा और वो कल को चार और लोगों को नौकरियां दे सके।
1: जो बहुत अच्छा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण बात भी कही है कि युवाओं को नौकरी ढूंढने वाला करने वाला नहीं, अब नौकरी देने वाली मानसिकता से आगे बढ़ना होगा। डिजिटल एज चल रहा है और हम कौशल विकास की बात करते हैं, कई बार ऐसी बात सामने आई है कि इंडस्ट्री जो है वो लोगों को नौकरी देना चाहती है लेकिन उनके पास जो निपुण लोग हैं, जो स्किल्ड लोगों की कमी है, जो उन्हें नहीं मिल रही है। तो जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, डिजिटल एज में बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय की बात करते हैं, तो ये जो वर्चुअल लैब्स होते हैं और खास करके जो आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है AI के द्वारा है, इसका उपयोग इस तरह से तकनीकी कौशल के विकास में किया जा सकता है युवाओं के लिए और लोगों के लिए भी, विज्ञान उद्योग और उसके उत्पाद के उपयोग की समझ के लिए किस तरह से आगे लाया जा सकता है, और क्या विश्वविद्यालय उसमें कोई भूमिका निभा सकते हैं?
0: बिल्कुल निभा सकते हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक डिस्कनेक्ट, जो हमारा प्राध्यापक है, जो टीचर है, वो सोचता है कि मेरा काम बच्चों की क्लास लेना है, इनको पढ़ाना है, ये तो एक काम हो गया, उसको बच्चों को जॉब रेडी करना है। आजकल अगर हम सोचें कि सरकार ही सबको नौकरियां देगी, वो संभव नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा हो गया है तो ज्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में ही मिलेंगी, तो जो प्राध्यापक है उसकी ये जिम्मेवारी तो है ही कि वो क्लास ले, साथ में उसको एक इंडस्ट्री कनेक्ट भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री के लोगों को टच में रहे, प्लेसमेंट ऑफिसर्स उनके HR से टच में रहे, उनको अपनी यूनिवर्सिटी में इनवाइट करे, सिलेबस उसके हिसाब से बनाए ताकि बच्चे की ट्रेनिंग इंडस्ट्री के हिसाब से हो, उनको इंटर्नशिप पे भेजे, फिर उनको जॉब फेयर करा के उनकी प्लेसमेंट करवाए। जो भी इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के पास खेतड़ी माइंस हैं, बहुत विश्व विख्यात एशिया की बिगेस्ट कॉपर की माइंस हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को और खुद खेतड़ी की माइंस में लेके गए, अंडरग्राउंड 400 मीटर उतरे, तो जैसे बड़े बड़े चूहे के बिल होते हैं उस तरीके से वो माइंस में जाके ट्रेनें लगी हुई हैं, वो जब आप जाते हैं तो ये वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो उस तरीके से आपको लोकल जिस जिस सुविधा है, कोई भट्टे वाला है, कोई बहुत बड़े हलवाई की दुकान है, जैसे हमारे क्षेत्र में हम चिड़ावा बहुत हमारे पास है, एक लालचंद पेड़े वाले हैं जो विश्व विख्यात उनके, तो वो हमें ये सीखना होगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो आज करोड़पति या अरबपति बन गए हैं और लाखों करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर है। वो अपने आप में एक लर्निंग का एक सब्जेक्ट है कि हमारे क्षेत्र में बहुत हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 5-7 मिठाई वाले ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं कि उनको हमें स्टडी करना होगा, उनसे राफ्ता रखना होगा कि कल को एक ही लालचंद पेड़े वाला नहीं है, अगर उस क्षेत्र में दूध की क्वालिटी अच्छी है तो क्यों ना हम 8-10-15 लालचंद पेड़े वाले ही पैदा कर दें।
1: मतलब उसकी जो तकनीक है, जो बनाने में जो कुशलता है, जो सामग्रियों का एक ना एक रसायन है, उसका सम्मिश्रण है, उसमें ऐसी क्या खासियत है जिसको वो अगर एक बच्चा पढ़े, एक स्टूडेंट पढ़े, तो वो अपना कुछ एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
0: हाँ, जरूरी नहीं है कि पेड़े बनाने हैं, लड्डू बनाइए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप एंटरप्रेन्योर बनिए, पकौड़े तल लीजिए, कई लोगों ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन दैट वाज अ वेरी बिग लेसन। आज हल्दीराम बीकानेर वाला हजारों करोड़ का टर्नओवर है, MBA इंजीनियर्स उनके यहाँ नौकरियां करते हैं, दे आर ग्लोबल ब्रांड्स। आज आप वॉलमार्ट पे USA में चले जाएं, मुस्तफा में सिंगापुर में चले जाएं, तो पूरे के पूरे फ्लोर हल्दीराम के सामान से भरे हुए हैं, तो ये कोई छोटी प्राप्ति नहीं है।
1: जैसे राजस्थान है, वो ग्रामीण भी है, अर्ध शहरी क्षेत्र भी है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैज्ञानिकों की सामाजिक जिम्मेवारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट। आप अपने विश्वविद्यालय में उस क्षेत्र की, जैसे

0: कृषि है, जल संरक्षण है, खेती के उपकरण है जो उस क्षेत्र के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, उनसे किस तरह से अपने बच्चों को एक वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं या करने की कोई योजना बनाते हैं?
1: देखिए, हमने एक हर्बल गार्डन बनाया है हमारी एग्रीकल्चर पे रिसर्च, क्योंकि ये एक अरिड या सेमी अरिड एरिया है, पानी की कमी भी है, तो हम ऐसी प्रजातियों पे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिसर्च कर रहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी क्या चीज लगाएं जो के कम पानी की मात्रा से वो ग्रो कर सके, साथ में वो वाटर के संचयन को मदद करे, कि वो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी हमारे यहाँ एक चैलेंज है। उस एक तो पानी बहुत नीचा है, एक उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, तो हमारी यूनिवर्सिटी अभी इस बात पे रिसर्च कर रही है कि ऐसी कौन कौन से हम पेड़ पौधे प्रजातियां लगाएं ताकि हम इसके एक तो वो फास्ट ग्रोइंग हो, कम पानी लें, और साथ में वहां के पानी के संचयन को मदद करें।
0: जब हम एक सफल विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो उसकी पहचान किन मानकों से होती है?
1: देखिए, मानक तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, लेकिन जो मेरे मानक हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि हम एक तो बच्चों को हम कितना सक्सेसफुल इन, मैं नौकरी एक पैरामीटर है, लेकिन हम अपने उनको जीवन यापन के लिए कितना तैयार कर सकते हैं, आइदर दे बिकम गुड ह्यूमन बींग्स या और दे बिकम गुड एंटरप्रेन्योर्स, दे बिकम गुड सन्स, गुड डॉटर्स एंड लेटर ऑन गुड पेरेंट्स आल्सो। हम एक टोटल ऐसे इकोसिस्टम को तैयार करें, एक ऐसे बच्चे को तैयार करें जो भारत वर्ष के विजन विकसित भारत 2047 की तरफ काम करे, वो एक डिसरप्टिव फोर्स ना हो, वो एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स, चाहे वो नौकरी में जाए, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बने, चाहे वो टीचर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो उसकी चॉइस है, हम उस पे कुछ फोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा शहरी बने।
0: बहुत अच्छा, निश्चित रूप से सफल होना तभी मायने रखता है कि जब नैतिकता का भी विकास हो और सामाजिक रूप से भी उसका फायदा लोगों को मिलता रहे, तभी वो देश को भी उसका फायदा होगा। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने जो ग्रास रूट इनोवेशन है, जो विश्वविद्यालयों की भूमिका है, उसमें किस तरह से एक उद्योग सहभागिता की जरूरत है शैक्षणिक संस्थानों के साथ, ताकि सिर्फ एक रोजगार संबंधी बात न हो बल्कि सामाजिक दायरों में एक नेतृत्व संबंधी भी व्यक्तित्व का विकास हो, इन सब बातों पर आपने नवाचार तकनीक के द्वारा किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है उन सब की बातें की, उन सब के बारे में बताया। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद झाजी, मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: स्थानीय नवाचारों और कौशल विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका, अभी आप इस विषय पर सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। डॉक्टर मनोज कुमार, कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान, पूर्व निदेशक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से भेंट कर रहे थे दिलीप झा। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजिर हाँ अश्विंदर कलेर। अज दे इस प्रोग्राम च असीं सुणांगे कविता पाठ। इस तों इलावा कुछ गीत भी सुनाए जाणगे। जिवें कि तुहानूं पता ही है, अज परिवारां नूं पैसे भेजण वालियां दा कौमांतरी दिवस मनाया जा रहा है, जो विश्व भर च मनाया जांदा है। ये दिन हर साल 16 जून नूं मनाया जांदा है। रेमिटेंस

विदेशों तो भेजण वाली राशि हुंदी है। जो विदेशों च काम कर रहे व्यक्ति जां प्रवासी अपने देश विच रहिंदे परिवार जां रिश्तेदारां ते भाईचारे नूं भेजदा है, तां कि परिवार दा जीवन पत्तर उच्चा चुकन दे नाल नाल परिवारक मैंबरां दीआं जरूरतां पूरियां हो सकण। रोजी रोटी दी खातर इंसान पता नहीं कित्थे कित्थे भज्जिआ फिरदा है, तां कि उह अपने परिवार दा पालन पोषण सही ते सुचज्जे ढंग नाल कर सके ते नाल ही उहनां नूं सारीआं सहूलतां दे सके जिस दी उम्मीद उस तों परिवार करदा है। इस लई परिवारक जिम्मेवारियां नूं समझदे होए हर कोई ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे कमाउण लई विदेशां दा रुख करदा है, क्योंकि विदेशां च जा के उहनां नूं अपनी मेहनत दा मुल ज़्यादा मिलदा है। विदेशां तों अपणिआं लई भेजी रकम परिवार दीआं जरूरतां पूरीआं करदी है, उत्थे ही साडे देश दी आर्थिकता ते आमदन दा मुख स्रोत है। कौमांतरी परिवारक विदेश तों पैसे भेजण दा दिहाड़ा हर साल 16 जून नूं इस लई मनाया जांदा है तां जो लखां प्रवासियों वल्लों दित्ते योगदान ते त्याग नूं याद किया जा सके, जो अपने खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार नूं भेजदे ने ताकि उन्हां दे जीवन पद्धर च सुधार किया जा सके। विदेश च बैठे व्यक्ति नूं सिर्फ अपणिआं दी खुशी ते ख्वाहिशां पूरियां करन दी फिकर हुंदी है, बेशक उस नूं किन्नियां वी मुसीबतां क्यों ना झलणियां पैण। एक माँ भी अपने बच्चों लई की कुछ नहीं करती ते की कुछ नहीं सहारती, ते एक धी लई माँ नाल ही पेका परिवार हुंदा है, पर जदों ये माँ इस दुनिया तो चली जाती है तां उस धी ते की बीतती है। गायक सुरजीत बिंद्रखिया अपने इस गीत च बाखूबी बयान कर रहे ने, माँ मैं हुण नहीं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल। गीत दे बोल लिखे ने शमशेर संधू ने ते संगीतबद्ध कीता है अतुल शर्मा ने।

0: गीत तुसी सुन रहे सी गायक सुरजीत बिंद्रखिया की आवाज़। इस गीत दे बोल लिखे सन शमशेर संधू ने ते संगीतबद्ध कीता सी अतुल शर्मा ने। ते इस गीत नू सुन तो पहला असी गल कर रहे सी अंतरराष्ट्री परिवारक पैसे भेजन दे दिहाड़े बारे। विदेशां यानी कि कैनेडा यूके अमरीका विच वसदे प्रवासियों वालों भेजे गए पैसे पेंडू ते शहरी परिवारां लई आमदनी दा वी स्रोत ने। इन्हां परिवारों वालों भेजी गई राशि देश के भीड़ भैनते यानी कि मुश्किल समय च आर्थिक संकट नाल नजिठण च मदद करती है। इस दिन नूं मनाउण दी शुरुआत अंतरराष्ट्री खेतीबाड़ी विकास फंड वालों 2015 च कीती गई सी। इस तों बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नूं अधिकारक तौर पर मानता दित्ती। बहुत सारे प्रवासी अपनी कमाई नूं विदेशां तों अपने परिवार नूं भेजण लई मोटियां फीसां देंदे ने, पर पिछले कुछ सालों तो संयुक्त राष्ट्र ने डिजिटाइजेशन ते वित्तीय समावेश ते जोर दिता है ताकि प्रवासियों की खून पसीने की कमाई नूं भेजन ते लागत घट करन दे नाल नाल इस नूं सुरक्षित ते जल्दी भेजा जा सके, क्योंकि जिहड़ा विदेश च बैठा व्यक्ति है उही जाण सकदा है कि वह किन्नी मेहनत तंगियां तोशियां चों लंघदा है ताकि वह अपने परिवार को सुख सुविधावां दे सके। त्याओ हुण प्रोग्राम दे सिलसिले नूं अगे वधाउंदे होए सुनदे हां गगनदीप शर्मा तों कविता पाठ।
1: कविता दी इबारत मैं शब्दां कोल गया, आख्या मेरे कोल आउंदे रहा करो, चिर होया कुछ लिख नहीं सकिया। वो हसण लगे बोले मन अंदर चल रही टुट भज तों वध के, किहड़ी इबारत है कविता दी भला। एक होर छोटी जी कविता है रात। घरों तुरिया सां रात मुक्की नहीं सी अजे, घरों तुरिया सां रात मुक्की नहीं सी अजे, परत आया हाँ खंभ फैलाए खड़ी है रात। एक होर छोटी जी कविता मुक्ति। वो कहिंदे सन जहर प्याला चुक सुकरात बन अमर हो जा, वो कहिंदे सन जहर प्याला चुक सुकरात बन अमर हो जा, मैं तेरे इश्क विच रंगिया गया जन्म मरण तो मुक्ति पाई। एक कविता है मिलदी गिलदी रही। कविता तू मिलदी गिलदी रही, दूर ना हो।

0: जावे होंद मेरी विच रचदा नचदा ते बड़ा जचदा। और सारी उम्र वो निक्का जिहा रहिंदा है, सारी उम्र वो निक्का जिहा रहिंदा है, जावे किधरे ना मन विचे रहिंदा है, रखा सांभ के समान कच दा नचदा ते बड़ा जचदा। हर मन विच रहिंदा यह बाल है, आसा सदरां दा रखदा ख्याल है, शाला नज़रां तों रहे बचदा नचदा ते बड़ा जचदा। एक कविता है अंग संग रहिंदा डर। निक्की सी जद उमर डर दा पता ही ना लगदा, निक्की सी जद उमर डर दा पता ही ना लगदा, बदलां विच झातियां मारदे चन्न वांग खेडदे फिरदे हासियां रोणियां संग, सोझी आई निक्के वड्डे संसे घेरन लगे कोमल मन नूं, स्कूल जाण दा आड़ी दे ना मिलण दा मास्टर दी कुट दा डर, नित ही आ जांदे फिर पता ही ना चलदा कद ओह सब डर उड पुट जांदे शिश करके उड़ाई चिड़ी वांग। मेरे मन तों दादी दी बुक्कल तक दा सफ़र बिंदे झट्टे ही मुका लैंदा डर आउण वाले कल दा, जवान होया संसे भी हो गए उडार मेरे वांग, आउण वाले कल दा डर बीतदा घटदा रहा दादी दी बुक्कल वांग, तकदा रहा मैं दुनियादारी निक्के बच्चियां दी किलकारी, मन दा कोना कोना भरिया कल दी थां मैं अज तों डरिया। एक कविता है मन दा चानण। जद मन अंदर चानण होया मिटिया तद अंधकार, आप मुहारे कलम दे विच्चों किर गए अखर चार, घर दी छत ते दीवे बाले घूमे की मंदर विद्याले, जद दीवा मन अंदर बलिया उदों होया दीदार, एक दरिया मन अंदर वहिंदा दिसदा ना पलकां विच रहिंदा, एक दरिया मन अंदर वहिंदा दिसदा ना पलकां विच रहिंदा, जो भी डुबदा उस दरिया विच जांदा परले पार, और मन भरिया तां अखर वाहे जल थल विच तुरिया इस राहे, दुख सुख खुशी गमी वंडन दा शब्दां संग इकरार, सुर सिख लै संगीत बना लै, सुर सिख लै संगीत बना लै, हादसियां तों गीत बना लै, होके हावियां दे विच्चों ही सिरज नवां संसार, आप मुहारे कलम दे विच्चों किर गए अखर चार।
1: कविता पाठ तुसीं सुन रहे सी गगनदीप शर्मा तों, ते हुण सुनदे हां गीत गायक दलेर मेहंदी दी आवाज़ च। मैं डरदी रब रब करदी लोकी कहण छूई मोई छूई मोई। गीत दे बोल लिखे ने जंगा आनंदपुरी ते दलेर मेहंदी ने।

गीत तुसी सुन रहे सी गायक दलेर मेहंदी की आवाज़। गीत दे बोल लिखे सन जंगा आनंदपुरी ते दलेर मेहंदी ने। ते आओ हुण अगला गीत थोड़ी नज़र है गायक अमरिंदर गिल की आवाज़। आओ सुनते हाँ प्यार की डूंघाई नूं ओह किवें बयान कर रहे ने। तू ते साहां तों वी नेड़े, तू ते जान तों वी प्यारा।

ये तुसी सुन रहे सी अमरिंदर गिल की आवाज़। आसे कि मिट्टी दी महक प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होगा। इस दे नाल ही मिट्टी दी महक प्रोग्राम का समा हुण खत्म हुंदा है। हुण शमिंदर कलेर नू इजाजत दिओ।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत

0: केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his 2-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with the leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties

0: symbolizes shared beliefs, priorities and future.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: A liquefied natural gas LNG carrier, Disha, safely transited through the Strait of Hormuz. The LNG carrier carrying 62,370 metric tons of LNG is one of the first commercial vessels to transit the strait since the announcement of a preliminary ceasefire deal between the United States and Iran. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma said the vessel is expected to arrive at Dahej in Gujarat on the 18th of this month. Government has increased the special additional excise duty SAED on the export of diesel and aviation turbine fuel ATF in its latest fortnightly review. With effect from today, the export duty on diesel has been raised to 14 rupees per litre from 13 rupees 5 paise per litre, while the levy on ATF exports has been increased to 12 rupees 5 paise per litre from 9 rupees 5 paise per litre. The export duty on petrol remains unchanged at 1 rupee 5 paise per litre. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi at the national level today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said the initiative reimagines youth engagement with democratic processes, offering young citizens a hands-on understanding of governance, policy deliberation and parliamentary functioning. A B-52 bomber crashed shortly after takeoff at a U.S. Air Force base in Southern California's Mojave Desert last night, killing all 8 people aboard. Aerial footage showed a plume of black smoke rising from the desert near the runway on the base. It is not immediately clear what caused the crash. Domestic benchmark equity indices, Sensex and Nifty, opened higher this morning following a preliminary agreement between United States and Iran to end the West Asia conflict. Sensex rose over 315 points to touch 76,579 in early trade, while Nifty gained around 77 points to trade at 23,931. In the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde makes its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweight Spain. Cape Verde's 40-year-old keeper, Wozinia, delivered a heroic performance. Cape Verde have produced the biggest shock of the tournament so far. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:10 और ठीक 19 सेकंड। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज जब मैं बाहर निकली स्टूडियोज में से और बीच में प्रोग्राम करते हुए बाहर देखा तो इतना अच्छा मौसम हो रखा था और जो हमारे यहाँ पे आसपास फूल थे वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे, पेड़ पौधे वो भी बहुत मस्त लग रहे थे। तो मुझे मतलब लगा कि कितना सुंदर है ये दृश्य और मौसम भी बहुत प्यारा सा है और प्रकृति वाकई में बहुत खूबसूरत है। उसके साथ आप आते हो तो अगर आपको कोई स्ट्रेस है, कोई भी टेंशन भी है, तो एक तरह से वो आपके मन को थोड़ा मधुर कर देती है। यूँ कहें कि आपको थोड़ी देर के लिए अपने आगोश में ले लेती है प्रकृति और आपको सब कुछ अच्छा लगता है। और ख़ासकर फूलों की बात करें तो वो तो वही सभी का मन बोते हैं और उनके बिना तो बगिया अधूरी सी लगती है। हालांकि हर पौधे का, हर पत्ते का अपना एक वजूद होता है, पर फूलों की बात करें तो यूँ कहें कि हमारा जो ध्यान होता है ना उसे आकर्षित

कर ही लेते हैं, और हर किसी को फूल पसंद होते हैं। और फूल सिर्फ प्रकृति की सबसे सुंदर रचना ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं की भाषा भी है। कभी गुलाब प्यार का संदेश लेकर आता है, तो कभी गेंदा उत्सव और उल्लास का प्रतीक बन जाता है। चमेली की महक हमें सुकून देती है, और कमल हमें जीवन में कीचड़ के बीच भी खिलना सिखाता है। और दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी तो एक बगीचे की तरह है ना। इसमें रिश्ते के फूल हैं, सपनों के फूल हैं, उम्मीदों की कलियां हैं, और यादों की खुशबू भी है। जब ये सब मिलते हैं तो जीवन और सुंदर हो जाता है। बहुत सी बातें हैं जो हम करेंगे, और आज मेरे मन में आ रहा था कि हम भी अपने श्रोताओं से मैं पूछूं कि उन्हें कौन सा फूल पसंद है जो बेहद पसंद है। वाकई तो कहें कि सभी फूल बहुत पसंद होते हैं, पर कुछ कुछ होते हैं कि जो आपको बस छू जाते हैं, कि बस उन्हें अपने घर में है लगा लें या बाहर देखें तो बस खुश होते रहें। तो बिल्कुल आप हमें संदेश लिखकर भेज सकते हैं कि आपको कौन से फूल पसंद हैं, कौन से फूल आपके मन को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, और आपके जो है ना, हम खत भी वो भी लेंगे। बिल्कुल, मेल्स के बिना तो बात नहीं बनेगी, तो उन्हें भी हम लेंगे। पर उससे पहले सुनते हैं गीत, और उसके बाद आपके संदेशों की बारी। और बिल्कुल बताइएगा आपको कौन सा फूल सबसे ज़्यादा पसंद है।

चेहरे पे मुस्कान और हमेशा आपके दिल में खुशी हो और यूं कहें कि संतोष हो, तो वाकई में आपका चेहरा भी फूलों की तरह लगता है और आपका साथ भी हमें फूलों की तरह ही लगता है। और आपके बिना हमारा जो प्रोग्राम है अधूरा है। तो बिल्कुल, संदेशों का सिलसिला शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम ये भी बताना चाहेंगे, कोई जो नए श्रोता है जिन्हें नहीं पता हमसे कैसे जुड़ा जाए, तो उनको हम अपना ईमेल आईडी बता देते हैं और फिर लेते हैं संदेशों को। तो हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। तो एक बार फिर दोहरा दें, ipradio.delhi@gmail.com। तो और भी श्रोता जो हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। तो संदेश ले लेते हैं। ये जो पहला संदेश हमें आया है, ये आया है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना का। और हमारे साथ जो जुड़े हैं, ये हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ से डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से हैं, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, और पोता है इनका मास्टर अल कबीर। ये भी बहुत प्यारे गीत की इन्होंने फरमाइश की है और कहते हैं कि इन्हें सभी फूल बहुत पसंद हैं। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं। ये आया है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू का, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा जी भी हैं इनके साथ। और साथ में हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़े हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। और अगला संदेश हमें आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु। और ये हैं जुड़े हमारे साथ किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और

आनंद पर्वत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं लखपत राज, वेद प्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह, और लिख रहे हैं बेटा जी हमारी तरफ से राम राम स्वीकार करें, मन भावन सुन रहे हैं, हमें पसंद आ रहा है। तो दोस्त बहुत अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और ये जो संदेश है ये हमें आया है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, सरबत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। तो बहुत अच्छे अच्छे इनके संदेश भी, और इन्हें को इन्होंने हमें ये भी लिखा है, हमको जासवंदी का फूल बहुत पसंद आता है। वाकई में बहुत अच्छी पसंद है आपकी, और आपकी पसंद पे हम फूलों का एक बहुत ही प्यारा सा गीत भी सुनवा देते हैं, और जो कुछ इस तरह से बयां कर रहा है कि फूलों के शहर में घर होना चाहिए हमारा। बिल्कुल, वाकई में बहुत सुंदर लगेगा, कल्पना करके भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम आपकी फरमाइश, इसमें हम शामिल करते हैं आपके संदेश और कुछ कुछ बातें भी करते हैं। आज मेरा दिल किया था कि फूलों के बारे में बात करें कि आपको कौन सा फूल पसंद है। तो कुछ श्रोताओं ने तो हमें जवाब भेजा है, कुछ ने नहीं भेजा। हम चाहेंगे कि ना आप भी बताइएगा ना कि कौन सा फूल आपको पसंद है, तो हमें भी पता चले। कभी कभी तो हमें नए नए फूलों के बारे में भी पता चलता है आपकी इन बातों से और कुछ चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि हम ही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कभी कभी आप भी हमारे साथ शेयर करते हैं, आपके बहुत प्यारे प्यारे संदेश भी होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं, मतलब गीत सुनवाने से पहले हम आपको एक मैसेज ले लेते हैं। तो जो ये मैसेज आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से है, रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का। और अगला जो संदेश आया है वो है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ का। भरत उनके साथ है, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगा वाला चौक, गोरैया, जलंधर से। इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग, दिल्ली का मौसम अच्छा है, बहुत खुशी हुई। वाकई में दोस्त, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत बरसात भी हो रही है कई कई जगह तो, और यहाँ तो बहुत खुशनुमा मौसम हो रखा है। बहुत गर्मी थी, अब यूँ कह के थोड़ी सी ठंडक आ गई है। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है हीरामन शिंदे, सिद्धार्थ गोडाने का। इन्होंने ये संदेश भेजा है किशोर नगर अमरावती से। ये लिखते हैं, ज़िंदगी एक खूबसूरत सपना है, इसमें हर कोई अपना है, जियो इस तरह ज़िंदगी की। आपसे मिलकर हर कोई कहे ये ज़िंदगी का हसीन लम्हा है। बहुत अच्छा मैसेज। और अगला जो संदेश आया है वो आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से है, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। और ये संदेश तो रिपीटेड है और तो इसलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश आया है हमको आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का। और अगला संदेश हमें आया है ग्राम पजौनिया है, ज़िला जालौन उत्तर प्रदेश से। यह है सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया का। और हमारे साथ जुड़े हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और ये जो अगला संदेश है ये हमें आया है पटेल नगर मलोट से है, डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और इनके साथ है गुड्डू। और ये संदेश आया है हमें पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपके मैसेजेस बिल्कुल तैयार है हमने लेने के लिए। उनके बिना तो प्रोग्राम अधूरा सा है ना। तो आपकी फरमाइश नहीं तो फरमाइश किसकी हुई। तो चलिए अगला जो संदेश उन्हें ले लेते हैं। ये संदेश आया है ऊपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवास अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य की ओर से। इन्होंने लिखा है, हमें तो गुलाब पसंद है, और लिखते हैं कि हमारे मेल का भी कोई वजूद है। जी हाँ, बिल्कुल, मेल के बिना तो कहीं कार्यक्रम अधूरा सा है ना। तो अगला जो संदेश है उसे शामिल कर लेते हैं। ये संदेश आया है हमें स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया का। और ये संदेश हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार का। ये लिखते हैं कि इन्हें तो गुलाब का फूल बहुत पसंद है। तो दोस्त, गुलाब कौन सा वाला? जी हाँ, गुलाब तो सभी को पसंद है, और ख़ासकर लाल गुलाब सबको बहुत पसंद होता है। पर कुछ की पसंद होती है पीले गुलाब की, सफ़ेद गुलाब की। चलिए कोई नहीं, आपने हमारा मैसेज तो दिया, हमारा मतलब उत्तर दिया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अगला संदेश लेते हैं। इन्होंने भी लिखा है कि इन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद है। तो ये संदेश हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से है रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी। और अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का। और ये संदेश हमें आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप का। कालका से हमारे साथ जुड़े हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। इन्होंने लिखा है रात की रानी फूल इन्हें बहुत पसंद है, जादुई खुशबू होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी तेज़, मीठी और मदहोश कर देने वाली खुशबू। सूरज ढलने के बाद जब ये फूल खिलता है तो इसकी महक पूरे बगीचे या घर के आंगन को खुशबू से भर देती है। वाकई दोस्त, बहुत ही लाजवाब खुशबू होती है। और अगर दो चार पेड़ हो जाएँ तब तो मज़ा ही आ जाता है, बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है। बहुत अच्छी पसंद दोस्त आप सबकी। और अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है किशनगंज बिहार से रविंदर मोहनदास और आशा देवी का। इन्होंने भी लिखा है इन्हें गुलाब का फूल पसंद है। और ये संदेश हमें आया है पांडर कबड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे का। और इनके साथ हैं बल्लार शाह से सूरज लोंढे, प्राची और एकलव्य। और ये संदेश, जी हाँ, रिपीट रिपीट संदेश आ रहे हैं तो हमें आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं प्यारा सा गीत, बहुत ही प्यारा गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में, मिली फिल्म से।
3: ठीक है जाओ, माफ किया।
4: थैंक यू, बोलो अंकल को। चलो अभी धीरे धीरे धीरे धीरे।
5: सुनो सुनो, अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
4: नहीं।

फूल वाकई बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत कुछ कहते भी हैं। फूल प्रकृति का नायाब रचना है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। कभी एक गुलाब किसी के लिए प्यार का पैगाम बन जाता है, तो कभी मोगरे की भीनी भीनी खुशबू हमें बचपन की गर्मियों की कहें कि शामों को और दोपहरों को और सुबह को, क्योंकि बच्चे तो होते हैं सारा दिन खेलते हैं, उनकी याद दिलाती है। सूरजमुखी हमें हमेशा रोशनी की ओर देखने की प्रेरणा देता है, और कमल सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों खिलना नहीं छोड़ना चाहिए। तो वाकई फूल बहुत कुछ सिखाते हैं और सभी के जीवन में उनका अपना ही महत्व है, बाकी खुशियाँ का पैगाम लेकर आते हैं। तो आपसे हमने भी पूछा था कि कौन सा फूल आपको पसंद है, और बहुत से संदेश हमें आए भी हैं। चलिए कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी फरमाइश, तो आपकी फरमाइश के गीत भी सुनवा रहे हैं और साथ में आपके ले रहे हैं मैसेजेस। तो ये मैसेज ले लेते हैं, ये आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर का, और इनके साथ मलकापुर से है नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मोहरकर। और अगला जो संदेश हमें आया है, ये हमें आया है, ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, और इनके साथ है चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना का। और ये लिख रहे हैं, आज दिल्ली के शादरा में थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हुई है, मुझे गुलाब और गेंदे का फूल बहुत पसंद है। दोनों ही बातें इन्होंने की है, वाकई में गुलाब का फूल तो सभी को पसंद है और गेंदे का फूल भी बहुत अच्छा। और कहते हैं कि ना, अगर गेंदे के फूल लगवाए ना आसपास तो मच्छर कम आते हैं, और गेंदे के फूल जब बहुत सारे झुंड में लगते हैं तो देख के ऐसे लगता है बस सब कुछ पीला पीला हो गया है, और वाकई बहुत सुंदर लगते हैं, उनकी भी एक खूबसूरती होती है। गुलाब तो खैर अपने आप में राजा ही लगता है मुझे फूलों का। तो अगला संदेश ले लेते हैं, ये हमें आया है ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। और बहुत से संदेश हैं, अभी भी लेंगे, पर उससे पहले आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये वाला गीत।

जाता है। चलिए, बहुत सी बातें हमने कर ली हैं और मैसेजेस भी ले लेते हैं, जो बहुत सारे मैसेजेस बचे हुए हैं। तो ये मैसेज आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैज़ी, फराज़, फरीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का। ये लिखते हैं, फूल तो उन्हें सभी पसंद आते हैं, पर उनकी जो पसंद है वो है गुलाब और बेला की फूल। वाकई बहुत अच्छी पसंद है। और अगला जो संदेश है उन्हें, हम उसे भी ले लेते हैं। ये आया है हमें श्वेता नगवी नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का। लिखते हैं कि हमें तो कमल का फूल पसंद है, क्योंकि चारों तरफ उसकी कीचड़ होती है, फिर भी वह अपनी महक पूरी तरह महकाता है, मतलब महक उसकी पूरी तरह फैलती है और खिलता रहता है। इसी तरह हमारे इंसानों की तरह चारों तरफ किसी तरह के भी लोगों पर हमें कमल के फूल की तरह रहना चाहिए, खिलते रहना चाहिए और अपनी ही खुशबू होनी चाहिए। बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छी पसंद आपकी। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है हमें कोहका भिलाई से, उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल का। इनके साथ है धमधमा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। इन्होंने लिखा है, हमें सदाबहार फूलों के पौधे पसंद है, क्योंकि उसे ग्राफ्ट करके अलग अलग रंग सदाबहार पौधों को मल्टी कलर पौधे में बदल देते हैं और जो गुलदस्ते जैसे दिखते हैं गमले में बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्त, बहुत अच्छी बात की, मेरे भी घर में सदाबहार फूल भी हैं, क्योंकि और उनकी पत्तियों का जो फूल होते हैं वो कई बीमारियों के काम में आते, कहते हैं कि डायबिटीज़ के भी काम आते हैं, तो वाकई उनके भी अपने एक फ़ायदे होते हैं। और जो फूल होते हैं ना, वो हमेशा बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें फूलों का इंतज़ार करना पड़ता है। और उनके कलर्स भी, मतलब जो रंग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मैरून कलर का भी होता है, जामनी भी, सफ़ेद भी, और भी ना जाने को इतने रंगों के होते हैं। तो अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया है चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा, विमला अनेजा का। हम इन्होंने लिखा है कि हमें गुलाब के फूल और अपराजिता के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। घर के बाहर चार रंगों के गुलाब है, जिसमें गुलाबी, लाल, ऑरेंज और सफ़ेद है। बाकी बहुत ही सुंदर बगीचा है। आजकल थोड़ा सीज़न कम हो चुका है। बड़ी खुशी होती है जब कोई हमसे पूछ कर ले जाते हैं और मंदिर में अर्पित करते हैं। सुबह जब पौधों को पानी देते हैं तो सकारात्मकता आती है और सुकून मिलता है। वाकई बहुत अच्छी बात की, सच में एक पॉजिटिव एनर्जी तो आती है और सुकून भी मिलता है। तो चलिए, अब संदेशों का सिलसिला यहीं मेरे को विराम लेना पड़ेगा, क्योंकि और संदेश हम ले नहीं सकते। एक प्यारा सा गीत भी तो है आपकी फरमाइश पर, जो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: यार रुक तो हम भी जाते, पर क्या करें, कार्यक्रम का समय हो चुका है और इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की। तो मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट

0: क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच LNG ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। फीफा विश्व कप में केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दिग्गज टीम स्पेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of the United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future."
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: a liquefied natural gas LNG.

अनुराधा पौडवाल और अनवर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, और अब सुनते हैं अभिजीत सावंत की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।

के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे विदुषी शाश्वती मंडल से राग जोगिया। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसके अंतर्गत आपने सुना विदुषी शाश्वती मंडल से राग जोगिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार होंगे, ठीक उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे आप।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की

0: सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सिटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit on the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada Mark Carney, Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said that despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. He said democracy has remained an integral part of the country's work culture and thought process. The Lok Sabha speaker said active and inclusive participation in democracy is essential for shaping the nation's future and achieving the goal of a developed India. Ahead of the re-examination of the National Entrance Cum Eligibility Test NEET UG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency NTA has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, made

0: घर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार के साथ करते हैं। स्वतंत्र होने के लिए सबसे पहले दो चीज़ों से मुक्त होना पड़ता है, बुरे भविष्य का डर और दुखद अतीत की यादें। हम में से कई लोग बीते हुए कल की गलतियों या दुखों को ढोते रहते हैं और साथ ही आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डरते हैं और आज को जीना भूल जाते हैं। लेकिन जीवन का सबसे सुंदर सच ये है कि अतीत एक सीख है, सजा नहीं, और भविष्य एक संभावना है, भय नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर, एक नई ऊर्जा, नई सोच, ढेर सारी खुशियाँ और भीगे हुए मौसम के साथ।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को, फिल्म थी धरती। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे देश में बड़े बड़े अस्पताल, टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं की जो मजबूत नींव दिखाई देती है, उसकी शुरुआत किसने की होगी? चलिए आज आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने राजमहलों की सुविधाएं छोड़कर देश के स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर की। जरा कल्पना कीजिए, नया नया आज़ाद हुआ भारत, सीमित संसाधन, बीमारियों का प्रकोप और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी। ऐसे समय में किसी को आगे आकर यह कहना था कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है, और यह जिम्मेदारी निभाई राजकुमारी अमृत कौर ने। उन्होंने मलेरिया और क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाए, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के प्रयास किए। देश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसके निर्माण के पीछे किसका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों? राजकुमारी अमृत कौर का। उन्होंने अथक प्रयास किए, इस संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया ताकि भारत में विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके। लेकिन उनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं था, वे महिलाओं की शिक्षा, उनके अधिकारों और समाज में उनकी भागीदारी की भी प्रबल समर्थक थीं।

मानना था कि यदि महिलाएं स्वस्थ और शिक्षित होंगी तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। आज जब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं तो हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस सपने की पहली ईंट रखी थी। एक स्वस्थ राष्ट्र केवल अस्पतालों से नहीं बनता है बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, संवेदनशील नीतियों और सेवा के संकल्प से बनता है। राजकुमारी अमृत कौर ने हमें यही विरासत दी और इस विरासत को आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है।

अभी हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में ये गीत, फिल्म थी अनाड़ी। और दोस्तों, जब भी पश्चिम बंगाल का नाम आता है, मन में रसगुल्ले, दुर्गा पूजा और रविंद्र संगीत की छवि उभर कर आती है। लेकिन पश्चिम बंगाल का लगभग हर डिस्ट्रिक्ट भारत को एक अनमोल कला विरासत के रूप में दे चुका है। यह केवल एक राज्य नहीं बल्कि चलता फिरता कला संग्रहालय है। चलिए आज एक छोटी सी कलात्मक यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ की मधुर चटाइयाँ केवल बैठने के लिए नहीं होती बल्कि बुनाई की बेमिसाल कला का प्रतीक हैं। और पास ही है पिंगला का पट्ट चित्रकला, जहाँ कलाकार गीत गाते हुए चित्रों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं, मानो कैनवस बोल उठता हो। अब रुख करते हैं पूर्व मेदिनीपुर का, जहाँ शंख शिल्प पीढ़ियों से जीवित है। इन्हीं शंखों से बंगाली विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक शंखा चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, जो सौभाग्य और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती हैं। और

अगर बात सुई धागे से भावनाएं बुनने की हो तो बीरभूम की कांथा कढ़ाई को कोई मुकाबला नहीं। आज यही पारंपरिक कढ़ाई खूबसूरत कांथा सिल्क साड़ियों के रूप में भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। पुरुलिया के छऊ मुखौटे भी कम आकर्षक नहीं है। रंग बिरंगे ये मुखौटे केवल सजावट नहीं है दोस्तों, बल्कि लोक नृत्य की आत्मा है। नदिया के घूर्णी गांव की मिट्टी की गुड़िया दुनिया भर में अपनी जीवंत अभिव्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में सांसें भर दी गई हों। हुगली के जूट शिल्प ने पर्यावरण के अनुकूल हस्तकला को नई पहचान दी है। कूच बिहार की शीतल पाटी एक ऐसी चटाई है जो गर्मियों में शीतलता का एहसास कराती है और कारीगरों के धैर्य की कहानी कहती है। दक्षिण दिनाजपुर में गोमिरा लकड़ी के मुखौटे लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत संगम है। और पहाड़ों की गोद में बसे दार्जिलिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। वहाँ के तिब्बती हस्तनिर्मित कालीन अपनी बारीक बुनाई और सुंदर डिजाइन के लिए विश्व भर में सराहे जाते हैं। सोचिए एक राज्य और कितनी विविध कलाएं। इन कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि जब कोई कला खो जाती है तो उसके साथ इतिहास का एक अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मिट्टी की खुशबू रंगों का संसार, बंगाल की हर कला में बसता है प्यार। जिलों की पहचान विरासत का मान, इन्हें संजोना ही है सच्चे भारत की शान। और इसी राज्य के वाइब के साथ सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को, फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। और आजकल ज़रा सी थकान हुई नहीं कि मल्टी विटामिन, बाल झड़ने लगे तो सप्लीमेंट, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो गोलियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें पहले से ही कितनी अद्भुत दवाइयां दे रखी हैं? तो आइए जानते हैं कौन से फल और सब्जियां हमें किन समस्याओं से बचाने में मदद कर सकती है। संतरा, मौसमी और नींबू, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करता है। गाजर, इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और टमाटर, इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन हृदय स्वास्थ्य के लिए यानी आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और शरीर के हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। केला पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है, यह रक्तचाप को संतुलित रखने और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक है। सेब, फाइबर से भरपूर यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में मदद करता है। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन और फोलेट प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर में रक्त निर्माण और ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक हैं। चुकंदर, शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में मददगार माना गया है और सहन शक्ति बढ़ाने में भी लाभकारी है। आंवला विटामिन सी का खजाना, यह इम्यूनिटी, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पपीता, इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकते हैं। अनार, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो रक्त स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। लहसुन, पारंपरिक रूप से हृदय स्वास्थ्य और संक्रमण से बचाव में उपयोगी माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए श्रोताओं, कोई भी एक फल या सब्जी किसी बीमारी का चमत्कारी इलाज नहीं है। असली ताकत है विविधता में, यानी आपकी थाली जितनी रंग बिरंगी होगी उतना ही बेहतर पोषण मिलेगा। और हाँ, यदि डॉक्टर ने किसी विशेष कमी के कारण सप्लीमेंट लेने की सलाह दी है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। लेकिन बिना आवश्यकता के केवल विज्ञापनों के प्रभाव में आकर सप्लीमेंट्स पर निर्भर होना ठीक नहीं है। शायद इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति हर मौसम में वही देती है जिसकी हमारे शरीर को उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगली बार जब भी आप बाज़ार जाएं तो दवाइयों को नहीं, मौसमी फल, ताज़ी सब्जियां और संतुलित भोजन की टोकरी भर कर लाइए। सेहत किसी कैप्सूल में बंद नहीं होती है, वह हमारी रोज़मर्रा की थाली में परोसी जाती है। प्रकृति के करीब आइए, प्राकृतिक पोषण अपनाइए और स्वस्थ जीवन को सेलिब्रेट कीजिए।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम को, फिल्म थी दाग। और दोस्तों, जब घर में मेहमान आते हैं और कोई पूछता है बेटी ज़रा चाय बना दो, तो यह बिल्कुल सामान्य सा लगता है। लेकिन अगर वही बात बेटे से कही जाए तो कई लोग हैरानी से देखते हैं। आखिर क्यों? क्या खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े समेटना या घर को व्यवस्थित रखना केवल बेटियों की जिम्मेदारी है? नहीं, ये जीवन जीने का कौशल है जो हर इंसान को आना ही चाहिए। दोस्तों, समय बदल रहा है। आज के दौर में महिलाएं घर के साथ बाहर भी अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां भी साझी होनी चाहिए और इसकी शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए। अगर बेटा अपना बिस्तर खुद ठीक करना सीखता है, अपनी प्लेट सिंक तक रखना सीखता है, अपनी अलमारी व्यवस्थित रखना सीखता है, तो वो केवल घर का काम नहीं सीख रहा होता है, बल्कि वो अनुशासन, आत्मनिर्भरता और दूसरों के श्रम का सम्मान करना सीख रहा होता है। और हाँ, जैसे जैसे बेटा बड़ा हो, उसे खाना बनाना भी सिखाइए। चाय बनाना, दाल चावल पकाना, अपने पसंद का एक सिंपल सा भोजन तैयार करना, ये केवल रसोई के काम नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है, ताकि भविष्य में वो अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को स्वयं संभाल पाने की क्षमता भी है। उसे बचपन से ही ये समझाइए कि घर के काम कभी भी जेंडर आधारित नहीं होते हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना या घर को व्यवस्थित रखना, ये महिलाओं के काम नहीं है बल्कि घर के काम हैं, जिनकी जिम्मेदारी घर के हर सदस्य की होती है। और यही सीख आगे चलकर उसे महिलाओं का सम्मान करना भी सिखाएगी। बेटों को विशेषाधिकार नहीं, संस्कार दीजिए। उन्हें अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारियां भी सिखाइए। क्योंकि एक अच्छा बेटा केवल परिवार का सहारा नहीं बनता है, वो एक बेहतर समाज की नींव भी रखता है। हम सचमुच समानता अगर चाहते हैं तो उसकी शुरुआत घर से करनी होगी। बेटियों को सपने देखने की आज़ादी दें और बेटों को संवेदनशील बनने की शिक्षा दें, क्योंकि समानता की सीख किताबों से कम, घर के माहौल से अधिक मिलती है। और दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतज़ार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक को, फिल्म थी जख्म। और दोस्तों, खेल के मैदान में जब कोई खिलाड़ी जीत का जश्न मनाता है, कोई रिकॉर्ड टूटता है या हार के बाद आंखों में आंसू छलकते हैं, तो उन भावनाओं को हमेशा के लिए सहेज लेता है एक कैमरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन यादगार तस्वीरों के पीछे होता कौन है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण करियर की जिसका रिश्ता खेल और पत्रकारिता दोनों से है, यानी स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट का काम सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं होता है, बल्कि खेल की कहानी को एक फ्रेम में बयां करना होता है। एक बेहतरीन स्पोर्ट्स फोटो कभी कभी हजारों शब्दों से ज़्यादा असर छोड़ देती है, चाहे क्रिकेट में उड़ती हुई गेंद हो, फुटबॉल में गोल का निर्णायक पल, या एथलेटिक्स में फिनिश लाइन पार करता खिलाड़ी। हर तस्वीर एक कहानी कहता है। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के लिए सिर्फ कैमरा चलाना या जानना काफ़ी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले ज़रूरी है फोटोग्राफी की तकनीकी समझ, जैसे कैमरा सेटिंग्स, शटर स्पीड, लेंस का चुनाव और सही एंगल की पहचान। खेलों की जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आपको खेल के नियम और उसकी गति समझ में आ जाती है, तभी आप सही पल को कैमरे में कैद कर पाते हैं। अब सवाल है कि इस क्षेत्र में शुरुआत कैसे करें? आप फोटोग्राफी या मास कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा कई युवा फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में भी शुरुआत करते हैं और स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं को कवर करके आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। हालांकि यह काम जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। कभी घंटों धूप में खड़े रहना पड़ता है, कभी बारिश में मैच कवर करना पड़ता है, तो कभी एक तस्वीर के लिए सही मौके का लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी तस्वीर किसी ऐतिहासिक पल की पहचान बन जाए, तो सारी मेहनत सफल लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको खेलों से है प्यार, कहानियाँ कहना है पसंद और कैमरा आपका साथी है, तो स्पोर्ट्स फोटो

आपकी पहचान बन जाए तो सारी मेहनत सफल लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको खेलों से है प्यार, कहानियां कहना है पसंद और कैमरा आपका साथी है, तो स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म आपके लिए एक शानदार करियर साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग खेलते हैं इतिहास बनाने के लिए और कुछ लोग उसे कैमरे में कैद करके अमर कर देते हैं।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म थी माया। और दोस्तों, हमारे अधिकारों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? जी हाँ, उनकी जानकारी। क्योंकि हमारे अधिकार तभी हमारा साथ देते हैं जब हम उन्हें पहचानते हैं। तो आज हम बात करते हैं भारतीय महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की। मान लीजिए किसी कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा हो या यौन उत्पीड़न हो रहा हो, तो क्या उसे चुप रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हर महिला को सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार प्राप्त है और वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब एक और सवाल, क्या बेटियां पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार रखती हैं? हाँ, बेटियों को भी संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त है जो बेटों को है। और अगर किसी महिला के साथ घर के भीतर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक हिंसा हो रही हो, तो उसे भी अपनी नियति नहीं मानना है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार हर महिला को प्राप्त है। साथ ही महिलाओं को समानता का अधिकार भी दिया गया है। कानून की नज़र में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। शिक्षा हो, रोजगार हो या सम्मानजनक जीवन, हर महिला इन अधिकारों की हकदार है। तो दोस्तों, अक्सर महिलाएं दूसरों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी चोरी चोरी। और दोस्तों जरा सोचिए, अगर पेड़ों की उम्र ना बढ़े तो घनी छांव कहाँ से आए, अगर नदी आगे ना बढ़े तो सागर तक कैसे पहुंचे, फिर इंसान अपनी उम्र बढ़ने से इतना क्यों घबराता है? शायद इसलिए क्योंकि समाज ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि जवान दिखना ही सफलता है, झुर्रियाँ समस्या है, सफ़ेद बाल कमजोरी है और बढ़ती उम्र मानो जीवन का ढलान। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। उम्र केवल कैलेंडर के पन्नों पर बदलती संख्या नहीं है, यह अनुभवों का खजाना है, रिश्तों की गहराई है और जीवन को समझने की परिपक्वता है। 20 साल की उम्र में हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, 40 की उम्र में उसे समझना शुरू करते हैं और 60 की उम्र में जीवन का वास्तविक अर्थ जानने लगते हैं। सोचिए, अगर उम्र बढ़ना बुरा होता तो हम अपने बच्चों के जन्मदिन क्यों मनाते, हर साल केक क्यों काटते? सच तो यह है कि हम उम्र बढ़ने से नहीं बल्कि उससे जुड़े बदलावों से डरते हैं। लेकिन बदलाव तो जीवन का दूसरा नाम है। विज्ञान भी यही कहता है कि स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम और सामाजिक जुड़ाव बढ़ती उम्र का बोझ नहीं है बल्कि एक सुंदर यात्रा बना सकते हैं। इसलिए अगली बार कोई आपके सफ़ेद बाल दिखे तो उसे छिपाने से पहले ये याद कर लीजिए कि यह आपके अनुभवों का पदक भी हो सकता है, क्योंकि उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन उसे गरिमा, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो आइए बढ़ती उम्र से डरना छोड़ें, उसका स्वागत करें, क्योंकि जीवन की सबसे खूबसूरत कहानियां अक्सर उसके बाद के अध्यायों में लिखी जाती है।

अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म कभी कभी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेने का समय आ गया है। खुद से प्यार कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, छोटी छोटी खुशियों को संजोएं। फिर मिलेंगे नए विषय नए प्रेरणा के साथ। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दोपहर के 1:10 हुए हैं और रोज़ाना की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम के साथ जुड़ी है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का स्वागत है हमारे खास फिल्मी सफ़र में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है, एक स्त्री के मन की गहराई, प्रेम की तपिश और त्याग की, मौन शक्ति की कहानी।

जी हाँ, आज बात होगी 1963 की कालजयी फिल्म बंदनी की। बंदनी यानी बंधनों में बंधी हुई। लेकिन क्या सच में सिर्फ जेल की सलाखें इंसान को कैद करती हैं, या कुछ रिश्ते, कुछ यादें और कुछ फैसले भी हमें जीवन भर बांध देते हैं? यही सवाल इस फिल्म की आत्मा।

एस डी वर्मन की आवाज़ में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। दोस्तों, बंदनी फिल्म के निर्माता निर्देशक थे विमल रॉय, जिन्होंने दो बीघा ज़मीन और मधुमति जैसी फिल्में बनाई थी। भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा फिल्मकारों में से एक जिन्होंने साधारण कहानियों में असाधारण संवेदनाएँ ढूंढी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे नूतन, जिन्होंने मुख्य किरदार यानी कल्याणी का किरदार निभाया, अशोक कुमार विकास घोष के किरदार में थे, और धर्मेंद्र ने देवेंद्र का रोल निभाया जो कि जेल का डॉक्टर होता है। और दिलचस्प बात ये थी कि फिल्म में अभिनय से ज़्यादा भावनाएं बोलती थीं।

फिल्म की कहानी कल्याणी नाम की महिला कैदी के इर्द गिर्द घूमती है। जेल की चार दीवारी में बंद कल्याणी बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर बीते हुए समय की गूंज है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो यहाँ तक क्यों पहुँची। एक समय था जब वो प्रेम करती थी, सपने देखती थी, लेकिन जीवन में उसके सामने ऐसे मोड़ रखे कि भावनाएं और परिस्थितियाँ टकरा गईं। सिर्फ फिल्म में ये बात नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछती है कि इंसान के फैसलों के पीछे उसकी मजबूरी, उसका प्रेम और उसका दर्द कितना बड़ा होता है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रस्तुत चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है बंदिनी। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल।

कहा जाता है कि इस फिल्म में नूतन ने अपने करियर के सबसे प्रभावशाली अभिनय में से एक किया था। उनके चेहरे के भाव, आंखों की खामोशी और संवादों का संयम यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी। कई समीक्षकों ने लिखा कि कुछ दृश्यों में उन्होंने बिना संवाद वाले कहानी कह दी। आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र की शुरुआती महत्वपूर्ण फिल्मों में से ये फिल्म एक थी।

फिल्म उस दौर में धर्मेंद्र अपने शुरुआती अभिनय सफर में थे। इस फिल्म में उनका किरदार शांत, सहायक और संवेदनशील था।

दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके ईमेल्स की तरफ। हमें बहुत से श्रोताओं ने अपने ईमेल्स भेजे हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं ये मैसेज हमें मिला है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। भेजने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। ये लिख रहे हैं कि इनको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है और जानकारी भी बहुत बढ़िया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और उनके परिवार के लोग। आप हैं पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन, और ये मैसेज भेजा है सलार पहलगांव कश्मीर से परजादा मिराजुद्दीन ने। और आप हैं गांव फरासी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, और बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आप हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इनको कहानी और गीत पसंद आ रहे हैं। आप हैं स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। और ये भेजा है मैसेज हमें गंज डुंडवारा से। भेजने वाले हैं गंज शमसुल कमर राही। और आप हैं नागर कोहरा ज़िला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। पीपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। और आप हैं बबलेश पवार जी, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नलेश्वर नगर नरबेल महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं पीएस नवाटकर, निर्मला, विशाल और सोपान तायपड़े। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी और सीता और गीता। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आनंद परिवार दिल्ली से लखपत राय, वेद प्रकाश चौहान, सुबेदार अमर सिंह जी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और आप हैं उषा मोहन और विदित मोहन पहाड़गंज से। और ये मैसेज हमें मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही का, महराज जहां का, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने शिद्दत से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इस फिल्म का संगीत फिल्म की आत्मा था, संगीत जिसने कहानी को और गहरा किया। फिल्म का संगीत दिया था एसडी बर्मन ने और

गीतों ने फिल्म को सिर्फ सजाए नहीं, कहानी का हिस्सा बना दिया। और जब गीतों की बात चली तो वो गीत कौन भूल सकता है, मोरा गोरा अंग ले ले। ये गीत खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि बोल लिखे थे गुलजार ने और ये उनके शुरुआती चर्चित गीतों में शामिल हुआ। इसके अलावा मेरे साजन है उस पार और जाने वाले हो सके तो लौट के आना आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। और हाँ, बाकी गीत थे शैलेंद्र के।

दोस्तों, बंदनी उस दौर की फिल्मों से अलग थी। यहाँ न शोर था न बड़े बड़े संवाद, लेकिन भावनाओं की गहराई थी। ये फिल्म भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, उसके निर्णय और उसके भीतर के संघर्ष को बहुत संवेदनशील तरीके से दिखाती है। आज भी जब हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों की बात होती है, तो बंदनी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है।

तो दोस्तों, बंदनी हमें ये याद दिलाती है कि हर इंसान की कहानी में कुछ अनकहे अध्याय होते हैं। कभी कभी सबसे गहरी कैद सलाखों की नहीं, किसी की यादों की होती है। इसी एहसास के साथ आज के इस फिल्मी सफ़र को यहीं विराम देते हुए, जाने से पहले इस फिल्म का गीत सुनिए और महसूस कीजिए उस दौर की संवेदनाओं को। मैं आपकी साथी अर्चना गोयल फिर मिलेंगे सिनेमा के किसी और सुनहरे पन्नों के साथ। नमस्कार।

आने तो पहला मुलाकात की थी ते उन्होंने अपनी शुभकामनावां दित्तियां। दूतकार ने विदेशों में भारतीय नागरिकों की भलाई ते सुरक्षा प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। भारत न्यूजीलैंड में हो रहे महिला एफआईएच हाकी नेशनस कप के सैमीफाइनल में पहुंच गया है। पूल ए दे अपने दूजे मैच में भारत ने जापान को 2-1 नाल हराया। कप्तान सलीमा टेटे ते लाल रेमसियामी ने भारत लई महत्वपूर्ण गोल किए। इस जीत नाल भारत 6 अंकों नाल पूल ए विच शिखर ते पहुंच गया है। भारत का अगला मुकाबला वीरवार नूं उरुग्वे खिलाफ होगा। फीफा विश्व कप 2026 विच केप वर्डे ने शानदार प्रदर्शन करदिया विश्व फुटबाल च वड्डी ताकत स्पेन नूं बराबरी ते रोक दिता है। दोहां टीमां वल्लों कोई गोल नहीं होया। एक होर मैच विच बेलजियम ते मिस्र विचकार सिएटल स्टेडियम विच खेडिया गया मैच भी 1-1 दी बराबरी ते खत्म होया। सऊदी अरब ते उरुग्वे विचकार अज ग्रुप एच दा पहला मैच भी 1-1 दी बराबरी ते रहा है। तेज गेंदबाज अशोक शर्मा नूं श्रीलंका विच खेडी जा रही एक रोजा क्रिकेट तिकोणी लड़ी लई इंडिया ए टीम विच शामिल कीता गया है। वह जख्मी जुद्वीर सिंह की थां लैणगे। इंडिया ए ने लड़ी विच लगातार 2 मैच हारे ने। इंडिया ए दा अगला मैच कल दंबूला विच अफगानिस्तान ए विरुद्ध होएगा। दक्षिणी कैलीफोर्निया दे मुजावे विच अमरीकी हवाई सेना अड्डे तो उड़ान भरन तो थोड़ी बाद एक B-52 बोंबर जहाज हादसाग्रस्त हो गया है जिस विच सवार सारे 8 लोग मारे गए ने। अमरीकी फौज ने सोशल मीडिया से दसिया कि स्थानक समय अनुसार सवेरे लगभग 11:20 से एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से हादसे की खबर मिलने तो बाद हंगामी अमला मौके पर तुरंत पहुंच गया। इस तो बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। हादसे के कारणों का हालां पता नहीं लग सकिया। अंत विच चोणवियां खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैण लई 2 दिन दौरे ते अज फ्रांस के एवियन पहुंचणगे। श्री मोदी ने अज कहा कि पिछले दहाके च देश भर में बुनियादी ढांचे च रिकॉर्ड सुधार होया है। 21 जून नूं होण वाली नीट UG 2026 की मुड़ प्रीख्या के मद्देनज़र सरकार ने 22 जून तक टैलीग्राम ऐप राही ऑनलाइन संदेश भेजण ते रोक ला दित्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने अज केंद्र ते राज्यां तों उस पटीशन ते जवाब मंगा जिस विच कहा गया कि नागरिकता निवास ते रिहायशी पते दे सबूत वजों आधार कार्ड की दुरवरतों हो रही है ते भारत न्यूजीलैंड विच हो रहे महिला FIH हाकी नेशनस कप के सैमीफाइनल विच पहुंच गया है। इस दे नाल ही खबरां दा राष्ट्रीय बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरां दा बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। सरकार ने नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मौतल रहेगी। खांसी की रोकथाम के सिर्फ लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किए हैं जिसमें आधार को सिर्फ शिनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की असलाहत को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो रोज़ा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियान पहुंच रहे हैं, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई है। जनाब मोदी स्लोवाकिया

0: अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद फ्रांस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार 7वीं मरतबा शिरकत करेंगे, जबकि इस अहम कसीर जहती इजलास में भारत 13वीं बार शिरकत कर रहा है। G7 की यह सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि वज़ीर आज़म इस कॉन्फ्रेंस में आलमी खित्ते जनूब की आवाज़ और तशवीश को ज़ोरदार तरीके से उजागर करेंगे। आज शाम वहाँ पहुँचने पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों वज़ीर आज़म का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है नई शराकत दारियों का क़याम और बैनुल अक़वामी इत्तेहाद की अज़सर नौ तश्कील। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीज़ आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की कैनेडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफा मीटिंगें भी मुतवक्के हैं। इसके बाद जनाब मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की मसरूफियतों में से एक अहम मसरूफियत कल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है। तवक्को है दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के बारे में तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। तवक्को है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर कल शाम पेरिस पहुँचेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर आज़म जुमरात की सुबह

शहर ब्रातिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के फनकारों के शाहकारों समेत वाराणसी से मुतालिक नुमाइश देखने के बाद कही। इस ब्रातिस्लावा में बनारस की एक झलक करार देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने स्लोवाकिया के फनकारों की जानिब से वाराणसी से मुतालिक तख्लीकी पेशकश को सराहा। वजारत खारजा ने कहा है कि ये नुमाइश वाराणसी शहर के लिए वक्फ थी, जिसमें रूहानी, सकाफती और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को होने वाला है और इससे कबल सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने एक महदूद मुद्दत के लिए भारत में टेलीग्राम तक रसाई को महदूद करने के सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की हिदायत का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि ये बंदिशें नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके अगले रोज़ तक नाफिज रहेंगी। मजकूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत शुरू होने के 24 घंटे के अंदर ही 10 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। एजेंसी ने कहा है कि उसकी टीमें सभी उम्मीदवारों के लिए बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाने की खातिर सर्वर पर लोड की लगातार निगरानी कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खांसी की रोकथाम के सिरप लाइसेंस वाले दवा फरोशी फरोख्त करेंगे। सरकार ने 1945 के अद्वियात से मुतालिक जाब्तों में तरमीम को नोटिफाई किया है। इसके तहत छोटे गांवों में खांसी की रोकथाम के सिरप की फरोख्त के लिए दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है। अब छोटे गांवों में भी इस तरह के सिरप की फरोख्त लाइसेंस वाले दवा फरोशी कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर मरकज़ और रियासतों से जवाब तलब किया है, जिसमें शहरियत, आबाई मकाम और रिहायशी पते के सबूत के तौर पर आधार कार्ड के मुबैना बेजा इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया है। मज़कूरा दरख्वास्त में ये हिदायत देने की अपील की गई है कि इसके इस्तेमाल को सिर्फ शिनाख्त की तस्दीक तक महदूद रखा जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज़ और सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को नोटिस जारी किए हैं। मज़कूरा दरख्वास्त में ये दलील दी गई है कि फॉर्म 6 के तहत तस्दीक का मौजूदा तरीक़ेकार नाकाफी है और इसका सहारा लेकर लोग मुनासिब और मुतालिक दस्तावेज़ात के बग़ैर चुनाव डेटाबेस में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में गुज़श्ता दहाई के दौरान बुनियादी ढांचे को रिकॉर्ड सतह पर जदीद तर्ज पर ढाला गया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माई GOV की एक पोस्ट शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत के नज़रिए को हकीकत की शक्ल देने की खातिर मुल्क के लोगों के लिए नए सिलसिले का बुनियादी ढांचा तामीर करने की पाबंद है। भारत ने खबरदार किया है कि अगर अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रुकनियत में तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल मेंबर मुल्कों तक महदूद रखी गई तो सलामती कौंसिल में इस्लाहात की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश पर्व थानैनी ने यह बात सलामती कौंसिल इस्लाहात से मुतालिक बैन हुकूमती मुज़ाकरात की मीटिंग से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर तौसी सिर्फ गैर मुस्तकिल ज़ुमरे तक महदूद रहती है तो सलामती कौंसिल की इस्लाहात निहायत नाकाफी साबित होंगी और अमलन नाकामी के मुतरादिफ होंगी। ख्वातीन हॉकी में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में भारत FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय ख्वातीन ने पूल ए के अपने दूसरे मैच में जापान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत 6 पॉइंट के साथ पूल ए में सरे फहरिस्त आ गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कैप वर्दे ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आलमी सतह पर मजबूत टीम स्पेन के साथ मैच ड्रॉ पर ख़त्म किया और कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। कैप वर्दे के 40 साल गोलकीपर वोजिन्हा ने हरीफ टीम की तरफ से किए गए कई गोल बचाकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एवियान में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। सरकार ने नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज

0: this month ahead of NEET UG retest, message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from centre and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
2: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
2: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा

0: यानी डीपीआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और यूपीआई जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें एआई को जोड़ देती हैं, तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
5: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में

0: आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और पेश करते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। और आज के जो हमारे कलाकार हैं, वे भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे सम्मानित गायकों और संगीतकारों में गिने जाते हैं। साथ ही अपनी मखमली और गहरी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी प्रिय हेमंत कुमार जी के बारे में, जो कि एक महान गायक ही नहीं, साथ ही एक प्रसिद्ध संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम की उनके इस गीत से, फिल्म 16 साल से।

श्रोताओं, अगर हेमंत कुमार के आरंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उनका परिवार पश्चिम बंगाल के बहारू गांव से संबंध रखता था। 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में ही उनका परिवार कोलकाता आकर बस गया। हेमंत कुमार कोलकाता में ही पले बड़े और यहीं शिक्षा प्राप्त की। यहीं उनकी मुलाकात उनके गहरे दोस्त सुभाष मुखोपाध्याय से हुई, जो बाद में लेखक बन गए। इंटरमीडिएट पास करने के बाद हेमंत कुमार ने यादवपुर विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया, लेकिन संगीत के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्होंने ये पढ़ाई छोड़ दी। कुछ दिनों तक उन्होंने साहित्य में भी हाथ आजमाया और उनकी कई लघु कथाएं बंगाली पत्रिकाओं में छपी। लेकिन 30 के दशक में उन्होंने स्वयं को संगीत के प्रति समर्पित कर दिया।

के जो कलाकार हैं वो हैं हेमंत कुमार, और इस कार्यक्रम को पेश कर रही हूँ मैं, यानी आपकी होस्ट और दोस्त दीक्षा। तो श्रोताओं, अगर हम उनकी आरंभिक संगीत जीवन की बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि उनके जो मित्र सुभाष मुखोपाध्याय थे, उनके प्रभाव में आकर हेमंत कुमार ने 1933 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार को बंगाली संगीतकार शैलेश दासगुप्ता से काफ़ी प्रेरणा मिली। 1980 के दशक में टेलीविज़न पर प्रसारित एक साक्षात्कार में हेमंत कुमार ने कहा कि उन्होंने उस्ताद फैयाज खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, लेकिन उस्ताद की मौत के बाद उनका ये क्रम टूट गया।

सन 1937 में हेमंत कुमार ने अपना पहला गैर फिल्मी संगीत का डिस्क कोलंबिया लाबिल कंपनी के लिए जारी किया, जिसमें संगीत शैलेश दास गुप्ता ने दी और गीत लिखा था नरेश भट्टाचार्य ने। इसके बाद सन 1984 तक हेमंत कुमार ने हर

ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया कंपनी के लिए गैर फिल्मी गीत गाते रहे। उनका पहला हिंदी डिस्क इसी कंपनी के लिए जारी हुआ, जिसमें दो गीत कितना दुख भुलाया तुमने ओ प्रीत निभाने वाली काफ़ी मशहूर हो।

श्रोताओं, हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के सर्वश्रेष्ठ गायक माने जाते थे। उन्होंने 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिया बंग धाबी के लिए पहली बार रवींद्र संगीत रिकॉर्ड कराया। इसी साल उन्होंने कोलंबिया लाबेल के लिए गैर फिल्मी रवींद्र संगीत का रिकॉर्ड भी करवाया। सन 1947 में बांग्ला फिल्म अभियात्री के लिए संगीत निर्देशन किया। हालांकि इस समय तक उनकी गीतों को काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इसके बाद भी वे किसी बड़े व्यावसायिक सफलता से दूर थे। उनके समकालीन गायकों में तलत महमूद, सुधीर लाल चक्रवर्ती, धनंजय भट्टाचार्य, सत्य चौधरी, रॉबिन मजुमदार, धनंजय मित्र आदि काफ़ी चर्चित थे।

तुम पुकार लो, ये जादुई गीत फिल्म खामोशी से सुन रहे थे। इस गीत को लोग आज भी याद करते हैं और जब भी हेमंत कुमार को हम याद करते हैं तो इस गीत की को काफ़ी सराहा जाता है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार, और खूब सारे संदेश हमें भेजे जा रहे हैं जो कि गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर सिंह गिल, दजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। अगला संदेश जो आया है वो है यासिन अनजान का, जो कि और इनके साथ है साइमान नवाज़, मोहम्मद यासीन, हसन नवाज़, बाबू अहद अहद, मिफ्रा नवाज़, बीबी चाहत, सादिया। अगला जो संदेश है वह है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, जो हमें लिख रहे हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। अगला जो संदेश आया धर्मेंद्र चीपा का, और ये लिख रहे हैं कि इनको हमारा आज का ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आ रहा है। अगला संदेश है दिग्दर्शन गौर का मेरठ कैन से, और इनको भी हमारा कार्यक्रम काफ़ी पसंद आ रहा है। फारूक अली खान ने हमें अगला संदेश भेजा है, और इनके साथ हैं फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, हरजिंदर शिंदा, गांव नथाना, पंजाब से। और

मस्कीन हमें भेज रही हैं संदेश, और ये हमें भेज रही हैं शाहदरा दिल्ली से। इनके साथ है वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिहाना खुराना, फागू राम यादव हमें भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से। इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, राजकुमार डूडी हमें भेज रहे हैं, और ये हमें भेज रहे हैं गांव फरासी जिला हिसार से। राजू मिगलानी हमें संदेश भेज रहे हैं, और ये हमें भेज रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से। साथ ही अगला जो संदेश आया है हीरा मणि वर्मा का, और इनके ये हमें भेज रहे हैं भाटापारा से। तो श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा क्योंकि थोड़ी सी समय की कमी है। हम सुनवाते हैं आपको हेमंत कुमार की आवाज़ में ये अगला गीत।

श्रोताओं, हेमंदा का निधन 26 सितंबर 1989 को कोलकाता में हुआ। वे हमारे बीच नहीं है अब, लेकिन उनकी रूहानी आवाज़ और बेहतरीन संगीत के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे ठीक है कार्यक्रम लेकर दिन के 2:30 पर।

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडियस। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अर्चना गोयल का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज किया है लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म रजनीगंधा से।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज, वो कार्यक्रम जिसमें हम आपको सुनवाते हैं गोल्डन इरा के फिल्मी गाने। कार्यक्रम के साथ जुड़ी हूँ मैं, आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, फिल्म है ऊँचे लोग।

और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं बेटी बेटे फिल्म का ये दो गाना। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज़ हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम साइंस की दुनिया। आज इस प्रोग्राम के तहत आपको हम सुनवाएंगे साइंसी मौजूआत और फिल्में मौजू पर एक दिलचस्प गुफ्तगू। ये गुफ्तगू आप पहले भी उर्दू सर्विस से सुन चुके हैं और आपकी फरमाइश पर ही हम इसे आपके लिए दोबारा नश्र कर रहे हैं। तो लीजिए समाप्त कीजिए निमेश कपूर की ये दिलचस्प गुफ्तगू। उनसे महवे गुफ्तगू है नईम उद्दीन।
1: आज का ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। दोस्तों, एक ज़माना था जब हम फ़ज़ा की तरफ देखते थे तो उसमें हमें उड़ते हुए परिंदे दिखाई देते थे। बड़ा सुकून मिलता था उन्हें देखकर। वक्त बदला, ज़माना बदला, आसमान में हवाई जहाज़ उड़ते हुए देखने लगे। फिर साइंस ने तरक्की की, मज़ीद तरक्की की, और हमने देखा कि हवाई जहाज़ के साथ साथ रॉकेट्स भी हमें दिखाई देने लगे। इंसान चांद पर पहुंच गया और खला में इंसान जाने लगा और बग़ैर पायलट के हवाई जहाज़ भी उड़ने लगे और आज ड्रोन का ज़माना है। साइंस ने तरक्की की, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आईं। यूँ तो साइंस से हम हर रोज़ रोशनास होते हैं। अपने ड्राइंग रूम में हम अगर बैठे हों तब भी वहाँ साइंस के नज़ारे, जो इजादात होती हैं, वो हमारे चारों तरफ नज़र आती हैं। अब साइंस का मौजू हो और उसको फिल्मों में जगह ना मिले, ये कैसे हो सकता है जनाब? तो आज हम आपके लिए जो मौजू लेकर आए हैं साइंस नामा में, वो है साइंसी मौजूआत और फिल्में। इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निमिश कपूर साहब। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार में, और जहाँ तक फिल्मों की बात है तो बहुत गहरी उनकी पहुँच है वहाँ तक। बहुत सारे मौजूआत पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर निमिश कपूर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है।
2: जी नईम साहब, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा आदाब, नमस्कार।
1: डॉक्टर निमिश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्मों में साइंस को मौजू बनाने की जो शुरुआत थी वो कब से हुई, और ये सिलसिला वैसे तो आज भी चल रहा है।
2: जी नईम साहब, जैसा आपको पता है कि देश के सिनेमा का जो तारीख है वो 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है।
1: बेशक।
2: और जब देश आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा था तब पारसी थिएटर को पीछे छोड़ते हुए जो एंटरटेनमेंट का एक नया
1: रूप था,
2: रूप सामने आया और वो सिनेमा का तब आगाज़ हुआ। और सबसे पहले लुमेयर ब्रदर्स ने 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन होटल में 6 फिल्में बनाई जो बगैर अल्फाजों की थीं। अच्छा। उनका स्क्रीनिंग की गई,
1: गोया कि वो खामोश फिल्में थी।
2: जी, और इस तरह से भारत में सिनेमा शुरू हुआ।
1: जी।
2: और अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के ने जो 1913 में जो खामोश फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, तब से हम कह सकते हैं कि एक तरह से भारतीय सिनेमा की शुरुआत वो मानी जाती है। और तब से बहुत सारे कहानियाँ जिसमें आपने जैसे बताया साइंस फिक्शन भी शामिल हुई, उसको लेकर भी देश के फिल्मकार काम करते रहे। और बॉलीवुड की जो पहली साइंस फिक्शन फिल्म जिसे हम कहते हैं वो मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, जो शांतिलाल सोनी ने 1964 में बनाई थी। और भारतीय साइंस फिक्शन के फिल्मों में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो 1987 में शेखर कपूर ने जो फिल्म प्रोड्यूस की, जो डायरेक्ट की, वो मिस्टर इंडिया, उसको कहा जाता है।
1: बड़ी मकबूल फिल्म रही थी ये, इसमें अनिल कपूर साहब थे जहाँ तक मुझे याद है, श्रीदेवी भी थी।
2: जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया भारत की पहली साइंस फिक्शन फिल्म कही जाती है।
1: बिल्कुल।
2: और शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में नजर आए थे। और ये फिल्म एक ऐसे ऑर्फन लड़के पर आधारित है जो एक बड़े आलीशान घर में रहता है और उसके साथ 10 और अनाथ बच्चे भी रहते हैं। और एक दिन उस लड़के को एक ऐसी मशीन मिलती है जिससे वह कभी भी गायब हो सकता था।
1: तो
2: उसके बाद में पता चलता है कि यह मशीन फिल्म में फिल्म के विलेन को, जो देश को तबाह करना

0: चाहता है, उसके ज़रिए इसको बनाया गया है। और उसके बाद ये लड़का उस मशीन से फिल्म में विलेन को हरा देता है। बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्म ये साबित हुई
1: और ये ना सिर्फ बड़ों को अच्छी लगी थी बल्कि बच्चों ने भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया था।
0: जी जी बिल्कुल।
1: डॉक्टर निमिश, अभी आपने जिक्र किया मिस्टर इंडिया का, हालांकि इसके अलावा और भी कई फिल्में रहीं जो बड़ी मकबूल रहीं, साइंस के मौजूद पे बनी थी ये भी, जिसमें काबिले जिक्र हैं कोई मिल गया और रावण और क्रिश 3
0: जी,
1: वगैरह वगैरह, और मुझे जहाँ
0: जी
1: तक याद आ रहा है रोबोट भी एक फिल्म आई थी। तो इन तमाम फिल्मों में किस तरह के साइंसी मौजूद थे जिनको शामिल किया गया था?
0: देखिए, ये कोशिश रहती है जो फिल्म मेकर है कि वो जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं
1: जी
0: उसको फैंटेसी या अपने इमेजिनेशन के साथ दिखाए, ताकि साइंस भी पहुंच जाए और उसके फैक्चुअल कोई गलती भी ना हो।
1: नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये जितनी फिल्में आपने बताई ये हिंदी फिल्मों से इनका ताल्लुक़ है, ये हिंदी फिल्मों का हम जिक्र कर रहे थे जिनमें साइंस को मौजू बनाया गया। अगर हम जनूबी हिंद की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ भी बड़ी उम्दा फिल्में ऐसी बनी हैं जिनमें साइंसी मौजूद को जगह दी गई है।
0: बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि जो साइंस के मौजू हैं उनका बहुत ख़ास जो हिस्सा है वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में दिखाई पड़ता है।
1: जी
0: और एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 में 1600 से ज़्यादा फिल्में दक्षिण भारत में बनी, जिसमें एक अच्छी संख्या जो है वो तमिल फिल्मों की थी, जिसमें बहुत सी साइंस फिक्शन फिल्में भी शामिल थीं। अगर दक्षिण भारत के साइंस फिक्शन फिल्मों पर नज़र डालें तो
1: जी
0: 1952 में भारत की पहली साइंस फिक्शन फिल्म काडू यानी द जंगल थी, और यह तमिल और अंग्रेज़ी भाषा में बनाई गई थी, जिसको इंडियन और अमेरिकन फिल्म एक हम कह सकते हैं।
1: जी
0: और इसका जो डायरेक्शन है वो विलियम बर्के और टीआर सुंदरम ने किया था।
1: जी
0: और इसके बाद कासीलिंगम के डायरेक्शन में दूसरी साइंस फिक्शन फिल्म कलाई अरसी बनाई गई,
1: जी
0: और 1986 में राजशेखर के डायरेक्शन में फिल्म विक्रम तमिल भाषा में बनी साइंस फिक्शन फिल्म थी।
1: जी
0: और भारतीय सिनेमा में पहली बार इस फिल्म में गानों की रिकॉर्डिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल
1: ये
0: किया
1: तो
0: गया था।
1: बड़ी अच्छी मालूमात आपने दी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल पहली बार किया गया था
0: जी,
1: और उससे पहले हम दूसरी तरह की जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते थे।
0: और इसके साथ ही समय समय में जो दक्षिण भारत में नलाया मनिथन
1: जी
0: जो तमिल भाषा की फिल्म 1989 में बनाई गई, अधिसाया मनिथम भी तमिल में
1: जी
0: 1990 में, आदित्य 369 जो फिल्म है वो तेलुगु में 1991 में इसका प्रोडक्शन हुआ। 2011 में 7 आम अरिवु, 2012 में अम्बुली, 2013 में एरंदाम उलागम, 2015 में आई और इंदु नेत्र नलाई, 2016 में मिनिथन और 24 जैसी फिल्मों के साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में साइंस फिक्शन का एक लंबा दौर चला है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो साउथ इंडिया सिनेमा है वो जो हमारे और भारतीय सिनेमा, हमारे जो रीजनल सिनेमा हैं उसके
1: जी
0: मुकाबले साइंस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा वहाँ पर काम हुआ है और हो भी रहा है।
1: गालिबन ज़्यादा फिल्में वहाँ बनी हैं
0: जी जी
1: दिगर मकामात के।
0: जी और इसके साथ बंगाली और मराठी फिल्मों में भी साइंस फिक्शन की शुरुआत अच्छी रही है।
1: जी
0: भारतीय सिनेमा में पहली साइंस फिक्शन बांग्ला फिल्म जो है वो अजांत्रिक ऋत्विक घटक ने 1958 में बनाई थी। इसके बाद सत्यजीत रे ने 1960 के दशक में एक भारतीय अमरीकी साई फिक्शन फिल्म द एलियन बनाने का जिम्मा उठाया, लेकिन ये
1: जी
0: फिल्म पूरी नहीं हो सकी।
1: अच्छा
0: बंगाली फिल्मों के तारीख में आखिरी साइंस फिक्शन फिल्म फ्रेंड शताब्दी रॉय ने 2009 में इसको बनाया था।
1: ये तो बात हमने की बॉलीवुड फिल्मों की यानी हिंदुस्तानी फिल्म सनत की हम बात कर रहे थे जहाँ साइंस फिक्शन वाली फिल्में बनी, लेकिन अगर देखा जाए हॉलीवुड पर अगर हम नज़र डालें तो वहाँ भी बड़ी उम्दा फिल्में बनी हैं और बहुत कामयाब भी रही हैं। और जुरासिक पार्क का हम जिक्र कर सकते हैं, एक और फिल्म आई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ए स्पेस ओडिसी।
0: जी, ग्रेविटी है,
1: जी
0: स्पेस
1: ग्रेविटी
0: ओडिसी
1: है,
0: है, बहुत सी।
1: प्राइमर है।
0: जी
1: हम चाहेंगे थोड़ा सा

0: आप इस मुतालिक भी बताइए कि हॉलीवुड में जो बड़ी मकबूल फिल्में रही हैं जो साइंस फिक्शन पर बनी हैं।
1: देखिए, जो देश में फिल्म देखने वाले हैं उनका जो रुझान है वो साइंस फिक्शन का, अगर हम सब्जेक्ट लें तो वो हॉलीवुड फिल्मों की तरफ ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि उन फिल्मों में एक बेहतर बजट होता है और जो विजुअल इफेक्ट हम कह सकते हैं वो
0: जी
1: बेहतर, VFX का इस्तेमाल ज़्यादा
0: जी
1: दिलचस्प तरीके से किया जाता है। तो वैज्ञानिक सोच पर, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित होती हैं वो फिल्में, और उनकी कहानियाँ भी विज्ञान के इर्द गिर्द बुनी जाती हैं, जिसमें
0: जी
1: काफ़ी अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बहुत बड़े जो हमारा ऑडियंस है वो हॉलीवुड फिल्मों में दिलचस्पी ले रहा है।
0: जी हॉलीवुड की जिन फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें ख़ास बात ये देखने को मिलती है डॉक्टर निमिश, के साइंसी मौजू होने के बावजूद वो दिलचस्पी का बाइस बनी रहती हैं। वो सब कुछ उसमें होता है जो एक आम फीचर फिल्म में होता है।
1: अगर हम हॉलीवुड के साइंस फिक्शन की बात करें तो उनके पास टेक्नोलॉजी और जो VFX है, स्क्रिप्ट है, वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप देखें उनका ट्रेडिशन के हिसाब से, 1902 में फ्रांस में जो फिल्म बनाई गई थी, ए ट्रिप टू द मून, ये
0: जी
1: 1902 में फिल्म प्रोड्यूस हुई थी, एक बहुत बेहतरीन फिल्म जिसमें म्यूज़िक और एक्शन है, उसमें संवाद नहीं है।
0: जी
1: और उसके बाद ये साइंस फिक्शन तो हम नहीं कह सकते, ट्रिप टू द मून को 1902 में जो बनी, ये एक साइंस फैंटेसी हम ज़रूर कहेंगे। लेकिन उसके लगभग 65 साल बाद 1967 में
0: जी
1: जो है वो चांद पर चढ़ाई के नाम से फिल्म बनाई गई हिंदुस्तान में।
0: जी
1: तो उसमें कोई दो राय नहीं कि हमने बहुत कवर किया साइंस फिक्शन के एरियाज़ में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में हमने बहुत सारे काम किए, और नाम भी इफेक्ट, और बहुत सारी फिल्में अभी आई हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हम उन विदेशी फिल्मों की बात करें, उन हॉलीवुड फिल्मों की बात करें, जैसे आपने कहा था अभी, जैसे
0: जी
1: ग्रेविटी मुझे याद आ रहा है, साल 2013 में ये रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने एक बेहद लोकप्रियता हासिल की थी। और इस फिल्म में दो एस्ट्रोनॉट की कहानी दिखाई गई है
0: जी
1: जो स्पेस डिब्री के हमले के बाद जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करते दिखाए जाते हैं,
0: जी
1: और फिल्म में सैंड्रा बुलॉक मुख्य किरदार में हैं। और इसके बाद जो इंटरस्टेलर फिल्म है, द लव इज़ वन थिंग दैट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस, अगर आप सिनेमा को बारीकी से समझ रखते हैं
0: जी
1: तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्टोफर नोलन की यह फिल्म इसी वाक्य पर बेस्ड है। और फिल्म में जब कूपर ब्लैक होल के अंदर जाता है तो उस वक्त सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा होता है। जो टाइम और एक्जिस्टेंस
0: जी
1: के इस ब्लैक होल में कुछ भी नहीं बच पाता, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो इसके पार पा सके। तो ब्लैक होल में फंसने के बाद भी केवल एक चीज़ जो है वो सस्टेन करती है, और वो है प्यार, जो कूपर का उसकी बेटी मर्फ के
0: ये
1: तरफ
0: होता है
1: होता
0: जी
1: है। और इसी वजह से फिल्म के मेन टाइटल के नीचे इस लाइन को लिखा गया है। और इस फिल्म में आपको टाइम डायलेशन, वर्म होल, ब्लैक होल जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं,
0: जी
1: वो बहुत ही आम तरीके से उसको विजुलाइज किया गया है।
0: कहने का मकसद ये है कि फिल्म तो है ही वो, लेकिन उसमें बहुत सारी मालूमात भी है जिससे लोग इस्तेफादा करते हैं और उनकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा भी होता है।
1: बिल्कुल। और उसी तरह से अपोलो 13, जो साल 1995 में रिलीज़ हुई, और ये अमेरिकी एस्ट्रोनॉट की कहानी दिखाती है जो अपोलो 13 मिशन में तकनीकी मुश्किलातों के आने के बाद
0: जी
1: स्पेस में फंस गए हैं, और उनके स्पेसशिप में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। और अवतार जो है वो 2009 में रिलीज़ हुई
0: जी
1: फिल्म, उसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और इसमें एक बहुत खूबसूरत डायरेक्शन, एक बहुत शानदार स्टोरी प्लॉट दर्शकों के सामने आया,
0: जी
1: और जो हम इस अर्थ पर रहने वाले हैं वो
0: जी
1: ऐसा मून कहें या पेंडोरा के बारे में उनको पता लगता है, जहाँ बेशकीमती पत्थर, हीरे जवाहरात छिपे हुए हैं, और उसके जो एक्सटॉर्शन के लिए मिशन को भेजा जाता है। और फिल्म में दिखाया गया है कि खूबसूरत चांद को जो है वो पृथ्वी के लोग अपने एक तरह से कॉलोनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको खत्म करना चाहूँगा।

0: करते हैं करने लगते हैं। इस तरह से ये इस फिल्म में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को फिल्माया गया है।
1: और मुझे एक और नाम याद आ रहा है, आर माधवन की एक फिल्म थी रॉकेटरी, द नॉम्बी इफेक्ट,
0: जी हाँ, ये
1: ये
0: भी
1: बड़ी उम्दा फिल्म थी।
0: बहुत उम्दा फिल्म है, जिसमें एक साइंसदान के जद्दो जो है, तो उसकी मुश्किलातें किस तरह से उसको झूठे केस में फंसा कर परेशान किया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको
1: जी
0: बेगुनाह साबित किया। तो ये एक बहुत अच्छा सिलसिला चल निकला है बॉलीवुड में भी,
1: जी
0: और मुझे लगता है कि आने वाले समय में साइंस और साइंस फिक्शन दोनों को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा।
1: ये तो बात हुई साइंस फिक्शन की, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों की बात। हम जानना चाहते हैं आपसे कि साइंस पर बहुत उम्दा डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, थोड़ा सा उसके मुतालिक आप बताइए।
0: जी, पिछले 11 सालों से मैं नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूं, और इसमें हमें तमाम उम्दा फिल्में हर साल मिलती हैं, 400-500 से अधिक के नंबर में, जो हिंदुस्तान और तमाम मुल्कों से आती हैं। उसमें क्योंकि समय बहुत कम है, तो मैं एक फिल्म का ज़रूर यहाँ जिक्र करना
1: जी
0: चाहूँगा,
1: ज़रूर।
0: और वो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक रियल स्टोरी, ह्यूमन एंगल स्टोरी, और साइंस को कैसे क्लब किया गया, एनवायरनमेंट के मुद्दों को कैसे उठाया गया,
1: जी
0: और वो सेविंग दी सेवियोर, एक फिल्म मेकर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने किस तरह से बांदीपोरा जो एक वेट लैंड है और एक जो फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके की, उसमें किस तरह से एक रैक पिकर बिल्ला, जो 9-10 साल का एक बच्चा है, वो जाता है कचरा बीनने के
1: बीनने
0: लिए,
1: वाला जी
0: और वो अपने घर की मदद करता है, उसको कुछ रुपए वो कमा लेता है दिन में, और इस तरह से वो जो इकोसिस्टम है उस
1: जी
0: लेक का, जो तमाम मछलियाँ और जो वहाँ का लिविंग जो इकोसिस्टम है, उसको वो बचा रहा है उस गंदगी से, उस पोल्यूशन से। और रामसर कन्वेंशन साइट है ये यूनाइटेड नेशंस की, और इस फिल्म
1: जी
0: को नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल के अलावा दुनिया के तमाम देशों में जो है वो अवार्ड्स मिले, और मन की बात में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस बिल्ला का जिक्र किया जो उस वेटलैंड में, उस बांदीपोरा इलाके में, वोलार लेक में
1: जी
0: उस पोल्यूशन को साफ कर रहा है, और उस बच्चे को जम्मू कश्मीर के सफाई अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया।
1: वाह, बड़ी उम्दा मालूमात आपने दी साइंस फिक्शन के हवाले से। जो फिल्में हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में बनी या फिर हॉलीवुड में बनी, उसके अलावा आपने साइंस फिक्शन पर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बड़ी उम्दा मालूमात आपने दी। हम उम्मीद करते हैं हमारे सामेईन को ये ज़रूर पसंद आया होगा। और आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू था साइंसी मौजूआत और फिल्में, इस हवाले से हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर निमिष कपूर साहब से। सीनियर साइंटिस्ट हैं आप विज्ञान प्रसार में। आपका स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए और इतनी उम्दा मालूमात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया नईम साहब, आपको और सभी सुनने वालों को। मैं शुक्रगुजार रहूँगा आप सभी का कि आप साइंस फिक्शन और साइंस की फिल्में देखेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामिन, ये था आज का साइंसनामा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए मौजू के साथ। अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त।
2: अभी आप निमेश कपूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनसे महवे गुफ्तगू थे नईमुद्दीन। सामईन, यकीनन आप इस गुफ्तगू से महजूज हुए होंगे और आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। आइए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं जहाने रंगोबू उन्वान से ये मालूमाती तकरीर। मुकर्रर हैं जनाब इकबाल मुहीउद्दीन, तो लीजिए समाअत कीजिए।
3: उर्दू ज़बान के एक मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में ये पूछा है कि हम दमे दरीना कैसा है जहाने रंग बू। इसका जवाब ये है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कार गहे शीशा गरी का। कुदरत ने कायनात के हर शय को बहुत खूबसूरती और नरकत से बनाया है, जिसको ज़रा भी छेड़ने से सारा निज़ाम धरम भरम हो सकता है और कायनात की कुदरती खूबसूरती और रंग बू का काफ़ी हद तक मुतासर हो सकती है। दरअसल कायनात की खूबसूरती और उसका रंग बू दिल को मोह लेने वाली शय है, जिसमें 8 सैारे निज़ाम कुदरत के तहत एक मखसूस उसूल के मुताबिक अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। इन सैारों में हरे, नीले, पीले और भूरे रंगों से सजी नहायत खूबसूरत हमारी ज़मीन उछाली हुई गेंद की मानंद खला में मुअल्लक है और अपने महवर पर घूम रही है। चांद, सूरज और दिगर सैारे भी गोल हैं, वो भी अपने अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं। ज़मीन की तख्लीक के बारे में इस्लामी नज़रिया मुफस्सिरों ने सूरह फलक

एक बहुत बड़े धमाके यानी बिग बैंग की निशानदेही से की है, जिसके नतीजे में कायनात वजूद में आई। साइंस भी यही मानती है। माहिरीन जोग्राफिया जब हमारे इस खूबसूरत सैारे के मुतालिक तहकीक करते हैं तो हवा के इस गलाफ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो कुर्रे अर्ज़ को ढके हुए है। हवा के यही गलाफ जो ज़मीन को पूरी तरह लपेटे हुए है, कुर्रे बाद या एटमोसफियर कहलाता है। ये दरअसल कई किस्मों की गैसों का आमेजा है। ये गैस ठोस ज़मीन पर कशिश सख्त ग्रेविटेशन की वजह से कायम रहती है। यह कुर्रे बाद दरअसल हमारी ज़मीन का ही एक हिस्सा है। ज़मीन के चारों तरफ नहायत खूबसूरत नीले रंग के पानी की चादर भी है, जो इस सैारे को दूसरे सैारों पर फोकियत बख्शती है। इसीलिए कुर्रे अर्ज़ को नीला सैारा भी कहते हैं, जो खला से देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। कुर्रे अर्ज़ को कुदरत की सनाई ने नहायत ही दिलकश और खूबसूरत बनाया है। ज़मीन पर मौजूद दरिया, समुंदर, पहाड़, झीलें, मादनियात, सब्ज़ार, फल फूल और ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद हवाई गलाफ सब मिलकर माहौल को तशकील देते हैं। अल्लाह ताला ने कुर्रे अर्ज़ पर इब्तिदा से ही एक इंतहाई मतवाजन माहौल पैदा किया है, ताकि उस पर बसने वाले इंसान आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन दुनिया की आबादी में इजाफे के साथ साथ इंसान ने अपनी फहम व फरासत को बरूए कार लाते हुए मजीद आसाइशों की खातिर बेशुमार नई नई ईजादात की। इन नई ईजादात से सनती मैदान में तो इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, लेकिन कुर्रे अर्ज़ के कुदरती माहौल का तवाजुन बिगड़ना शुरू हो गया। मौजूदा दौर जो इंसानी खुशहाली और तरक्की का दौर समझा जाता है, माहौलियाती आलूदगी के इंतहाई संगीन मसले से दोचार है। माहौलियाती आलूदगी के मुख्तलिफ अकसाम हैं, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी, जिनसे माहौल को खतरा दरपेश हैं। इनमें सबसे ज़्यादा असर अंदाज होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी है। ज़मीन चारों तरफ से मुख्तलिफ गैसों के एक दबीस पर्दे में घिरी हुई है, जो कि सूरज से निकलने वाली रोशनी और हरारत को तो ज़मीन पर गुजरने देती है, लेकिन उससे निकलने वाली चंद मुज़िर शुआओं को जज्ब करके जानदारों और नबातात को उनके मोहलिक असरात से महफूज रखती है। कुर्रे हवाई ज़मीन पर हरारत का तवाज़ुन बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। फ़िज़ा में मौजूद खुश्क और साफ हवा बहुत सी गैसों का मरकब है। उनमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा मकदार में है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत कलील मकदार में पाई जाती हैं, जिनमें आबी बुखारात, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। इनके अलावा फ़िज़ा में कुदरती तौर पर चंद मुज़िर गैसें मसलन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी मौजूद होती हैं। लेकिन जब तक उनकी मकदार इतनी कलील है कि वो किसी जानदार या नबातात के लिए किसी खतरे का बास न बने, किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा नहीं होता। लेकिन उसकी मकदार में इजाफा इंसान और माहौल दोनों के लिए नुकसान का बास बन सकता है। आज आलमी सतह पर माहौलियती निज़ाम में तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं, जिनसे माहौल को खतरा दरपेश हैं। मौसम भी काफ़ी हद तक तब्दील हो रहे हैं, जिसका असर नुमाया है। यह माहौलियती तब्दीलियाँ खास तौर पर दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से रूनुमा हो रही हैं। आबोहवा के नमूने में तब्दीली की एक अहम वजह आलमी हिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग है। कुर्रे बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस वगैरह की ज़्यादती हो जाती है, तो कुर्रे अर्ज़ की गर्मी को अपने अंदर भी जज्ब कर लेती हैं, वापस ज़मीन की तरफ भेज देती हैं। इस अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। इस अमल से कुर्रे अर्ज़ की आबोहवा बहुत गर्म हो जाती है, ऐसी सूरत को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। उसका असर यह होता है कि कुदरती आबोहवा के नमूने या पैटर्न में तब्दीली होने लगती है। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्री सतह में इजाफा होने लगता है। नतीजा यह होता है कि सैलाब आ जाता है और साहली इलाकों के शहर डूबने लगते हैं। वहाँ की इंसानी व हैवानी आबादी बुरी तरह मुतासर हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के असर से बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बहते हुए पानी की मकदार समुद्रों में चली जाती है, साफ़ पानी पीने की कमी हो जाती है। दर्जा हरारत के बढ़ जाने से ज़रात पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 2 डिग्री दर्जा हरारत भी अगर बढ़ जाए तो हीट बेल्ट के तबाह होने का खतरा लाहक हो जाता है। दर्जा हरारत के बढ़ने से कुर्रे बाद की मुख्तलिफ तहों पर भी असर पड़ता है। कीमाई असरात और सनती आलूदगी के नतीजे में आबोहवा के नमूने में तब्दीली के आसार नजर आने लगते हैं। कुर्रे बाद के ओजोन तह में कीमाई अज़ा ने छेद कर दिया है, जिससे सूरज की पैरा बैगनी शुआएँ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आने लगती है। इस तरह के दरपेश खतरा से माहौल बुरी तरह मुतासर होता है, जिससे इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा पैदा हो जाता है। ज़मीन के ऊपर हवा की परत में गैर मतलूबा तब्दीली जो गैसों के निकलने की वजह से होती है, पूरे माहौल को मुतासर करती रहती है। ऐसी मुतासर शुदा माहौलियात को माहौल की कसावत कहते हैं। माहौलियत कसावत हैवानी और नबाताती ज़िंदगी को मुतासर करती है। ये माहौलियती कसावत 5 अज़ा से पैदा होती हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स। इनके अलावा दूसरी तरह के अज़ा भी हवा में पाए जाते हैं, जिनसे कसावत के फैलने मदद मिलती है। 1960 की दहाई में माहौलियती कसावत का मसला सारी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल निशान बनकर खड़ा हो गया था। दुनिया की तरक्की याफ्ता मालिक ने साइंसी तजुर्बा शुरू किए ताकि माहौलियती कसावत कम से कम की जा सके, लोगों की जान और माल को कम से कम नुकसान पहुँचे। माहौलियाती आलूदगी से पैदा शुदा नाकाबिल तलाफी नुकसान फितरत के लिए एक ज़बरदस्त खतरा बन गए हैं। आलमी माहौलियती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि हर साल 6 मिलियन हेक्टर पैदावार के लायक ज़मीन नाकुसुल इस्तेमाल रेगिस्तान में तब्दील हो रही है। 11 मिलियन हेक्टर जंगलात हर साल ज़ाया हो रहे हैं। अम्ल तेजाबियत या एसिड प्रेसिपिटेशन का

0: यानी ओजोन लेयर में सुराख वाकई हो चुका है, जिसकी वजह से जिल्दियाती कैंसर या स्किन कैंसर के वाकई दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आबी सिलसिले खुराक या ओशन फूड चेन का तवाज़ुन बिगड़ चुका है और ज़मींदोज़ सतह आब यानी अंडरग्राउंड वाटर टेबल में मुस्तकिल कमी महसूस की जा रही है। इस तरह हम देखते हैं कि माहौल को दरपेश खतरात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनका तदारुक जल्द से जल्द करना ज़रूरी है। सनअती इनकलाब के बाद से आबोहवा के नमूने पैटर्न में बहुत तब्दीलियाँ रुनुमा हुई। माहौलियाती और सनअती आलूगी दुनिया के बड़े मसाइल में से एक है। बड़े शहरों और सनअती इलाकों में बिजली पैदा करने वाले कारखानों के आसपास आलूगी का मसला ज़्यादा संगीन है। सनअतों ने आलूगी कम करने की तरफ अब तक बहुत लापरवाही बरती है, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत मुतासर होती जा रही है, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए माहौल साफ माहौल लाजमी है। सनअतों से निकलने वाले धुएँ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नुकसानदेह लोहे और कीमिया की वजह से फ़िज़ा नाकिस होकर आबोहवा के पैटर्न पर असरअंदाज होती है। फ़िज़ा में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार से कुरे अर्ज़ पर कुदरती गैस का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। यही वजह है उसकी ज़्यादती की वजह से कुरे अर्ज़ की गर्मी बढ़ती जा रही है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अगर इस तरह हरारत बढ़ती रही तो आर्कटिक और अंटार्कटिक के अजीम कतः बर्फ़ की चट्टानें पिघलेंगे, जिसके नतीजे में समुद्र की आबी सतह बेइंतहा बढ़ जाएगी। साहली शहरों को और रियासतों का वजूद अक्सर खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। सनअतों से खारिज होने वाले नुकसानदेह गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैर ज़रूरी ज़्यादती की वजह से ये मादे बारिश से मिलकर तेज़ाबी सूरत अख्तियार कर लेते हैं, जिससे पानी तेज़ाबी हो जाता है। इसे तेज़ाबी बारिश भी कहते हैं। ऐसी बारिश की वजह से ज़मीन की कुव्वत ज़रखेज़ी बर्बाद हो जाती है, पेड़ पौधों की फसलें तबाह हो जाती हैं। न सिर्फ आबी वसायल मसलन ज़मीन से फूटने वाले चश्मे ये मुतासर होते हैं, जिनसे आबी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि उसके सबब कदीम तामीरात पर भी बुरा असर पड़ता है। इमारतें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, आखिरकार गिर जाती हैं। इसे स्टोन कैंसर कहते हैं। माहौल को दरपेश इस तरह के खतरात बहुत तकलीफ़ देह होते हैं, जिनका फौरी तदारुक बहुत ज़रूरी है। सनअती इनकलाब के बाद चीन का एक तिहाई हिस्सा तेज़ाबी बारिश से बुरी तरह मुतासर हो रहा है, मगर वहाँ के मुकामी सियासी रहनुमा आबोहवा के मेयार को बरकरार रखने के नाकाम कोश हो गए हैं, क्योंकि वो सनअती तरक्यात में मुदाखलत नहीं चाहते। पिछले बरस चीन की फैक्ट्रियों में 25.5 मिलियन टन सल्फर ऑक्साइड उगला, जिनके कीमियाई असरात तेज़ाबी बारिश के ज़िम्मेदार हैं। सन 2000 से अब तक 27% फ़िज़ाई कसाफत वहाँ की फ़िज़ा में घुल गई है, जो तेज़ाबी बारिश पैदा करती रहती है। इसकी वजह से वहाँ की मिट्टी और खाने की अशिया ज़्यादा आलूद हो रही हैं। माहौलती आलूदगी का मतलब है बायोगैस केमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल का कायम होना। माहौल में सल्फर डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होने से पेड़ पौधे हैवानात मुतासर होते हैं, जिनसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज्यादती से ऑक्सीजन को कम करने वाली काही पैदा हो जाती है, जिसे मछलियों और पानी के दिगर जानदारों के खत्म होने का अंदेशा होता है। हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और तेज़ी से बढ़ती हुई शहरी ज़िंदगी गुजारने की चाहत ने तो हमें बड़ी बड़ी सन्नतें, बड़े बड़े कारखाने, तेज़ी से दौड़ती हुई मोटर गाड़ियाँ, छोटे बड़े खूबसूरत घर फराहम किए, मगर दूसरी तरफ हमारी शफाफ फ़िज़ा इंसान की पैदा करदा चीज़ों ने गैसों की कुछ ज़्यादा मकदार में फ़िज़ा में जा मिलाया और हमारी फ़िज़ा को कुर्रबाग को आलूदा करके छोड़ा, जो कि अब खुद हजरत इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो गए हैं। हमारी ज़मीन सारे सैारों में कितनी खुशकस्मत है कि उसको कुदरत ने अपनी सन्नाई से बेहद खूबसूरती बख्शी, कुर्रे आब व कुर्रे बाद और सब्ज़ादारों से मुज़य्यन किया और इंसान को इतनी खूबसूरत शय तोहफे के तौर पर इनायत किया, जबकि दूसरे सैारों को वीरानी ही नसीब हुई। कुदरत ने कायनात के हर शय को बहुत खूबसूरती नज़ाकत से बनाया है, उनका आपस में तवाज़ुन भी कायम रखा है। इस कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखना हज़रत इंसान का काम है, ताकि कुर्रे अर्ज़ के शफाफ माहौल से उसकी खूबसूरती में हमेशा चार चांद लगते रहें। इस खूबसूरत नीले सैारे को हमें संभाल कर रखना है और उसके माहौल को हर तरह दरपेश खतरा से बचाना है, ताकि हम अपने आने वाली नस्लों को एक बेहद खूबसूरत कुर्रे अर्ज़ उसके साफ और शफाफ माहौल के साथ विरासत में दे सकें। अगर इस अमल में ज़रा भी फ़र्क आए तो समझिए कि कुदरती निज़ाम मईशत या इको सिस्टम दरहम बरहम हो जाएगा और कायनात की खूबसूरती और रंग वबू बुरते मुतासर हो जाएगी, जिसे इंसानी हैवानी और नबाताती ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। लिहाजा बकौल शायर इस बात पर अमल करना ज़रूरी है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कार गए शीशा गरी का।
1: सामीन, अभी आप जहान रंग वबू उन्वान से ये तकरीर सुन रहे थे। मुकर्रर थे इकबाल मुहीउद्दीन। तो इसी के साथ अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को इस उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। 4 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियन

0: शहर पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन कल शुरू हुआ। श्री मोदी एवियां जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जनेवा में उतरे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमलिन ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हार्दिक अभिवादन किया और परस्पर साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। संक्षिप्त बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनेवा से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित एवियां के लिए रवाना हुए। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन में भारत की निरंतर उपस्थिति प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने और शांति, सुरक्षा, सतत विकास तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। ये सम्मेलन भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक मंच पर विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज़ तथा चिंताओं को बुलंद कर सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पोस्ट किए गए संदेशों में बदलाव करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जन भागीदारी में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वता नेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का मुकाबला उरुग्वे से होगा। उधर पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र में बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4:10 हुए हैं। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित। थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है साबरीन, जो कि हारून सैफी की पुत्री है। इनकी उम्र 20 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य, कद 5 फुट है। घर से बिना बताए ये कहीं चली गई है। अगर किसी ने भी इनको कहीं देखा हो या कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद से संपर्क करें। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है पिंकी। थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनकी आयु 33 वर्ष है, कद 162 सेंटीमीटर। अंतिम बार इन्हें अशोक विहार लोनी गाजियाबाद में देखा गया। घर से झगड़ा करके ये कहीं चली गई हैं। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वह थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है सोनम। अंतिम बार इन्हें 1 मई 2026 को घर पर ही देखा गया। इनकी आयु 20 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच। घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। अगली जानकारी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त हुई है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है बुसरा, पुत्री असलाम की पुत्री हैं। अंतिम बार इन्हें 13 अप्रैल 2026 को देखा गया। इनकी आयु 32 वर्ष है, कद 157 सेंटीमीटर, शरीर की बनावट सामान्य है। स्कूल पढ़ाने जा रही थी और स्कूल नहीं पहुंची। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो वह थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क कर सकते हैं। थाना सिहानी गेट कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुमशुदा व्यक्ति का नाम है नैना। अंतिम बार इन्हें घर पर ही देखा गया 14 मई 2026 को। इनकी आयु 19 वर्ष है, कद लगभग 5 फीट, गले पर निशान है। और किसी ने भी इनके बारे में कोई जानकारी दी तो उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। इन्हें कहीं देखा जाए तो थाना सिहानी गेट कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। कोतवाली सिहानी गेट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है चेतन। अंतिम बार इन्हें 2 मई 2026 को घर पर ही देखा गया। इनकी आयु 30 वर्ष है, कद 5 फुट 5 इंच। घर से बिना बताए ये कहीं चले गए हैं। कहीं भी इनको देखा जाए तो वे थाना सिहानी गेट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। कोतवाली सिहानी गेट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम है हरीश शंकर। अंतिम बार इन्हें 2 अप्रैल 2026 को देखा गया। इनकी आयु 45 वर्ष है, कद 158 सेंटीमीटर। किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो तो वे कोतवाली सिहानी गेट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। तो श्रोताओं, ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित जानकारी।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: कोई शहरों की रोशनी में सपने बुन रहा है, कोई घर से दूर रहकर अपनों के लिए जुनून चुन रहा है। बैंक के अकाउंट में जो रकम पहुंचती है हर महीने, उसमें सिर्फ पैसे नहीं, किसी का प्यार और मेहनत भी चलकर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संचिता
1: और मैं उत्तम,
0: आज के आपके होस्ट जुड़ चुके हैं युववाणी से। आज 16 जून को दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस।
1: संचिता, ये रेमिटेंसेस क्या होता है?
0: बताती हूँ उत्तम। जब कोई व्यक्ति अपने घर और परिवार से दूर किसी दूसरे शहर या देश में काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार को भेजता है, उसे रेमिटेंस कहते हैं।
1: मतलब ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये किसी के बच्चे की अच्छी पढ़ाई है, किसी के टूटे घर की मरम्मत है, किसी के माता पिता की दवाइयों का खर्च है, या यूं कहूं एक बेहतर कल की उम्मीद है।
0: बिल्कुल, विस्थापन आपको देती तो बहुत कुछ है, पर पता है आपसे क्या ले लेती है? जब कोई पूछता है कि बेटा घर कहाँ है तुम्हारा, तो वो जो 2 सेकंड का पॉज आता है जिसमें आप ये सोचते हो कि क्या बताऊं, जहाँ से माता पिता हैं उसे अपना घर बताऊं, जहाँ पैदा हुआ उसे घर बताऊं, या जहाँ हूँ उसे घर बताऊं। इसी से रिलेटेड एक सुंदर सा शेर है। कुछ है जो घर दे नहीं पाता है किसी को, वरना कोई यूं ही सफर में नहीं रहता।
1: मैं समझता हूँ घर छोड़ना आसान नहीं होता। हमारा पहला गीत हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपने परिवार के बेहतर कल के लिए घर छोड़ा है। फिल्म माचिस से छोड़ आए हम वो गलियाँ, हरिहरन और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। आशा करता हूँ कि इस गाने को सुनकर आपको घर की याद ज़रूर आएगी।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना। अच्छा उत्तम, मैं एक बात बोलना चाहती थी तुम्हें। क्या पता है कि बाहर से भी, जैसे कि कानपुर हो, लखनऊ हो, वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, दूर दूर से बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं।
1: संचिता, मैं बताऊं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं जिसने 2000 किलोमीटर तक का सफर तय किया है इस शहर में।
0: और ऐसे ही बच्चों को जो दूर से यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, उन सभी को हैप्पी इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंसेस डे।
1: विल दैट बीइंग सेड, आगे बढ़ते हैं मन से माइक्रोफोन तक के सेगमेंट में, जहां हमारे दोस्त आंचल और निधि एक बेहतरीन युवा कवयित्री बबली गुजर से बातचीत करेंगे।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल। आज हमारे साथ एक युवा कवयित्री जुड़ी हैं जिनका नाम है बबली गुज्जर जी। बबली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आंचल।
4: दोस्तों, मैं निधि। आपको बता दूं कि हमारे साथ जुड़ी खास मेहमान पेशे से शिक्षिका हैं और साहित्य से जुड़े वेब पोर्टल्स कविता कोश, हिंदवी, समकालीन जनमत और कई पत्रिकाएं जैसे कि बहुमत, चेतना, स्वर्णवाणी आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं।
2: बबली जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको साहित्य में कविताएं लिखने की प्रेरणा मिली कहाँ से?
3: कविताएं लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कविताएं पढ़ना। तो जब आप कविताएं पढ़ते हैं और आपके पास एक्सप्रेशन के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो आप फिर कविताएं लिखना भी चाहते हैं। संवेदनशीलता सबसे पहला फैक्टर होता है। आपके अंदर जब भावनाएं होंगी, उनके अप डाउन्स होंगे, तो फिर आप अपने आप को लिखना चाहेंगे कि जो मन में है उसे लिखें। वो धीरे धीरे जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो आपकी लेखनी बहुत शार्प हो जाती है और अच्छी कविताएं आ जाती हैं बाहर।
2: हम आपकी कविताएं भी सुनना चाहेंगे, अगर आप हमें सुना सके तो।
3: दोस्तों, मैं आपको एक अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भरोसा। संसार के सबसे खूबसूरत क्षण में एक बेटी ने अपने पिता को सुनाई होगी अपनी प्रेम कथा, भय से होकर बेखबर। संसार के सबसे महकते फूल सजाए गए

0: असमय विधवा हुई स्त्री के जूड़े में उसके प्रेमी ने एक रोज बिना किसी डर, संसार की सबसे काबिल औलादें माँ के दूसरे विवाह में परसा रहे होंगे फूल, दुनिया के सबसे सच्चे प्रणय निवेदन में स्वीकारा गया होगा इनकार भी उसी तरह कि जैसे खुशी से स्वीकारा जाता है कबूल। इस दुनिया में बाकी है ईश्वर तब तक जब तक धूप रोशनी मिट्टी पेड़ हवा, उतने ही समय जीवित रहे आदमी जितने समय किसी रिश्ते में रहे वफा। कि मोहब्बत दिलों में घर कर लेना है, घरों में कैद कर लेने से बनता रिश्ता नहीं, कि सावन आता है तो भीग जाता है हर कोई, ईश्वर किसी का धर्म देखकर बरसता नहीं, चले जाना जीवन से उसके बेशक हो जाना बुद्ध, मत लौटना वापस मत लेना नन्हों की भी सुध, भूल जाना वादे पुराने सारे बेशक, छोड़ देना उसे भटकता हुआ कहीं, कि औरत का दिल तोड़ देना चाहे लेकिन उसका भरोसा नहीं।
1: वाह बबली जी वाह, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके बैग पे भी लिखा हुआ है वाह बबली जी वाह, बिल्कुल उसी तरह आपकी कविता भी एकदम मंत्रमुग्ध कर दी और वो जिस तरह से मन को झकझोर के रख दिया, मगर साथ के साथ एक संदेश भी हमारे युवा के साथ साथ सभी को मिली है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: बबली जी, जैसे कि युवा का मन वायु सा होता है, उसमें उतार चढ़ाव कई तरह के आते हैं, इन उतार चढ़ाव में भावनाओं का जो खेल होता है, जिसमें कभी वो उदास होते हैं, कभी प्रेम में होते हैं, कभी वियोग में होते हैं, इस बीच में साहित्य उनको किस तरह से मदद करता है?
0: देखिए, साहित्य जो होता है वो हमारी सारी संवेदनाओं को, सारे आवेगों को एक जगह लेके आता है, चाहे हम उसे पढ़ रहे हैं चाहे लिख रहे हैं। तो मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि डायरी जो आपका वर्क होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कविताएं लिखने की लग्जरी अगर आपको कुदरत ने नहीं दी है तो आप उनको पन्नों पे भावनाओं को उतारने की लग्जरी तो है, तो वो बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए, और उन्हें पता होना चाहिए कि सही समय पर उन्होंने कब अपनी भावनाएं कब उनको एक्सप्रेस किया है। इसी के रिगार्डिंग मेरी एक कविता है, हिसाब के कच्चे लोग। ठीक ठीक किस बखत, ठीक ठीक किस बखत किसी को बतला देना चाहिए था कि कुछ भी तो ठीक नहीं है ज़िंदगी में। ठीक किस बखत बाबा के गले लगकर उनसे कह देना चाहिए था कि हम एक लंबे समय से इच्छा थी उनकी। ठीक किस बखत आवाज़ ऊंची करके पुकार लेना था वापस जाते प्रेमी का नाम, और मत जाओ कहकर बचा लेनी थी अपनी प्रेम कहानी। ठीक किस बखत ये मान लेना चाहिए था कि ये अकेलापन हमें खा जाएगा एक दिन, छत की कड़ियों पर लगे घुन की तरह, और ये जिसे हम अपना घर कहते हैं इसकी चार दीवारी ऐसे टूट कर गिरेगी कि लहूलुहान हो जाएगी जख्मी पीठ। ईश्वर को भी तो जैसे नहीं ज्ञात था ठीक ठीक कितना दुख देना चाहिए कि कोई जीते जी मर ही ना जाए। तेज रोते रोते बेसुध होने के बाद ठीक कितनी देर बाद याद आती है पीछे रह गए लोगों के लिए जीना भी है, किसी अपने के मर जाने के ठीक कितने दिन बाद दोस्त से बोल देना चाहिए था, अब सब ठीक हो गया है दोस्त, हमने आत्मा का एक बड़ा हिस्सा कितना नम कर दिया है रो रो कर, हम जिंदगी में दुख के पक्के और हिसाब के कच्चे लोग हैं।
1: बबली जी, आपके शब्द एकदम दिल को छू जा रहे हैं, अभी मन कर रहा है कि मैं आपको सुनती ही रहूं बस।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मन से माइक्रोफोन तक का सफर, जिसमें हमारे साथ मौजूद थी हमारी खास मेहमान बबली गुज्जर जी।
2: क्या खूब कहा है बबली गुज्जर जी ने।
3: वाह बबली जी वाह, कविता एक ऐसा माध्यम है जो गागर से सागर भरने तक का काम करता है। हमारे मन के भीतर जो चल रहा है वो कम शब्दों में बयां करता है, और आज जो दिल्ली में मौसम है वो हमारा दिन सवार देगा। सुनते हैं सवार लूं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में।

0: रंग कम हो या ज़्यादा, एहसास होना चाहिए। कैनवस छोटा हो या बड़ा, अंदाज नया होना चाहिए।
1: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेंड की जो सिर्फ फैशन या लाइफस्टाइल तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि आर्ट की दुनिया में भी छा गया है। हम बात करने वाले हैं मिनिमलिज्म की।
0: बिल्कुल उत्तम। एक ज़माना था जब पेंटिंग्स में जितने ज़्यादा कलर्स और डिटेल्स होते थे, उतनी ही मास्टरपीस मानी जाती थी। लेकिन आज जेन ज़ी और यंग आर्टिस्ट के बीच एक नया मंत्र पॉपुलर हो रहा है, पता है क्या? लेस इज मोर।
1: वाह। और ऑनेस्टली, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त भी आपने नोटिस किया होगा, एक सिंपल लाइन, एक मोनोक्रोम फोटोग्राफ या एक क्लीन डिजिटल इलस्ट्रेशन कभी कभी हजार डिटेल्स वाली आर्टवर्क से ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाती है,
0: और वो बहुत सुंदर भी दिखती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मिनिमलिज्म सिर्फ आर्ट नहीं, हमारी लाइफ का रिफ्लेक्शन भी बन गया है। आज के यूथ के पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। नोटिफिकेशंस, रील्स, अपडेट्स, ट्रेंड्स, सब कुछ इतना ज्यादा है कि सिंप्लिसिटी खुद एक लग्जरी लगने लगी है।
1: एग्जैक्टली। इसी वजह से आर्टिस्ट भी इमोशंस और कॉम्प्लिकेटेड विजुअल्स के बजाय सिंपल एलिमेंट से एक्सप्रेस करने लगे हैं। एक एम्प्टी स्पेस या एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम भी पावरफुल स्टोरी सुना सकता है।
0: अच्छा उत्तम, लेकिन सवाल ये है, क्या मिनिमलिज्म सिर्फ एक ट्रेंड है या फ्यूचर भी?
1: मुझे लगता है कि ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक माइंडसेट है। हर जनरेशन अपनी एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्रिएट करती है। हमारी जनरेशन शायद कह रही है कि

हर बात को लाउड होने की जरूरत नहीं है। हम सब में किसी न किसी चीज का फितूर जरूर होता है, किसी में आर्ट का है, किसी में ट्रैवल का, मुझे गाने सुनाने का है। तो अगला गाना जो मैं सुना रहा हूँ वो है फिल्म फितूर से, ये फितूर मेरा, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: क्रिएटिविटी का फॉर्म है। आज के क्रिएटर्स क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, चाहे फोटोग्राफी हो, म्यूज़िक हो, ग्राफिक डिज़ाइन हो या डांस परफॉर्मेंसेस। सिंप्लिसिटी ऑडियंस को कनेक्ट करने का नया मीडियम बन रही है।
1: बिल्कुल सही कहा संचिता, लेकिन एक बात तो क्लियर है, मिनिमलिज्म का मतलब बोरिंग होना नहीं है, उसका अर्थ है कि अननेसेसरी चीज़ों को हटाकर जो इम्पोर्टेंट है उसे हाईलाइट करना, जैसे आज हमें किया है।
0: बहुत ही अच्छा कहा उत्तम तुमने। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या मिनिमलिज्म आर्ट का फ्यूचर है या फिर हम कभी फिर से लाउड कलर्स और ग्रैंड एक्सप्रेशंस की तरफ लौटेंगे?
1: हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आर्ट की सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि हर नज़रिया अपनी जगह सही होता है, यहाँ कोई गलत नहीं होता।
0: और इसी सिंपल लेकिन मीनिंगफुल थॉट के साथ चलते हैं एक ऐसे गाने की तरफ जो सिंप्लिसिटी, सेल्फ डिस्कवरी और इनर पीस को ब्यूटिफुली सेलिब्रेट करता है। गाना क्यों फ्रॉम बर्फी।
1: गाना सुनिए, मुस्कुराइए और याद रखिए।
0: गहरी बात वही होती है जो सबसे कम लफ्जों में कही जाए।

0: बहुत पसंद है मुझे ये गाना, धन्यवाद संचिता जी इसे बजाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं युववाणी के अगले अध्याय की तरफ, जहां हम आपको आज से जुड़े रोचक फैक्ट्स बताते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, आज के ही दिन 1963 में वेलेंटिना टेरेश्कोवा वो पहली महिला बनी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया।
1: वाओ, इसी के ठीक 44 साल बाद 2007 में आज ही के दिन एक और महिला सुनीता विलियम्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा दिन एक स्पेस फ्लाइट में गुजारने का, विच लास्टेड फॉर 192 डेज।
0: आज के ही दिन जन्म हुआ था हमारे प्यारे गन मास्टर G9 का, मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती का। 1950 कोलकाता में जन्मे गौरांग चक्रवर्ती, उस बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो अपनी पहली ही फिल्म मृग्या से नेशनल अवार्ड तक का सफर तय कर लेंगे।
1: मिथुन दा ने अपने करियर में 350 से भी अधिक फिल्में की हैं। केवल भारत ही नहीं, चीन और रूस के लोगों के दिलों पे भी राज करते हैं मिथुन दा। बाकी अभिनेताओं से अलग इसलिए भी थे कि लोग उनकी फिल्मों की कहानियों में अपनी कहानी देखते थे।
0: संचिता, एक कहानी याद आ रही है। मेरे पिताजी बताया करते थे कि एक दौर था जब लोगों ने थिएटर्स जाना छोड़ दिया था, सिंगल स्क्रीन्स बंद हो गए थे, तो उन दिनों लोग गांव में चंदा इकट्ठा करके VCR रेंट पे लाते, मतलब एक रात के लिए VCR आपका, और उस पे जो ज़्यादातर फिल्में देखी जाती वो मिथुन दा की होती। मैंने तो न जाने चीता, चंडाल, कालिया, शपथ, न जाने क्या क्या देख रखा है। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू फॉर द मेमोरीज और हम सब में हिम्मत भरने के लिए धन्यवाद। अब मिथुन दा का बर्थडे हो और हम गाना ना बजाएं, यार ऐसा हो सकता है क्या? तो अगला गाना जो हम पेश कर रहे हैं वो है फिल्म फूल और अंगार से एक सदाबहार गीत जो जेंट्स सैलून में हमेशा बजता है, ये ना बजे तो लोग बाल ना कटवाएं।
1: तो फिल्म फूल और अंगार से सुनाने जा रहे हैं, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे।

0: अच्छा उत्तम, बहुत ही बेहतरीन गाना सुना आपके चॉइस के मुताबिक।
1: तो अब वक्त हो चला है आज से जुड़ी खास खबरों का।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन स्मृति मंधाना को टाइम मैगजीन की 2026 की 100 सबसे इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी के लिस्ट में जगह मिली है। वे इस लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं। बीते कल नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पहली फ्लाइट में जेवर के उन ग्रामीणों ने सफर किया जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। यह ऐतिहासिक उड़ान किसानों के योगदान के प्रति थी।
1: दिल्ली के कई इलाकों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश, गरज चमक और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। दिन में बारिश की संभावना है। सप्ताह के अंत में 42 से 44 डिग्री तक पहुंचा जा सकता है। मैं तो कहता हूं यार, करवा ही दो, इतना गर्मी से बुरा हाल हो गया है।

0: बारिश की बूंदें तो दिखी ही थी इतने दिनों से। उत्तम, क्या ख्याल है आपका, छाता लेकर निकलते हो या भीगना पसंद है बारिश
1: मुझे
0: में?
1: तो भीगना पसंद है, बहुत समय हो गया भीगा नहीं हूं मैं।
0: और वो जो भुट्टा खाते हैं हम, उसका क्या आपको लुत्फ़ उठाना अच्छा लगता है?
1: यार मैं जहां से आता हूं ना, वहां पे उबाल के नींबू रगड़ के जो दिया जाता है ना, मतलब उसका कोई
0: ओहो,
1: तोड़ नहीं है।
0: तो इसी के साथ अगर मैं ये पूछूं कि गर्मियों के फ्रूट्स की बात करें तो मैंगोज़ या वाटरमेलन्स?
1: मैंगोस हमेशा।
0: मैं वाटरमेलन कहूंगी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग पे चलेंगे, हैरी स्टाइल्स का वाटरमेलन शुगर।

0: तो अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का।
1: कल इसी समय लौटेंगे ढेर सारे किस्से कहानियां लेकर, खुशी और भव्या। तब तक के लिए सुनते रहें आकाशवाणी।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियन शहर पहुंच गए हैं। इवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय

0: सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सीरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सीरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेन देन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Avignon on a two-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Avignon, the Prime Minister, in a social media post, said that he is looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet. Our correspondent covering the Prime Minister's G7 visit has filed this report.
3: This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India, as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. India's regular participation in the summit underscores its growing role in addressing key global

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को नमस्कार। तो यमुना बहन, देखिए लोक रंजनी कार्यक्रम हम लेकर हाजिर हो गए हैं जो है लोक संगीत पर आधारित।
1: बिल्कुल। और देखिए नीलम जी, कहते हैं ना कि जब हम जगत में आए हैं तो कुछ काम हमें ऐसा करना चाहिए जो हमारे लिए एक तरीके से ज़रूरी होता है, और ख़ास करके ये बातें होती है जो काम हम करने आए हैं, अगर उससे हम हट के कोई काम करते हैं तो उसका अंजाम भी ख़राब ही होता है।
0: जी बिल्कुल। और इसी तरह से सुनवाते हैं होशियारी देवी से, ये आपको लोकगीत देखिए क्या कहती हैं इस गीत के माध्यम से।

0: तो आप सुन रहे थे बहन भाइयों होशियारी देवी से ये गीत। और देखिए यमुना जी, हमारे जो गांव हैं उनकी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, आज भी देखने वाले हैं बहुत। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर देखा जाए तो।
1: आप जो कहना
0: और
1: चाह रही
0: देखिए
1: बताइए बताइए।
0: हाँ देखिए, आज भी हमारी बहनें हैं घड़े पे घड़ा रखे हैं, लेके जाती हैं। अब तो खैर इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बहनें आज भी गांव की हैं, जो पानी भरने जाती हैं फिर भी वो अपनी सहेलियों से इकट्ठा होके बातें जरूर कर लेती हैं।
1: जब वो बातें करती है ना नीलम जी, तो बातें जब करती हैं तो उस पर भी बात बनती है, उनकी चाल पे भी, उनकी ढाल पे जा रही, तो उस पर भी कुछ गीत बने हैं। तो खास करके रवि जी और उनके जो साथी हैं, इस लोकगीत के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए सुनते हैं।

0: तो श्रोताओं सुन रहे थे आप रवि और साथियों से ये लोकगीत। और यमुना जी अब अपने बहन भाइयों को एक सूचना दे देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आज शाम को 6:30 बजे गन्ने की पाठशाला कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, 6:30 बजे से 7 बजे तक और 7:05 मिनट से 7:30 मिनट तक। और विषय होगा गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन। तो जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं, गन्ना की फसल लगाते हैं या करने वाले हैं, कोई भी समस्या है, जानकारी चाहते हैं, आप विशेषज्ञों से सीधा फ़ोन पर बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। और फ़ोन करने के लिए नंबर है 0111-2342-1082 और दूसरा नंबर है 2342-1083।
1: और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए नीलम जी, ऐसा है ना कि छुट्टी तो सबको लेनी पड़ती है, और ख़ास करके जब बात आती है फौजी की तो उन्हें छुट्टी बहुत कम मिलती है। तो ऐसे में कैसे उनकी पत्नी, कैसे उनकी भैया उनसे कह रही है कि आप थोड़ा सा छुट्टी ले लो, हमें भी हिंदुस्तान घुमा दो ना। तो राजबाला इसी बात को कैसे अपनी शब्दों को लोकगीत के जरिए पिरो कर कह रही हैं, चलिए सुनते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे राजबाला से ये लोकगीत, और अब सुनवाते हैं आपको रूबिया भारती से। देखिए क्या कहती हैं इस लोकगीत के माध्यम से।

0: इसी के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं तुषार पारा सर और कार्यक्रम संयोजक हैं शिव नंदन लाल।
1: सभी बहन भाइयों को नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरे युवा साथी दर्पण टिकिया।
2: नमस्कार, खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराने के लिए आपको हम तैयार हैं, क्योंकि खेल बड़ी खूबसूरत चीज है। खेल की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि उसे आपकी शुरुआत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए कितनी दूर तक तैयार हैं। यही वजह है कि कभी किसी छोटे शहर का खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़ा दिखाई देता है और कभी कोई अनदेखी टीम दुनिया को चौंका देती है। खेल हमें ये याद दिलाता है कि बड़ा नाम हमेशा बड़ा नहीं होता, उन्होंने भी कभी शुरुआत की थी और आज वो वहां खड़े हैं जहां पर कोई नहीं खड़ा है।
1: और जिंदगी में भी ऐसा ही है, हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने सपनों का आकार तय कर लेते हैं, लेकिन मंजिल अक्सर ये नहीं पूछती।

0: देखती कि आप कहां से आए थे, वो सिर्फ ये देखती है कि आप चलते रहे या नहीं। क्योंकि खेल हो या जिंदगी, दुनिया जीतने का सपना हमेशा किसी छोटे से कदम से ही शुरू होता है।
1: और ऐसी ही कुछ कहानियां आज हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करके कैसे दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहे हैं दुनिया भर के खिलाड़ी। किन खबरों के बारे में आज बात करने वाले हैं, आइए आपको बताते हैं, शुरू करते हैं कार्यक्रम को।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का केंद्र रहेंगे फुटबॉल, साथ के साथ क्रिकेट और हॉकी पर भी कुछ चर्चा करेंगे।
1: और वही साथ में बात करेंगे वर्ल्ड बॉक्सिंग की, चेस की और शूटिंग की भी।
0: लेके जाएंगे सबसे पहले आपको फीफा की दुनिया में, जहां पर विश्व कप की शुरुआत हो ही चुकी है और कैसे छोटी छोटी टीमें उलट फेर करने को तत्पर हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे।
1: और जैसे आपने बताया कि फीफा में जिस तरह से शुरुआत हुई है, तो एक टीम जो भले ही छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी, और उस टीम का नाम है केप वर्दे। जिस तरह से मुकाबले में स्पेन के साथ खेलते हुए, स्पेन एक वो टीम है जिसको माना जाता है कि वो कभी भी उलटफेर कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया केप वर्दे ने, जिन्होंने 0-0 ड्रॉ खेला स्पेन के साथ।
0: जी हाँ, बड़ी खूबसूरत बात ये रही कि केप वर्दे एक महज छोटा सा देश है, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर एक आइलैंड नेशन है, या एक आर्किपेलागो नेशन है, यानी कि एक आइलैंड्स का समूह है जिस पर केवल 5,25,000 लोग रहते हैं, यानी इतनी कम आबादी वाले इस देश ने सबसे पहले तो फीफा के विश्व कप में क्वालिफिकेशन हासिल किया, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। दूसरी तरफ स्पेन, जो कि 2010 की चैंपियन ही नहीं रही, इस साल यूरो भी जीती और उसके अलावा इस बार के विश्व कप में भी फेवरेट्स मानी जा रही थी, उनको 0-0 पर रोकना एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। और इस उलटफेर के बाद दुनिया भर में केप वर्दे के चर्चे हैं, और साथ के साथ जब ये रिजल्ट आया और इस मुकाबले में शिरकत करने वाले स्टीवन मोरेरा, जो कि केप वर्दे के डिफेंडर है, उनसे पूछा गया कि कितनी बड़ी बात है ये आपके लिए, आपके देश के लिए, तो उन्होंने कुछ इस तरह अपनी खुशी जाहिर की।
2: I'm just proud of my country, of my teammates, of my family. Honestly, man, when we wake up this morning, the vibes was good, no pressure, just play free. We did a really good game with our heart. We fight until the end, and our goalkeeper was doing a crazy game too. So I'm very proud. Yeah.
1: Okay, वर्दे की टीम के सबसे बड़े, सबसे अच्छे खिलाड़ी साबित हुए इस मुकाबले में वो थे गोलकीपर, उनका नाम वुंजिया है, लेकिन उनका असली नाम वुंजिया के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध हैं और यूरोप में भी बहुत सारी लीग्स में वो खेलते हैं, और वुंजिया का असली नाम है जोसिमर होसे इवोरा डियास। ये 40 वर्षीय गोलकीपर हैं और इन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में फीफा वर्ल्ड कप में दिखा दिया कि यदि आपके अंदर क्षमता है, आप में टैलेंट है, तो आप कभी भी किसी भी मंच पर अपने आप को साबित कर सकते हैं।
2: Our goalkeeper was doing a crazy game too, so I'm very proud. Yeah. He's a big legend. Honestly, his long time is a national team. I'm very proud for him, what he did, everything, every day. We're making a lot of joke about him, even us. But like now he's just in a world stage and do a crazy game like this. Very proud. He's 40 years old, so you can't tell. Doesn't matter the age. He's a baller.
1: बहुत ही शानदार मुकाबला था, और जिस तरह से स्पेन और केप वर्दे के बीच मुकाबला हुआ, तो ये तो साबित हो गया दर्पण कि सभी टीमें बहुत मेहनत करके आई हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि सभी टीमों का एक ही लक्ष्य है, वर्ल्ड कप जीतना।
3: Yes, he's round the last defender, under his right foot.

0: इसके अलावा एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम और इजिप्ट की टीमें आमने सामने थी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा और इस मुकाबले में गोल अवश्य हुआ। हालांकि जिस तरह से हमने आपको स्पेन और केवर्दे के मुकाबले में के बारे में बताया था तो उसमें गोल रहित वो मुकाबला था, लेकिन ये मुकाबला गोल हुआ इस मुकाबले में। और इस मुकाबले में पहले गोल किया इजिप्ट की तरफ से इमाम अशूर ने, 20वें मिनट में उन्होंने गोल किया, और वहीं इस गोल को बराबर किया बेल्जियम के लिए मोहम्मद हेनरी ने, उन्होंने 66वें मिनट में गोल को बराबर किया।
1: इसके अलावा अगला मुकाबला जो हमें देखने को मिला वो देखने को मिला ईरान और न्यूजीलैंड के बीच। ईरान और न्यूजीलैंड के बीच हुए इस मुकाबले का भी वही रिजल्ट रहा, मुकाबला रहा ड्रॉ। लेकिन कमाल की बात ये रही कि इस मुकाबले में दो और दो गोल दोनों टीमों की तरफ से दागे गए। न्यूजीलैंड के ई जस्ट ने 7वें मिनट में पहला गोल दागा और उसके बाद 55वें मिनट में एक और गोल दागने में वो कामयाब रहे। इसके अलावा ईरानी टीम की अगर बात की जाए तो रेजानेन ने 32वें मिनट में और मोहेबी ने 64वें मिनट में गोल दागा। न्यूजीलैंड की टीम वैसे तो अगर आप फीफा रैंकिंग को देखें तो शायद इस विश्व कप में खेलने वाली सभी टीमों में सबसे निचली रैंकिंग वाली टीम है। 85वें स्थान पर फीफा मेंस रैंकिंग में न्यूजीलैंड का स्थान है, लेकिन जिस तरह से कल का मुकाबला उन्होंने खेला उससे उनके कोच डैरन बेजली खासे खुश हैं।
2: I'm super proud. I thought it was a really strong performance. I thought the whole day was good. You know, it's a really good atmosphere, good stadium, good pitch. I thought the game was really good. You know, two good teams playing good football. I thought we created lots of chances to score, had some really good possession. And I think we've maybe taken a few people by surprise in showing who we are and the football that we can play. We've got some very good players in our squad that have gone and performed very well today. So we're disappointed to not win. You know, when you're leading twice in a game, you know, you come away with that what if, and you know, we're probably as close as we'll ever be to winning a game at a World Cup, and you know, we couldn't quite do that today. But yeah, we're in the World Cup. We didn't lose, stayed in the game, scored goals and created chances. So for us it was a really strong performance that I'm really proud of.
0: और इसके अलावा एक अन्य मुकाबले में सऊदी अरेबिया और उरुग्वे की टीमें आमने सामने थी, ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा। और दर्पण कल तो बड़ा एक, अगर कहें तो ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि सभी मुकाबले कल ड्रॉ हुए। और जिस तरह से ये मुकाबला सऊदी अरेबिया और उरुग्वे के बीच खेला गया, इसमें उरुग्वे की तरफ से मैक्सिमो अरेजो ने गोल किया और वहीं अब्दुल्ला अल अमीरी ने सऊदी अरब के लिए गोल किया।
1: जी, यह है कि सऊदी अरेबिया की ये वो टीम है जिसने पिछले वर्ष ग्रुप स्टेज में पिछले संस्करण में अर्जेंटीना को हराया था और इस बार यूरुग्वे को हराया है, जो कि दो बार की चैंपियन रही है, दो बार की ओलंपिक चैंपियन भी रही है। लेकिन कुछ कमाल के मुकाबले आज भी खेले जाने वाले हैं। आज का मतलब मेक्सिको में आज के हिसाब से, लेकिन भारतीय समय के अनुसार 12 बजे के बाद वो मुकाबले शुरू होंगे। लेकिन कौन से हैं वो मुकाबले जिन पर नजर होगी, आइए उन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला मुकाबला होने वाला है फ्रांस बनाम सेनेगल। फ्रांस की वो टीम जो पिछले साल शिखर के पास पहुंचकर लड़खड़ा गई थी, आपको याद होगा फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ इनका मुकाबला हुआ था जो कि शूटआउट में गया था और अंततः रनर्स अप के खिताब के साथ संतोष करना पड़ा था फ्रांस की टीम को। आज सेनेगल के खिलाफ ये उतरेंगे पहले मुकाबले में।
0: वही दूसरे मुकाबले में इराक और नॉर्वे की टीमें आमने सामने होंगी और माना तो यही जा रहा है कि यूरोपीय टीम नॉर्वे बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इराक भी दमखम के साथ खेलेगी और ग्रुप आई का ये मुकाबला निश्चित तौर पर एक बेहतरीन मुकाबला साबित हो सकता है।
1: लेकिन उसके बाद जो मुकाबला सुबह 6:30 बजे शुरू होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ उन दो देशों की नजरें नहीं होंगी जो कि उस मुकाबले में शिरकत करेंगे, बल्कि विश्व भर की नजरें होंगी, क्योंकि ये मुकाबला होने वाला है अल्जीरिया बनाम अर्जेंटीना। पिछले साल लियोनेल मेसी आए थे भारत के दौरे पर, जिसके बाद हमने ये भी देखा कि भारत में उनकी लोकप्रियता किस हिसाब से है। तो भारतीय प्रशंसकों की भी नजर रहने वाली है इस मुकाबले पर। सुबह 6:30 बजे इस मुकाबले का आगाज हो जाएगा।
0: इसके अलावा ग्रुप जे के मुकाबले में ऑस्ट्रिया और जॉर्डन की टीमें आमने सामने होंगी और ये भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। और ऑस्ट्रिया की टीम हालांकि यूरोपियन टीम है और जॉर्डन की टीम एशिया की टीम है, लेकिन जिस तरह से दोनों टीमें खेलती हैं, क्योंकि यूरोपियन खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी आक्रामक फुटबॉल खेलते हैं और बॉडी टू बॉडी जो एक गेम कहा जाता है उसको खेलने में वो काफ़ी माहिर हैं, लेकिन जॉर्डन के भी खिलाड़ी किसी से कम नहीं हैं।
1: ये है कि जॉर्डन

0: का ये पहला विश्व कप है तो उन पर भी सबकी नजरें होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर नजरें बनी रहेंगी फीफा विश्व कप पर, और खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे।
1: और एक मुकाबला जो काफी यहाँ भारतीय दर्शक भी इसको देखना चाहेंगे, और वो है पुर्तगाल वर्सेस DR कांगो के बीच। पुर्तगाल के खिलाड़ी के लिए क्यों हम देखेंगे, क्योंकि उसमें खेलेंगे
0: क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
1: यस,
0: तो ये मुकाबला कल 10:30 शाम को खेला जाएगा, हमारी नजरें बनी रहेंगी।
2: Yes, he's round the last defender, onto his right foot. It's a goal!
0: दिया। और इसके अलावा एक और विश्व कप इस वक्त चल रहा है UK में, यानी कि इंग्लैंड में ये खेला जा रहा है, और हम बात कर रहे हैं अब क्रिकेट की। जी हाँ, महिलाओं का T20 विश्व कप इस वक्त खेला जा रहा है, जिसमें भारत की टीम भी शिरकत कर रही है। आपको याद ही है कि पिछले वर्ष किस तरह हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में 2025 का ODI विश्व कप भारत ने अपने नाम किया था, और अब T20 विश्व कप लाने की होड़ में लगी हुई है वो टीम। जी हाँ, शुरुआत अच्छी हुई, चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भारत ने हराया अपने पहले मुकाबले में, और लेकिन अगला मुकाबला भारत का थोड़ा सा आसान माना जा रहा है, नीदरलैंड्स के खिलाफ वो मुकाबला है, लेकिन वो मुकाबला खेला जाएगा कल। आज ग्रुप बी के दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं। सबसे पहला मुकाबला होने वाला है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच, तो दूसरे मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड होने वाली है आयरलैंड के खिलाफ।
1: और वहीं जिस तरह से न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और जिस तरह से कई बड़े खिलाड़ी न्यूजीलैंड की टीम में खेल रहे हैं, तो माना यही जा रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी स्ट्रांग हम कह सकते हैं, लेकिन श्रीलंका भी कम नहीं है। और वहीं श्रीलंका के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं चमारी अट्टापट्टू, उनके ऊपर पूरी निगाहें रहेंगी, कप्तान भी हैं टीम की। और वहीं जिस तरह से न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, तो वहाँ अमेलिया कर हैं जो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और बैटिंग भी अच्छी करती हैं, वो कप्तान है न्यूजीलैंड की। तो कुल मिलाकर एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
0: लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। याद दिला दें, न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन उनकी शुरुआत उतनी खास हुई नहीं है। पहला मुकाबला जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड ने खेला, वो रोमांचक मुकाबला था, आखिरी ओवर तक गया, जिसमें न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा। तो वहां इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में श्रीलंका को भी एक तरफा हार मिली है, तो दोनों ही टीमें हार कर आ रही हैं इस मुकाबले में। और आपको यह बता दें कि T20 विश्व कप के इतिहास में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, 7 मुकाबले इन दोनों टीमों ने खेले हैं और 7 के 7 न्यूजीलैंड ने जीते हैं। लेकिन आज एक क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत होगी, और इस बात को मानती है न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी मैडी ग्रीन, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो पहला मुकाबला हारे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आज हमारी टीम अपनी परफॉर्मेंस अपनी पोटेंशियल के अनुरूप नहीं दे पाई थी, लेकिन हम पुरजोर वापसी करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं।
3: You know, we put a competitive total on the board, and unfortunately our fielding let us down. It was just a really bad day at the office for the group, but you know, we've got no choice but to move on really quickly and obviously address a couple of things leading into the next game. But look, just one of those days that just, yeah, didn't happen to go our way, and you know, we're really disappointed as a group. We set really high standards for ourselves in the field, and yeah, it was really disappointing. But you know, I think I look back to the last T20 World Cup, and you know, we're probably one of the best fielding sides in that tournament, so we know it's there. It's just, as I said, a really bad day at the office, and we've got to move on quickly.
1: और वही दूसरा मुकाबला होगा इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच, जहां पर सबसे अच्छी बात यह है दर्पण कि इंग्लैंड के जो डोमेस्टिक सर्किट है उसी में आयरलैंड के खिलाड़ी भी खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को भली भांति जानते हैं कि किस खिलाड़ी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम बहुत अधिक शानदार टीम कह सकते हैं, क्योंकि कप्तान नेट शेवर ब्रंट बहुत अच्छी फॉर्म में है, वहीं एमी जोन्स जो विकेट कीपर हैं वो बहुत अच्छी विकेट कीपर मानी जाती हैं इस समय वर्ल्ड में, उनके बराबर का विकेट कीपर शायद ही कोई हो। और वहीं दूसरी ओर हीदर नाइट्स हैं, एलिसा कैप्सी हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम में हैं, लेकिन पूरा जोर लगाएगी आयरलैंड की टीम। आयरलैंड के कप्तान गैबी लुइस हैं, एमी हंटर विकेट कीपर हैं, एलिना डेल्जी उनकी अच्छी बल्लेबाज है, तो काफी सारे खिलाड़ी उनके पास ऐसे हैं जो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं।
0: एक और खिलाड़ी जिसका नाम शायद हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे, वो खिलाड़ी है लॉरेन।

0: क्योंकि पिछले संस्करण WPL का जो रहा था उसमें उन्होंने यहां पर भारत में अच्छा प्रदर्शन कर नाम बटोरा था और इंग्लैंड को जो पहली जीत मिली उससे वो खासी खुश थी, लेकिन वो भी जानती हैं कि उस जीत के जश्न में ज्यादा शुमार होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी पूरा विश्व कप बाकी है।
1: Yeah, definitely. I think we couldn't have been happier with how Friday night went, especially with it being the opening game. And yeah, it sets us in a good place. But yeah, you've got to go again, start from zero, and yeah, bring the same energy as we had on Friday.
0: जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जैसा अभी आपको हमने बताया कि आयरलैंड की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट इंग्लैंड में खेलते हैं, इसीलिए आपस में एक दूसरे को जानते हैं। इसका कितना एडवांटेज मिलेगा जब आयरलैंड की ऑलराउंडर एरिन केली से ये पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया।
2: We've done our analysis on the English side, but again we'll be focusing on our strengths, what we can do to really capitalize on opportunities that are presented to us throughout the game. And yeah, it definitely does help knowing who's who for sure, but I mean, it's a clean slate going in tomorrow.
0: तो मदद जरूर मिलती है ये जानने से, उस अनुभव से खेलने में साथ में, लेकिन आज क्लीन स्लेट है ये कह रही थी एरिन केली। खैर, T20 विश्व कप पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी, अन्य खेल खबरों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। ले चलते हैं आपको बॉक्सिंग की दुनिया में। और
3: बॉक्सिंग के रिंग में जिस तरह से चीन के गुआंगजंग में आयोजित विश्व बॉक्स मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में दीपक जो 17 किलोग्राम भार वर्ग में है और पूनम जो महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में है पहले दिन एकमात्र भारतीय विजेता के रूप में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे। दोनों ने ही अपने प्रतिद्वंदियों को सर्वसम्मति से 5-0 से जीत हासिल की। दोनों ने अपने प्रतिद्वंदियों को 5-0 से हराया, तो इसका मतलब तो साफ है कि दोनों ने बहुत अच्छी बॉक्सिंग की है, क्योंकि यदि ये पांचों के पांचों रेफरीज आपके बारे में डिसीजन देते हैं, आपकी साइड में डिसीजन देते हैं, तो इससे ये साबित होता है कि आपने बहुत अच्छे से बॉक्सिंग की और अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर पूरी तरह से एक अधिकार सा बना दिया ताकि वो किसी भी तरह से आपसे बच नहीं पाएगा। और वही 20 सदस्यीय भारतीय दल के शेष सदस्य प्रारंभिक और क्वार्टर फाइनल दौर में ही बाहर हो गए हैं। अन्य भारतीय मुक्केबाजों के परिणाम इस प्रकार रहे हैं। ऋषि सिंह पुरुष वर्ग में 50 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान के सुभान मेवेदोव से राउंड ऑफ 16 में हार गए। वहीं सनमाजा चानू थोकचोम जो महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग की खिलाड़ी हैं उन्हें कनाडा की तमामरा थिब्रॉल्ट से हार का सामना करना पड़ा। सावन गिल 90 किलोग्राम में खेल रहे थे और उन्हें नॉर्वे के उमर शिहा द्वारा हार के बाद बाहर होना पड़ा। अनमोल जो 60 किलोग्राम में महिलाओं में अपना दमखम दिखा रही थी उन्होंने अमेरिका के सलीम एलिस बे के खिलाफ 2-3 से करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2-3 का अगर स्कोर है तो ये बताता है कि 3 जज ऐसे हैं जिन्होंने आपके खिलाफ दिया है और 2 जज ऐसे जिन्होंने आपके फेवर में दिया है, यानी कि आपने बहुत क्लोज फाइट लड़ी है। वहीं हर्ष चौधरी 90 किलोग्राम भार वर्ग में तीसरे दौर में स्वीडन के एल्विन बेलजोंका से RFC रेफरी द्वारा चोट के कारण मुकाबला रोकने को RFC कहा जाता है और उसके माध्यम से वो पराजित हो गए हैं। और वहीं नैना 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन के श्योंग उमिंग वांग से हार गई हैं। वहीं आल्फिया तरन्नुम अकरम खान पठान 90 किलोग्राम भार वर्ग की शक्तिशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की एल बिजेटा वुंजिका से हार कर वो भी बाहर हो गई हैं।
0: तो कुछ खट्टी कुछ मीठी खबरें बॉक्सिंग की दुनिया से, लेकिन कुछ अच्छी खबर आ रही है हॉकी की दुनिया से। क्या कुछ चल रहा है FIH नेशंस कप में उसके बारे में बताते हैं।
4: भारत की टीम है बाईं तरफ जहां पे पहुंच गया बात अब्बास, भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपनी टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और यह खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है।
0: जी हाँ, भारत चैंपियन था एक समय पर, हॉकी में के दुनिया में राज करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो खोई हुई साख थी वो भी वापस लौटनी शुरू हो गई है। आप जानते ही हैं कि पुरुष हॉकी में एक तरफ जहाँ पर लगातार 2 ओलंपिक मेडल भारत ने जीते हैं, तो वहीं महिला हॉकी में भी कहीं ना कहीं प्रयास जारी है आगे बढ़ने का। हालांकि FIH प्रो लीग में इस बार प्रदर्शन उतना खास रहा नहीं था, जिसके चलते अब नेशंस कप में परफॉर्मेंस देकर एक बार फिर FIH प्रो लीग का क्वालिफिकेशन हासिल करना पड़ेगा भारतीय टीम।

0: को, लेकिन उस संदर्भ में शुरुआत अच्छी हुई है। आपको बता दें कि पूल ए का हिस्सा है भारत FIH नेशंस कप में, जो कि खेला जा रहा है न्यूजीलैंड में, और भारत ने अपने पहले दोनों मुकाबले जीत लिए हैं। पहले मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया था, तो दूसरे मुकाबले में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल का स्पॉट निश्चित कर लिया है भारतीय महिला टीम ने अपने लिए। हालांकि एक मुकाबला अभी ग्रुप स्टेज में होना बाकी है, वो मुकाबला भारतीय टीम का होने वाला है यूरुग्वे के खिलाफ, और उरुग्वे के खिलाफ भारतीय टीम भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:15 पर खेलेगी ये मुकाबला 18 जून 2026 को नॉर्थ हार्बर हॉकी स्टेडियम, जो कि ऑकलैंड में स्थित है, वहां पर यह मुकाबला खेला जाएगा। और इसके बाद चुनौती होगी सेमीफाइनल्स की, और सेमीफाइनल के मुकाबले 20 जून से शुरू हो जाएंगे। तो इस टूर्नामेंट पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आपको याद दिला दें कि इसी वर्ष होने वाला है हॉकी का विश्व कप भी नेदरलैंड्स और बेल्जियम में, तो उसके लिए, उसके लिहाज से भी भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए आज का ये जो टूर्नामेंट है उसमें अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉकी की दुनिया की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ अन्य खेल खबरों पर भी डाल लेते हैं नजर।
1: वहीं दूसरी ओर भारत का 84 सदस्यीय दल जर्मनी के सोहेल में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भाग ले रहा है, जो 18 से 26 जून तक आयोजित हो रही है। यह दल राइफल, पिस्टल और शॉटगन सहित सभी प्रमुख जूनियर शूटिंग श्रेणियों में भाग ले रहा है। सोहेल शूटिंग रेंज में पदक जीतने में भारतीय जूनियर निशानेबाजों का ऐतिहासिक रूप से दबदबा रहा है, क्योंकि वे हाल में के कई संस्करणों में समग्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं। चैंपियनशिप का कार्यक्रम इस प्रकार है, 16 और 17 जून अधिकारियों का आगमन है, सब लोगों को मिलना जुलना है, और सबसे बड़ी बात शूटिंग में जो होती है वो आपके उपकरण का प्रशिक्षण, यानी कि उपकरण की एक तरह से जांच की जाती है कि आपके जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो सब सही हैं या नहीं है। और उसके बाद 18 से 25 जून तक क्वालिफाइंग राउंड और मेडल फाइनल खेला जाएगा, और 26 जून को खिलाड़ियों को इसका प्रस्थान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा कार्यक्रम है वो इस विश्व कप का है। और सबसे बड़ी बात, जब पहले दिन आपके इक्विपमेंट्स की परीक्षा होती है, उस समय ये देखा जाता है कि आपके जो भी इक्विपमेंट हैं वो सही हैं या नहीं है, एट पार हैं, सभी जो भी नॉर्म्स हैं उसको पूरे करते हैं या नहीं, क्योंकि ये शूटिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको अवलोकन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो वो आज 16 जून को वो होगा, और उसके बाद 17 जून और 16 जून को ये चीज़ें होंगी, और 18 से 25 जून तक क्वालिफाइंग राउंड और मेडल फाइनल खेले जाएंगे।
0: और उसके अलावा कुछ और अन्य खेलों के बारे में हम बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले आपको बता दें कि एशियन गेम्स के लिए कुछ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है, तो कुछ खेलों के स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एशियन गेम्स की, जहां पर स्क्वॉश के टीम का चयन हो चुका है। पुरुषों में अभय सिंह, वीर चोटानी और सेंथिल कुमार और सूरज चंद, जो कि एक नए नाम की तरह उभर कर सामने आए हैं, वो हिस्सा होने वाले हैं एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के। साथ के साथ महिलाओं में अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज होने वाली हैं। जोशना चिनप्पा के बारे में आपको बता दें कि ये उनका 7वां एशियन गेम्स होने वाला है, और किसी भी खेल में कोई भी भारतीय खिलाड़ी इतनी बार भारत का प्रतिनिधित्व एशियन गेम्स में नहीं कर पाया है, तो 7वां उनका संस्करण, 7वां उनका पार्टिसिपेशन होने वाला है इस बार एशियन गेम्स में। इसके अलावा आपको बता दें कि सौरभ घोषाल, जो कि स्क्वॉश के ही खिलाड़ी थे, उन्होंने 6 प्रतिनिधित्व किया है एशियन गेम्स में। लियांडर पेस, जो कि टेनिस लेजेंड रहे हैं, उन्होंने 5 शिरकत की है एशियन गेम्स में। और टेबल टेनिस के सरताज माने जाने वाले अचंता शरत कमल ने भी 5 एशियन गेम्स में शिरकत की है। खैर, लियांडर पेस की बात की तो उससे ख्याल आया टेनिस का, टेनिस के लिए भी हमारी टीम का चयन हो चुका है। और पुरुषों में सुमित नागल, मानस धामने और डी सुरेश के साथ साथ यूकी भांबरी, श्रीराम बालाजी, अनिरुद्ध चंद्रशेखर होने वाले हैं टीम का हिस्सा। रिजर्व्स में ऋत्विक बोलीपली और निकी कालियांदा पुनच्छा के साथ करण सिंह है। तो वहीं महिलाओं में सहजा यमालापली, वैष्णवी आदकार, वदेही चौधरी, ऋतुजा भोसले, अंकिता रैना।

0: बार हिस्सा बनने जा रहा है ओलंपिक्स का। तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अवसर है भारत के स्क्वॉश खिलाड़ियों के पास भी, और दूसरी तरफ टेनिस खिलाड़ियों को भी हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। रैकेट स्पोर्ट्स में हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय खिलाड़ी भारत का परचम लहराएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह से आपने बात की स्क्वैश की, तो स्क्वैश में भारतीय खिलाड़ी बहुत दमदार हैं, लेकिन भारत को बहुत कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा एशियन गेम्स में, क्योंकि एशियन गेम्स में बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो स्क्वैश में बहुत ही शानदार खेल वो खेलती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो आपने बात की जोशना चिनप्पा की, 7 बार एशियन गेम्स खेलना, तो कहीं ना कहीं दर्पण ये बताता है कि आपका मेंटल टफनेस कितना स्ट्रांग है, और वहीं दूसरी ओर आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हैं, आप कितने अपने आप को फिट रखते हैं, कितने अपने आप को मैच फिट रखते हैं, तभी आप इस लेवल तक, इतने बड़े ऊंचे लेवल पर इतनी बार आप खेल पाए हैं, और ये दर्शाता है। और वैसे भी एक और बात यहाँ पर सामने आती है, वो ये कि एक महिला के लिए 7 बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि एक बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के बाद 4 साल के बाद एशियन गेम्स होता है, तो कम से कम 24 साल आपको लगेंगे एक साथ अगर आप एशियन गेम्स को पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और वहीं जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो ये दर्शाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत सारे खेलों की खबरें हैं।
0: की खबरें हैं, एक तरफ इंडिया ए की टीम ट्राई सीरीज खेल रही है श्रीलंका में, कल एक रोमांचक मुकाबला हुआ जो कि सुपर ओवर तक गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम थोड़ी सी परेशानी में थी, 143 पर 7 विकेट गंवा दी थी, जिसके बाद सुयांश शेगड़े और विपराज निगम के अर्धशतकों के द्वारा 260-266 तक भारत का आंकड़ा पहुंचा, और उसके बाद श्रीलंका ने चेज करते हुए लगभग लगभग मुकाबला अपने नाम कर लिया था, लेकिन उसके बाद अंतिम ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने उस मुकाबले को सुपर ओवर में ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि सुपर ओवर में इंडिया ए को हार का सामना करना पड़ा। एक और खबर कमाल की है, वो है चेस की दुनिया से, जहां पर एक नए फॉर्मेट का टूर्नामेंट शुरू किया जा रहा है। यह है फिडे वर्ल्ड टीम रैपिड एंड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप 2026, जिसके बारे में फिडे के प्रेसिडेंट अर्काडी डोकोविच का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
2: Another great opportunity to showcase chess as a game for everyone. And I'm really thankful for coming up with the initiative of organizing the amateur the same place, the same time, as it will bring more chess lovers to the competition, more people who like playing chess and watching chess to the same venue here in Hong Kong. And I hope that it will become another good tradition for all of us.
0: अलग अलग टीमों में खिलाड़ियों का इसमें बंटवारा होगा, और कमाल की प्रतियोगिता होने वाली है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त स्टूडियो की घड़ी बता रही है आपसे विदा लेने का समय आ गया। मेरा नाम दर्पण,
1: मैं अजय तोमर,
0: और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ हमें इजाजत दीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने

0: वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जाँच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIEF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Evian on a two-day visit to participate in the G7 summit, which got underway yesterday. After arrival in Evian, the Prime Minister, in a social media post, said that he's looking forward to engaging with world leaders and exchanging views on key global issues. He added that India remains committed to advancing collective efforts for a more sustainable and prosperous planet. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Ankit, what significance does this G7 summit hold for India?
2: Yes, Saira, it's really, really significant. The Prime Minister will attend a key G7 working session in some time. The focus of this session is on the forging new partnerships and rebuilding international solidarity. The Prime Minister will be sitting down with G7 leaders, partner nations and top officials from the World Bank and the African Development Bank. See, India's regular presence at this summit is highly significant. India has truly emerged as a major global power. Today, the entire world is looking toward New Delhi for real solution to complex crisis. Sarai, if you see, India is now actively setting the global agenda to resolve these problems. This massive shift is a direct result of Prime Minister's strong diplomacy and his excellent personal rapport with world leaders.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: बहन भाइयों, आज मंगलवार का दिन है और हम ग्राम संसार कार्यक्रम में लेकर हाजिर हैं विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: तो यमुना बहन, देखिए सुबह की जो शुरुआत होती है वो मिठास से शुरू होती है। बिल्कुल। चाहे हम शुरुआत करें चाय से या फिर गुड़ से शुरू करें।
3: चाय और गुड़ की बात तो हम कर रहे हैं, और सच कहें तो मिठास जो है ना वो हर चीज़ में ज़रूरत होती है। चाहे विवाह शादी हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह मिठास की शुरुआत होती है। वही कुछ मुंह मीठा कर लें तो जब मुंह मीठा करने की बात आती है तो सच कहें गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें आप देख रहे होंगे कि गन्ने का रस बड़े चाव से सब लोग पीते हैं। तो जो ये मिठास है, जो गन्ना है, जो फसल है, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे किसान बहन भाइयों के लिए भी लाभकारी है। और हम इसीलिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, फोन इन कार्यक्रम, जो हमारे किसान भाई सीधा हमारे विशेषज्ञों से जुड़ते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। तो आज का विषय है गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन।
3: और आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीतू सिंह, जो कि कृषि प्रसार MIT नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। और जो दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं वो हमारे डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि इंडियन पोटाश लिमिटेड में नई दिल्ली में मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं।
2: बिल्कुल। तो बहन भाइयों, जो भी आपकी गन्ना की फसल से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं या इस विषय से संबंधित कोई भी समस्या है, आप जानकारी ले सकते हैं, विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं और समाधान ले सकते हैं। और फ़ोन करने के लिए नंबर हैं 0111-2342-1082 और दूसरा नंबर है 2342-1083।
3: बिल्कुल, दिल्ली के बाहर के श्रोता जो हैं वो कोड लगाना ना भूलें 011। तो चलते हैं नीलम बहन स्टूडियो की तरफ, और हमारे विशेषज्ञ इंतजार कर रहे हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिव नंदन लाल।
4: किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और जिसका आज का विषय है गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन। और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू सिंह जी हैं, डॉक्टर उपेंद्र तेवतिया जी हैं, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी।
4: तो जब तक हमारे किसान भाई फ़ोन करते हैं और जब तक उनके सवाल आते हैं, तब तक हम आपसे जानना चाहेंगे कि गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन का क्या महत्व है।
5: देखिए शिवनंदन जी, जिन्होंने अपनी गन्ने की फसल अक्टूबर में बोई है
4: जी,
5: उनकी फसल में इस समय फर्टिलाइजर की लास्ट डोज लगाने का समय चल रहा है
4: जी,
5: और मानसून से पूर्व अगर वो मिट्टी चढ़ाने से पहले
4: जी,
5: कुछ किसान भाइयों ने मिट्टी चढ़ा भी दी होगी, कुछ जो चढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मिट्टी चढ़ाने से पहले जो लाइन है गन्ने की
4: जी,
5: उसमें इस समय लगभग एक बैग यूरिया का, आधा बैग पोटास का और आधा बैग DAP का, और एक 25 किलो का बैग पॉलीहेलाइट का, ये कूड़ में डाल के और अच्छी तरह मिट्टी चढ़ा लें।
4: ये जो आपने मात्रा डॉक्टर साहब बताई है,
5: ये एकड़ की मात्रा,
4: एक एकड़
5: प्रति एकड़, हाँ
4: जी,
5: प्रति एकड़ डाल के और मिट्टी चढ़ा के अच्छी तरह से दबा दें, और अगर मानसून आके बारिश हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पानी लगा दें। इससे फसल में एकदम से वृद्धि होगी, और ये बिल्कुल जाना माना और पहचाना परखा हुआ नुस्खा है। तो इस तरह से करके फिर उसके बाद में मानसून में कोई भी फर्टिलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जब तक कि कोई पत्तियों पे अगर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट या किसी के डेफिशिएंसी के लक्षण ना दिखाई दें। अगर उसके बाद लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें स्प्रे किया जा सकता है, क्योंकि गन्ना बड़ा हो जाएगा तो ड्रोन से स्प्रे किया जा सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। और अगर कोई और भी तत्व की कमी आती है प्राइमरी सेकेंडरी की, तो उसका भी स्प्रे किया जा सकता है
4: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से बताया कि गन्ने में किसान भाई मिट्टी चढ़ाने से पहले उर्वरकों का प्रयोग करें, लेकिन डॉक्टर नीतू सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की भूमिका गन्ने की वृद्धि के लिए किस प्रकार रखती है।
6: जैसे आपने पूछा शिवनंदन जी
4: जी,
6: कि नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस
4: जी,
6: तीनों ही ऐसे तत्व है जिसकी बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे कि पहले मैं नाइट्रोजन से शुरू करती हूँ। नाइट्रोजन उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है
4: जी
6: गन्ने की, उसमें वृद्धि करता है।

0: सेल इलोंगेशन, इसका मतलब है कि पौधे की जो लंबाई में जो वृद्धि है उसमें नाइट्रोजन की प्रमुख भूमिका होती है। इसके बाद जो आपका फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस जड़ों में वृद्धि करता है, जो जड़ें होती हैं, जड़ों का जो रूट्स का जो डेवलपमेंट है उसके लिए फॉस्फोरस बहुत उपयोगी तत्व में है। और तीसरा जो मुख्य होता है वो आपका पोटाश, तो पोटाश भी जड़ों के लिए है। और दूसरा ये इसके प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जैसे हमारे हमारी होती है ना इम्यूनिटी, ऐसे
1: जी
0: पौधों की भी प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है और उसे थोड़ा मजबूती प्रदान करता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने पोटास में काफ़ी काम किया हुआ है, तो पोटास का गन्ने की वृद्धि के लिए क्या महत्व है, तेवतिया जी?
2: हाँ, पोटास, देखिए पोटास तो मिठास के लिए नंबर एक उर्वरक माना गया है,
1: जी
2: और पोटास जो है इतनी शक्ति प्रदान करता है गन्ने को कि वो गिरता भी नहीं है, उसको इतना हार्ड बनाता है कि कीट और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है, और जो उसमें जो रिकवरी है जिसके लिए गन्ना उगाया जाता है,
1: जी
2: रिकवरी भी इंक्रीज होती है। आप ये देखिए कि गन्ने को पोटाश की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और ये इस बात से है कि जो गन्ना के रस के बाद प्योरिफिकेशन किया, चीनी बनाई, मोलेसिस बनाया, एल्कोहल बनाया, और उसके बाद में जो वेस्ट पदार्थ निकलता है
1: जी
2: उससे फिर पोटाश ड्राइव्ड फ्रॉम मोलेसिस बनाया जाता है, उसमें भी 14.5% पोटाश होता है, जबकि वहाँ से गन्ने से बगास में भी गया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा प्रेस मड में गया, चीनी में जाता नहीं है, उसके बाद सारा मोलेसिस में गया, उसके बाद भी जो उसकी राख बनती है 14.5% होता है, तो उसको दोबारा से हम खेतों में डालते हैं, तो ये दोबारा वहाँ से गन्ने से जो अवशोषित हुआ वापिस हम गन्ने के खेत में इसे पहुँचाते हैं। और ये तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो वाटर का रेगुलेशन है वो पौधे में बनाता है, और सभी क्रियाओं में ये भाग लेता है, और आवश्यक पोषक तत्व है, और प्राइमरी जो NPK कहते हैं उनमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और पौधे के हर एक वृद्धि मापदंड में इसका सहयोग रहता है।
1: जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने बताया है, ये उर्वरक हैं, इसको आपने के उसकी मिट्टी चढ़ाने से पूर्व डाल के करना चाहिए, सिंचाई अगर बारिश नहीं होती है तो सिंचाई
2: पानी,
1: सिंचाई
2: हाँ
1: हाँ
2: पानी
1: सिंचाई
2: लगा
1: कर
2: देना
1: देना
2: है,
1: चाहिए।
2: बिल्कुल
1: लेकिन अगर बारिश में थोड़ी और देरी होती है तो
2: हाँ।
1: किसान भाई क्या इसमें कुछ समय में बदलाव कर सकते हैं उर्वरकों के?
2: नहीं देखिए, अगर एक बार मिट्टी चढ़ाकर जो मैंने ये डोज लगाई, ये अंतिम डोज होगी,
1: अंतिम
2: हाँ, उसके बाद में कोई डोज लगानी नहीं है, क्योंकि उसके बाद में क्या है कि देखिए पोटास और फास्फोरस की तो रिकमेंडेशन नहीं है, उनको मिट्टी के नीचे दबाना जरूरी है, तो जब हमने मिट्टी चढ़ा दी तो जो जड़ें पूरी उसमें फेंटे फैलेंगी, जो मिट्टी चढ़ाई है, तो
1: जी
2: उसमें वो उस फर्टिलाइजर को लेंगे, उसके बाद केवल नाइट्रोजन रह जाता है जिसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं ऊपर से, और नाइट्रोजन उसके बाद करना नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन अगर उसके बाद करोगे तो पौधे में रोग और कीटों का आक्रमण बढ़ेगा, क्योंकि उसके बाद गन्ना इतना बड़ा होने के बाद में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है।
1: जी किसान भाइयों, इस समय आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और आज का विषय है गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं अमेठी से डॉक्टर नीतू सिंह, जो कि प्रोफेसर हैं कृषि प्रसार में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड में। और किसान भाई जो भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और हमारे विशेषज्ञों से अपने कोई भी सवाल गन्ने की फसल से संबंधित पूछना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं वही 23 42 10 82 और 23 42 10 83। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गन्ने की फसल में अगर ज़्यादा उर्वरक डाल दिया या आपने नाइट्रोजन डाल दी बाद में, तो उस पर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, तो क्या इस समय भी कुछ कीट बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना है?
2: हाँ, इस समय देखिए टॉप बोरर है जो जो उसका उसके लिए उसके रोकथाम की ज़रूरत है, जिसमें ऊपर की जो टॉप होता है उसका, उसको जो कंसुआ कहते हैं जो टॉप बोरर है वो काट देता है, अगर उसको किसान खींचेगा तो वो खिंच जाता है और नीचे से वो काला काला होता है, और अगर उसे फाड़ के देखेंगे अगर

0: को, तो उसमें एक गिंडार सी मिलेगी उसके
1: उसके गोब में।
0: गोब में, बिल्कुल वो ऐसे निकल जाएगी। अगर उसको फिर देखोगे तो या तो वो जो जो आप खींचोगे उसके तने को उसमें भी आ सकती है, और या अंदर रह जाएगी। तो अगर उसको फाड़ के देखोगे तो अंदर एक गिंडार टाइप सी मिलेगी, उसको कहते हैं टॉप बोरर, कंसुआ
1: जी
0: भी कहते हैं इसको, सलाई भी कहते हैं किसान भाई। तो उसके रोकथाम के लिए जो क्लोरएंट्रोनिलीप्रोल है, जो CTPR कहते हैं, उसकी 150 ml की एक बोतल आती है, वो IPL भी देती है, सप्लाई कर रही है अपनी शुगर मिल में किसानों के हित के लिए। तो
1: डॉक्टर साहब बीच में माफ़ी चाहूँगा, रोकना
0: जी
1: चाहूँगा आपको,
0: जी
1: एक किसान भाई का फ़ोन लेते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: हेलो,
2: हेलो, नमस्कार सिमरन लाल,
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार तमाम श्रोताओं, तमाम जो हमारे विशेषज्ञ उनको भी नमस्कार
0: नमस्कार जी, नमस्कार
3: नमस्कार
2: जी। मैं यूपी से बिजनौर से अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ
1: जी।
0: जी।
2: जी, आपने बताया कि जो आखिरी वो मिट्टी लगाने के जो डोज होती है उसमें फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन लगाते हैं।
0: जी
2: हम जैसे कैल्शियम लगाते हैं, कैल्शियम, पोटास और नाइट्रोजन
0: जी
2: हम इसको लगाते हैं, तो उसके साथ में तो उसको नहीं लगाया जाना ना, DAP को?
0: नहीं, कैल्शियम को लगा सकते हो, जिंक नहीं लगानी है।
2: अच्छा, कैल्शियम लगा सकते हैं इसके साथ?
0: हाँ, जिंक नहीं लगानी। जिंक के
2: अच्छा
0: साथ
2: अच्छा
0: में जो है फास्फोरस का बड़ा दुश्मनी का
2: हाँ, ये भी
0: रिश्ता
2: होता
0: है,
2: जाता है जमीन के लिए।
0: वो जिंक और फास्फोरस दोनों पत्थर बन जाते हैं ना, जिंक मिलता ना फास्फोरस।
2: जी,
0: कैल्शियम आप लगा सकते हो,
2: अच्छा, कैल्शियम लगा सकते हैं हम DAP के साथ में भी?
0: यस सर।
2: DAP, कैल्शियम और पोटास और नाइट्रोजन?
0: नाइट्रोजन इसमें वो जिंक नहीं मिलाना है, जिंक
2: अच्छा
0: सल्फेट।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक
0: और
2: है,
0: ये
2: बहुत
0: देखिए, ये गन्ने में है, गन्ने
2: जी।
0: में जो है ज्यादातर फास्फोरस, अगर जैसे गेहूं धान में बुआई के समय ही डाला जाता है,
2: हाँ, बुआई के समय डाला जाता
0: तो
2: है।
0: इसमें क्योंकि एक एक हमारी प्रक्रिया मिट्टी चढ़ाने की ऐसी है जो
2: जी,
0: हमें दोबारा भी मौका देती है, तो
2: हाँ
0: हमारा ये रिकमेंडेशन है कि आधा फास्फोरस और आधा
2: जी
0: पोटास तो हम बुआई के समय डाल दें, और
2: जी
0: आधा फिर देखिए मिट्टी अच्छी तरह चढ़ाओगे तो उसमें भी आप देखते होगे, उस जो मिट्टी चढ़ाते हैं उसमें भी जड़ें फैल
2: जी
0: जाती हैं गन्ने की।
2: हाँ हाँ फैल जाती है जगह
0: हाँ, उनको
2: फैल।
0: जितनी जड़ें फैलेंगी उतनी वृद्धि होगी और उनकी पकड़ भी बनेगी मजबूत,
2: अच्छा,
0: तो इसलिए उसमें कूड़ में डाल के आप अच्छी मिट्टी चढ़ा दो तो वो बहुत अच्छा असर करती है। और वो आगे देखिए कितने, एक साल की फसल होती है, अगर आपने बुआई के समय सारा डाल दिया, अब वो एक साल तक अवेलेबल होगा या नहीं होगा, अगर आप बीच में भी आप मिट्टी चढ़ाते हो, 3, 3.5, 4 महीने में मिट्टी चढ़ती है, उसके बाद करोगे तो आपके अगली फसल में वो आगे को जो आएगी उसमें पूरा वृद्धि देगा, नई जड़ें निकलेंगी आपकी जो मिट्टी चढ़ाई है, और अच्छे पोषक तत्व लेगा वो, तो अच्छी वृद्धि होगी।
2: हाँ सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम ये पेड़ी होती है इसमें तो हम जो फास्फोरस और पोटाश जो लगाते हैं तो वो उसी के माध्यम से लगाते हैं, जो ये घुलनशील आते हैं?
0: हाँ देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सभी किसानों को मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, पैदावार तो पेड़ी भी देती है और पौधा से ज़्यादा भी देती है,
2: हाँ, पौधा से भी ज्यादा
0: तो
2: देती
0: उसको
2: है,
0: भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स
1: लागत
0: की ज़रूरत पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब लागत भी कम लगती है,
0: हाँ, लागत
2: लागत
0: भी, बीज बीज की आपकी बुआई का, वो इंतजार भी नहीं करना पड़ता, तुरंत उसमें टिल्लिंग होने लगती है, ब्याथ होने लगती है। देखिए किसान भाई, हमें देखियो पहले भी करते थे कि उसके पेड़ी को हल से जोतते थे, तो मैं खुद, मुझे पता है हमारे फादर जब हल निकालते थे बिल्कुल खूर के बराबर से, तो उसमें
2: निकालते,
0: खाद डालते थे,
2: हाँ, खाद
0: और
2: डालते,
0: खाद डाल के जैसे ही पानी दोगे वो जड़ों के गहराई में चला जाता है खाद एकदम से। एक तो उससे उसकी जड़ें कट जाती हैं जो पुरानी होती हैं, पुरानी कटते के साथ ही नई नई ताजा जड़ें निकलती हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसको एक प्रक्रिया भी कहते हैं, इसको कहते हैं रूट प्रूनिंग, और आज की भाषा में जो रेट्यून मैनेजमेंट डिवाइस आ रही है, हालांकि वो उस तरह की इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा एक वो है जो वो साइड से उसको काटती चली जाती
2: जी, आ रही,
0: है तो
2: हाँ
0: उसमें जो है उसमें वो जो हैरो से काटते हैं उससे वो इतना नहीं काटता, मैं सेटिस्फाई उससे नहीं हूं। अगर उसको कोई आज भी हल मिल जाते हैं जो पेड़ियों को जोतने के लिए, कुछ कुछ लोग अपने बैल रखते हैं और हल रखते हैं, अगर पेड़ी को आप हल से जुतवा के और साइड से गहरी जुताई करके और उसमें खाद डाल के पानी लगाएं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, और उसमें
2: हाँ अच्छे
0: उसमें
2: मिलेंगे,
0: फास्फोरस भी डालना चाहिए और पोटास भी
2: हाँ
0: डालना चाहिए।
2: जी,
0: लेकिन
2: अच्छा,
0: अब एक
2: हाँ
0: बात और जरूरी है ध्यान रखने का,
2: जी,
0: इसमें शॉर्टकट ना अपनाया जाए।
2: अच्छा,
0: शॉर्टकट कैसे, कुछ किसान भाई क्या है ऊपर से DAP उसमें छिटक दिया पेड़ी में,
2: ना, वो ना,
0: ऊपर से पोटास छिटक

0: दिया। देखो ये जानना जरूरी है कि ये जो नाइट्रोजन की तरह ये गहराई तक नहीं जाता, ना फास्फोरस ना पोटास,
1: जी,
0: फिर वो ऊपर पड़ा रहेगा, फिर उसके
1: हाँ
0: आपको सफेद सफेद धब्बे दिखाई देंगे। और
1: हाँ
0: किसान फिर क्या करता दिमाग में, अरे भाई ये तो डीएपी खराब है, ये तो
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: खराब है, उसको
1: नहीं
0: नॉलेज का अभाव है कि वो नीचे भी
1: जी,
0: जाके ऐसे ही पड़ा रहता है जमीन में
1: हाँ
0: भी,
1: ऐसे ही रहता है,
0: जब जड़ जाती है उसके पास तक तभी वो मिलता है, वो नहीं
1: तभी
0: जाता इधर
1: रहता है
0: उधर। तो
1: जी
0: इसलिए कभी भी इनको ऊपर से ना डाला जाए, अन्यथा
1: जी
0: आपका जो पैसा है वो बर्बाद होगा, जो लेबर लगी है वो भी बर्बाद होगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपकी जो आईपीएल की पोलियोलाइटिस है, ये यहाँ बिजनौर में तो नहीं मिलती है? अच्छा
0: ये देखो मिलनी तो चाहिए हर एक जगह, लेकिन आप जो हमारे ऑथराइज्ड डीलर हैं जो आईपीएल के,
1: जी,
0: आप उनसे पता करो, हो
1: चलो
0: सकता
1: पता
0: है जिसके
1: करेंगे, फिर
0: पास
1: वो भी
0: आप,
1: तो जरूर डाल लेंगे,
0: हाँ हो सकता है
1: जरूर।
0: जिसके
1: हाँ
0: पास
1: वैसे
0: आप गए उसके पास ना हो।
1: पोटास तो हम आईपीएल की लगाते हैं, और भी कई जो इसके प्रोडक्ट हैं वो भी लगाते हैं आईपीएल के, वो अच्छी कंपनी आती है, अच्छा रिजल्ट आता है उसका।
0: जी, तो
1: हाँ
0: अगर आप वो है तो शिवनंदन जी का अगर नंबर हो तो आप हमें अपना नंबर इनके द्वारा हम ले लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास में पॉलीहेलाइट भिजवाया जाए, बहुत ही बेहतरीन उर्वरक है और उसमें चार पोषक तत्व होते हैं और
1: जी
0: काफी मात्रा में होते हैं। और एक और बात है कि ये ऑर्गेनिक होता है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है,
1: अच्छा अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: और भी बहुत अच्छा है। और शुगर केन के में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे
1: चलो
0: रिजल्ट है
1: देखो,
0: सर।
1: अब तो पूरा हो लिया मामला, अगले
0: जी
1: साल ऊपर वाले ने जिंदगी रखी तो आपसे जरूर संपर्क करेंगे, जरूर मिलवाऊंगा। आपका प्रोग्राम हम सुनते चले आते हैं, जब से आपने ये गन्ने की पाठशाला शुरू की
0: हाँ
1: तब
0: जी
1: से ही मैं ये प्रोग्राम जरूर ही सुनता हूँ,
0: बहुत बढ़िया,
1: और काफी
0: क्या
1: लाभ मिलता है आपकी बात सर, बहुत ही हम इसमें काफी फायदा हुआ, हम अपनी खेती में काम करने से।
2: जी अब्दुल
0: देखिए ये
2: हामिद जी,
0: इंडियन पोटास लिमिटेड, देखो पहली ऐसी कंपनी है कि जिसने गन्ने की पाठशाला शुरू की है, और किसी की आपने नहीं सुनी होगी, हम गन्ने के किसानों के लिए सभी तरह के बेहतरीन प्रोग्राम करते
1: हाँ,
0: रहते हैं।
1: बहुत ही अच्छे पैसे, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम साहब आपके, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाभ हो रहा किसानों को,
2: ठीक
1: बहुत ही
2: है,
1: अच्छा हो रहा है,
2: आपके आसपास के और भी किसान हैं उनको कार्यक्रम से भी जोड़ो,
1: उनको
2: ठीक
1: भी
2: है,
1: जोड़ते हैं, हम बताते
2: बिल्कुल
1: हैं जो
2: बिल्कुल
1: मतलब असल में बात एक होगी ना शिवनंदन लाल जी, क्योंकि रेडियो से तो बहुत कम लोगों के संपर्क हो गए, और
2: जी
1: जो मतलब ये फोन वाले हैं आज के टाइम में, लोग अपने अपनी बातें और देखते हैं, और चैनलों को देखते हैं, जो
2: ठीक
1: असल चैनल है वो ये है, यहाँ से हमें सही पता मिल, सही चीज
2: ठीक
1: मिलती
2: ठीक
1: है।
2: बिल्कुल, अभी
1: हाँ
2: आपके किसी साथी का फोन आ रहा है,
1: चलो ठीक है,
2: आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ये हमारे जागरूक किसान थे और कार्यक्रम के विधिवत श्रोता भी हैं, और जो भी कार्यक्रम में जानकारी दी जाती है तो उसको भी ध्यान से सुनते हैं और अपनी जो भी फसल लगाते हैं उस पे वो लागू करते हैं। और दूसरे किसान भाई भी लाइन पे हैं। हेलो
3: नमस्ते सर जी,
2: नमस्ते
0: नमस्कार जी
3: मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से जी,
2: जी, डॉक्टर सितारे
3: मैं बहुत याद करता हूँ आप लोगों को, बहुत फायदा उठाता हूँ खेती बाड़ी से।
0: हम तो आपकी सेवा के लिए ही हैं, फायदा उठाइए खूब।
2: तो आप वहाँ कार्यक्रम कैसे सुनते हैं?
3: रेडियो टीवी पर सुनता हूँ, टीवी पर
2: अच्छा, डीटीएच के थ्रू।
3: जी, डीटीएच के थ्रू।
2: हाँ
0: वाह
2: बहुत
0: क्या
2: बड़ी
0: बात,
2: अच्छी
0: वेरी
2: बात
0: गुड,
2: है, तो आपको ठीक सुनाई देता है?
3: खूब साफ सुनाई देता है।
2: तो दिल्ली के कार्यक्रम कौन कौन से सुनते हैं?
3: ये सुनता हूँ, खबर सुनता हूँ, भेड़ो किसान भी सुनता हूँ।
2: तो आज क्या सवाल है डॉक्टर साहब से गन्ने की पाठशाला में?
3: गन्ने के पाठशाला में पानी बरस गए थी तो कुछ खेती में खराबी आ गई है, मुर्गन
0: कितना पानी भरा हुआ है?
3: बरस गया था लेकिन अब सूख रहा है आस्ते आस्ते। जी
0: अच्छा, बत्ती पीली पड़ गई है,
3: जी पत्ती पीली पे मुरझा गई है,
0: कितनी देर भरा रहा, कितने दिनों भरा रहा पानी?
3: 3 दिन
0: 3 दिन। कितना, कितने फुट?
3: 1 फीट से 1 फीट।
0: तो 3 दिन में तो नहीं मुरझानी चाहिए। कौन सी वैरायटी है?
3: वो देहात वाली है, पर्व के लिए हम लोग रोपते हैं।
0: अच्छा, तो खाद वाद डाला था?
3: खाद डाला था जी,
0: अब बिल्कुल पानी निकल गया, बिल्कुल सूख गया या अभी कुछ नमी है?
3: अभी नमी है, गीलापन है थोड़ा सा।
0: तो गीलापन है तो थोड़ा उस यूरिया डालिए। नीचे की पत्ती पीली है या ऊपर की?
3: ऊपर वाली ज्यादा है,
0: अच्छा ऊपर की है, तो फिर सल्फर की कमी है आपके इसमें, सल्फर डालिए आप, WDG सल्फर डालिए 5 किलो एकड़ का,
3: ठीक है जी,
0: 85% वाला।

0: सही सलाह के लिए
1: ठीक
0: बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: ठीक है
0: हाँ
1: डॉक्टर सितारे, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हमारी बात बीच में रह गई थी, टॉप बोरर की आप बता रहे थे कि टॉप बोरर के रोकथाम के लिए बताना था आपको, जो गोभ में कीड़ा।
2: हाँ तो उसके लिए जो मैंने बताया CTPR आता है एक, जो हमारा IPL का भी आता है पोटजन के नाम से, तो उसका जो है 150 ml की CC है जो 1 एकड़ के लिए होती है, उसको 400 लीटर पानी में डाल के और उसकी ड्रेंचिंग की जाती है, कूड़ों में नोजल ढीला करके और उसकी ड्रेंचिंग धार से वो पूरा करते हैं, प्लांट पे भी डालते रहो, पूरा तर होकर नीचे जाता रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि जो इसका गोभ में कीड़ा जाता है वो नीचे से जाता है।
2: देखियो जाता नीचे से नहीं है, लेकिन जो ये केमिकल है
1: जी
2: ये सिस्टेमेटिक है, सिस्टेमेटिक मतलब जड़ जब इसे एब्जॉर्ब करेगी तो ये पूरे प्लांट में समान रूप से फैल जाएगा, तो उसमें जहाँ भी कीड़ा होगा वहीं पे वो मर जाएगा, ये रूट से नहीं आता, ये ऊपर से ही होता है। जब देखिए अंडे होते हैं ना उसके, जो ये अंडे देते हैं इसकी एक पूरी वो है लाइफ साइकिल, तो
1: जी
2: अंडे देते हैं, अंडे से जो है फिर वो बनती है, कहते हैं तितली बनती है, तितली फिर उससे गिंडार बनती है, गिंडार जो है वो कोद वो जाती है फिर हर एक प्लांट में। और एक और मैं बात बताऊं आपको,
1: जी
2: आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और ऐसे क्वेश्चन करने से ही किसानों का ज़्यादा लाभ होता है। एक जो तितली है वो 400 अंडे देती है और 400 ही गिंडार बनती है उसमें, और शिवनंदन जी 400 गिंडार 400 गोभ में जाएंगी, एक में दो या तीन नहीं जाती किसी भी गोभ में, उनको पहले से ये पता चल जाता है कि इस गोभ में अंदर पहले से गिंडार है, वो दूसरा गोभ ढूंढेगी। 400 गोभ 400 पौधों को नष्ट कर देती है केवल एक तितली,
1: बहुत बड़ा
2: उसके
1: नुकसान होता है
2: बहुत
1: गन्ने
2: बड़ा।
1: का।
2: उसके लिए जो जो ट्रैप है, सोलर ट्रैप जैसे फेरोमन ट्रैप, इन तितलियों को ट्रैप करने के लिए किया जाता है, जब तितली कोई मार लेंगे तो उससे जो 400 अंडे होंगे, एक तितली को मारने से 400 पौधे हमारे बचेंगे। तो इसलिए किसान भाई, और अगर कुछ भी ना करें एक एक चीज कर लें, एक बल्ब लगा दें एक कोने पे, उसमें नीचे पानी भर दें, पॉलीथीन लगा के गड्ढा करके पानी भर दें जिससे कि पानी रहे, उसमें मिट्टी का तेल डाल दें और ऊपर बल्ब लगा दें, तो वो बल्ब पे आएंगी सारी
1: हाँ,
2: तितली
1: उजाले
2: रात
1: पे
2: को
1: आते हैं।
2: और वो आके नीचे गिरेंगी, उसमें जो है वो मर जाएंगी, चिपक जाएंगी पानी में। इस तरह से भी किसान लाभ ले सकते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी डिवाइस, फेरोमन ट्रैप और सोलर लाइट ट्रैप आ रही हैं जो उसमें फील्ड में जगह जगह खड़ी कर दें, तो उसमें वो सारी इकट्ठी होकर मर जाती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो,
0: नमस्कार
1: हाँ नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
0: सर, सुखबीर सिंह बोल रहा था, ग्राम कलौंदा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर से। सर
1: जी सुखबीर सिंह जी, क्या सवाल है आपका?
0: पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसानों के लिए ये गन्ने की पाठशाला का आयोजन आपने शुरू किया है, तो इससे किसानों को काफी बेनिफिट होगा। और मेरा सवाल डॉक्टर नीतू सिंह मैडम से है,
1: जी,
0: ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम DAP का प्रयोग बुआई के समय में नहीं कर पाए हैं या खेत की तैयारी में नहीं कर पाए हैं, तो क्या हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, फसल में खड़ी फसल में लगा सकते हैं?
1: जी डॉक्टर नीतू सिंह जी,
3: हाँ आप लगा सकते हैं, लेकिन जो DAP है ना, नाइट्रोजन है इसमें आपका और फॉस्फोरस है, तो आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन एक जो आपका संतुलित जो उर्वरक है उसका आप ध्यान रखें, किसी भी मात्रा को अधिक ना लगाएं, जैसे इसमें आप नाइट्रोजन या यूरिया का यूज़ करते हैं ना, उसको यूज़ ना करें ज़्यादा, अधिक लगाने से जो पौधे होते हैं वो उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी वो होती है कमज़ोर पड़ती है और वो कमज़ोर होकर गिर भी जाते हैं, तो आप इसे संतुलित मात्रा में लगाएं।
0: जी मैम। मैम एक सवाल और था मेरा है कि
3: जी
0: मैं क्या, जैसे किसान DAP को लगाते हैं या जिंक लगाते हैं, तो DAP और जिंक को एक साथ मिला के लगा सकते हैं
3: नहीं
0: क्या
3: नहीं
0: आप?
3: बिल्कुल नहीं लगा सकते इसे, आप जब लगाएंगे ना इसे तो ना
0: जी
3: आपको जिंक मिलेगा ना ही कोई

0: डीएपी ना मिले तो एनपीके ले सकते हो आप कोई सा भी,
1: जी।
0: और तो एनपीके के द्वारा भी वो आपका फास्फोरस जा सकता है। एक टीएसपी और आ रहा है, ट्रिपल सुपर फास्फेट, वो भी ले सकते हो, और सिंगल सुपर फास्फेट भी ले सकते हो, उसमें भी फास्फोरस मिलता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल डीएपी अगर नहीं मिल रहा है तो सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, और आप दूसरे एनपीके जो उर्वरक हैं उनके लिए भी आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी वजह से आप डाल नहीं पाए तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप उसकी जुताई करिए। जुताई करते समय अगर हल मिल जाए और उसके कूड़ के पास से हल निकालो और उसमें फिर डीएपी डाल दो और पानी लगा दो, तो वो नीचे पहुंच जाएगी जड़ के। तो
2: जी
0: उसको
2: बिल्कुल
0: मिलाना मिट्टी में बहुत जरूरी होता है।
2: जी, शुक्रिया जी फ़ोन करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया कि किस तरीके से आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, क्योंकि समय अब समाचारों का है, उसके बाद मिलते हैं।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
4: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
5: हमारा ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा 7:05 समाचार के बाद भी।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, अब सुनिए हिंदी में समाचार।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में इस समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर

0: रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।
2: किसान बहन भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: जैसा कि हमारा सजीव प्रसारण चल रहा है और गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस समय आपको बताते चलें, डॉक्टर नीतू सिंह प्रोफेसर कृषि प्रसार MIT नोएडा गौतम बुद्ध नगर से हैं, और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली से।
3: बिल्कुल किसान बहन भाइयों, आप फ़ोन कर सकते हैं 0112342108 पर और 0112342108 पर। ये दोनों फ़ोन नंबर हैं स्टूडियो के, आप इन नंबरों पर बात कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से, और गन्ने की फसल से कोई भी समस्या जो है या जानकारी चाहते हैं आप समाधान ले सकते हैं और जानकारी तुरंत विशेषज्ञ आपको देंगे।
4: तो डॉक्टर तेवतिया जी, डॉक्टर नीतू सिंह जी, दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस समय

0: भारत सरकार का भी जोर है कि संतुलित उर्वरक प्रयोग का, खेती बचाओ उस पे बात कर रहे हैं। तो क्या गन्ने की फसल में जो हमारे जैविक उर्वरक हैं और रासायनिक उर्वरक, दोनों का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? डॉक्टर नीतू सिंह जी।
1: आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया। जो जैव उर्वरक है और रासायनिक उर्वरक,
0: जी
1: दोनों में ये अंतर है कि जो जैव है उसमें जीवन है, रसायन अलग होता है। तो जो जैव उर्वरक होते हैं, जैसे आपका एजोस्पिरिलियम है, एजिटोबैक्टर है, और आपका PSB है, फॉस्फेट सोलवराइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो जैव उर्वरक है, ये इसमें क्योंकि रसायन नहीं है तो कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। यदि आप इसे अधिक मात्रा में भी डालते हैं तो भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन रसायन का दुष्प्रभाव दिखता है अगर आपने उसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया। तो जैव उर्वरक हमारे किसान भाइयों को उसका भी अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये है कि जानकारी के अभाव में वो नहीं कर पाते हैं। जब जानकारी नहीं होती है तो वो उसका प्रयोग नहीं कर पाते। ये जो जैव उर्वरक है, अगर आप अपने गन्ने की फसल में इसको पहले, जैसे हम जब इसकी अपनी शुरुआती उसमें होती है, हम
0: जी बिजाई
1: इसका
0: करते हैं
1: हाँ
0: जब।
1: बीज का जो उपचार करते हैं उस समय भी आप इसका ले सकते हैं। आप इसे गन्ने का जब आप उपचार करते हैं जड़ का, और उसको आप लगाते हैं, तो आप उसे कम से कम 1 घंटे अगर डुबो के रखें, जिसमें आपका एजोस्पिरिलियम है और आपका एजिटोबैक्टर है, ये PSP, तो ये क्या करते हैं, आपको जो हमारी मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं उसको उपलब्ध कराते हैं। जैसे PSB है, फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट के फॉर्म में हमारा जो पौधा होता है गन्ने का, वो लेता है उसे। तो इसे वो बैक्टीरिया इसको आपके पौधे को उपलब्ध कराता है। ऐसे जो एजोस्पिरिलियम है, एजिटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है, 79%,
0: जी
1: तो उसका जो स्थिरीकरण होता है वो हमारे ये जो बैक्टीरिया है, जो हमारे पहले से ही है मृदा में होते हैं, लेकिन बहुत अधिक रसायन का यूज़ करने से ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इनको समय समय पर डालते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मृदा का स्वास्थ्य जितना अच्छा रहेगा, फसल की गुणवत्ता और उसकी उतनी अधिक यील्ड हमें उत्पादन प्राप्त होगा।
0: कहने का मतलब यह है कि उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना चाहिए, रासायनिक उर्वरक साथ में जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फ़ोन लेते हैं। हेलो।
2: अनुराग
0: हाँ नमस्कार, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: बोल रहा
0: हाँ अनुराग जी, कहाँ से?
2: हूँ सर, जीतूपुर बुलंदशहर।
0: जी क्या सवाल है आपका?
2: मेरा सवाल नीतू मैम से, नीतू मैम डॉक्टर नीतू सिंह से है जी, कि यूरिया की जैसे कमी चल रही है, तो हम गन्ने की फसल में यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं?
0: जी डॉक्टर साहब,
1: यूरिया का देखिए स्प्रे आप 2% इसका जो घोल होता है वो, लेकिन 90 दिन की फसल होनी चाहिए, क्योंकि इससे
2: अच्छा।
1: पहले आप नाइट्रोजन तो लगा ही लेते हैं,
2: हाँ
1: बेसल
2: जी,
1: डोज के रूप में भी लगाते हैं, स्प्लिट डोज भी लग जाती है। लेकिन अगर आपको, लेकिन उसका प्रयोग भी आप करेंगे तो एक तो आप ये भी देखेंगे पत्तियों में यदि पीलापन, जैसे यूरिया की कमी, ये नाइट्रोजन की कमी से जो पीलापन होता है ना, पुरानी पत्तियों में आता है, उसके ऊपर की पत्तियों में नहीं आता है। और अगर आप इसका 2% घोल है उसका छिड़काव करते हैं, जैसे 2 किलो 100 लीटर में उसका वो करके 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं, तो उससे भी अच्छे आपको रिजल्ट इसके प्राप्त होते हैं।
2: ठीक है मैम, धन्यवाद।
0: ठीक है अनुराग जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई जागरूक हैं काफ़ी, और डॉक्टर साहब जानना भी चाहते हैं कि उनके मन में जो भी सवाल होते हैं कि, लेकिन डॉक्टर तेवतिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन में किसान भाई क्या गलतियाँ करते हैं?
3: देखिए, मानसून पूर्व में किसान भाई गलती करते हैं कि एक तो जो बेसल डोज है कभी कभी वो नहीं डालते हैं, और दूसरा मिट्टी टेस्ट नहीं कराते, बिना मिट्टी टेस्ट करे डालते हैं। अगर मिट्टी टेस्ट कराएंगे तो हमको पता चलेगा हमें कौन कौन से उर्वरक डालने हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई फ़ोन ले लें।
3: हाँ
4: हेलो,
0: हेलो
4: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी,
4: मैंने कॉम्प्लेक्स और यूरिया लगाया था एक में,
3: क्या
0: ठीक
3: लगाया?
0: है।
4: कॉम्प्लेक्स और यूरिया लगाया था एक में,
3: अच्छा,
0: हाँ
3: कॉम्प्लेक्स,
0: कॉम्प्लेक्स, ठीक
3: अच्छा
0: है।
3: ठीक है।
4: कूड़ कूड़ लगाया था मैंने वो अभी, तो उसमें पानी कब लगाना चाहिए?
3: आप ये बताओ कितनी बड़ी है आपकी?

0: जो गन्ने की फसल है,
1: करीब 6-7 फुट की हाइट में।
0: 6-7 फुट की हाइट है
1: हाँ जी,
0: तो, और आपने लगाया है अभी कॉम्प्लेक्स लगाया है और यूरिया लगाया है,
1: जी।
0: मिट्टी चढ़ गई नहीं चढ़ी अभी?
1: हाँ मिट्टी चढ़ गई,
0: तो मिट्टी चढ़ने के बाद लगाया पहले लगाया?
1: मिट्टी चढ़ने के बाद लगाया ये अभी।
0: तो मिट्टी चढ़ने के बाद में क्या उसमें बखेरा है खेत में?
1: नहीं, कौन कौन लगाया था।
0: अच्छा, मिट्टी चढ़ाने के लिए खूड़ खूड़ लगाया। देखिए अब ये है कि आप यूरिया, अगर मिट्टी चढ़ चुकी है तो वैसे तो अब आपकी 7 फीट की फसल हो गई है, आपको यूरिया लगाने की जरूरत नहीं थी, नंबर एक।
1: जी,
0: नंबर दो,
1: बिल्कुल।
0: जो आपने एनपीके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर लगाया है उसमें भी एक पार्ट कौन सा लगाया आपने कॉम्प्लेक्स?
1: ये कॉम्प्लेंस उसका आता है यारा का।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो उसमें जो आपने वो लगाया, अब ये मैं समझ नहीं पा रहा आप, क्योंकि एनपीके तो बनाता नहीं है ये, तो
1: नहीं,
0: वो कौन सा लगाया? क्योंकि उसमें एनपीके तीनों थे या कोई कौन सा
1: नहीं नहीं
0: है?
1: हाँ जी, उसमें तीनों ही आते हैं, तीनों ही।
0: हाँ, तो तीनों थे तो वो जो है आप फास्फोरस और पोटास देखो ऊपर से डालना की सिफारिश नहीं है
2: वो फायदेमंद नहीं है
0: और
2: फसल
0: वो
2: के लिए।
0: फायदेमंद नहीं है, वो आपको फायदा नहीं देगा, उसमें थोड़ा आपका पैसे का नुकसान हो गया, लेकिन नाइट्रोजन जरूर मिल जाएगी आपकी। नाइट्रोजन उसमें भी होती है आपके कॉम्प्लेक्स में भी, जब आप कह रहे हो तीनों है। लेकिन ये मैं आपको अभी बता रहा था मैं इसमें पहले किसान को, कि ये अगर मिट्टी चढ़ाने से पहले आप कूड़ा डालते और
1: कूड़ों
0: उसके
1: में
0: बाद पानी लगाते तो बहुत अच्छा फायदा मिलता आपको।
1: हमने अब अभी करीब 4 फुट की हाइट है उसमें, एक में
0: हाँ
1: उसमें लगाया है अभी, उसमें मिट्टी नहीं चढ़ी है। अच्छा,
0: हाँ तो उसमें कूड़ में लगाओ और उसमें मिट्टी चढ़ाओ, फिर देखिए उसमें बहुत फायदा करेगा।
1: जी। और पानी कब लगाएं?
0: पानी चढ़ाते ही, मिट्टी चढ़ाते ही लगा दो।
1: मिट्टी चढ़ाते ही।
0: हाँ, अगर घास हो तो रुक जाओ 2-4 दिन, घास को सूखने दो।
1: हाँ घास तो हो जाती है।
0: हाँ, तो घास को सूखने दो थोड़ा सा और पानी लगा दो, क्योंकि उसका असर जब ही होगा जब पानी लगाओगे आप खाद का,
1: जी।
0: ठीक है? अंदर अपना इतने वो मिट्टी में रहेगा, जब भी पानी लगाओगे तभी उसका असर आएगा, जब भी जड़ों को मिलेगा वो।
1: यही पूछना था सर।
2: ठीक है
1: जी
2: अनुराग जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से हमारे किसान भाई ने भी देखो वही गलती की, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो उर्वरक प्रबंधन में किसान भाई मानसून पूर्व डालते हैं तो क्या गलतियाँ करते हैं?
0: तो मैंने जैसा बताया आपको कि ये ए, ए, ए, कभी कभी ऊपर से पोटास डाल देते हैं, ऊपर से डीएपी डाल देते हैं, तो ये गलतियां हैं। और फिर अच्छी तरह से जब खेत की जिस समय तैयारी होती है उस समय आपकी सॉइल की जो टेस्ट रिपोर्ट है आपके सामने होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट कितना डालना है, एनपीके कितना डालना है, उसी के हिसाब से कौन सा बेसल डोज में बुआई के समय डालना है और कौन सा उसके टॉप ड्रेसिंग करनी है।
2: तो जैसे आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों के जिक्र किया है, तो उसमें जैसे आयरन हो गया, बोरान है, तो इसका प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए?
0: देखिए, जो भी न्यूट्रिएंट है, ये सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट,
2: जी
0: इनकी सिफारिश बेसल डोज में की गई है। और अगर इस मिट्टी टेस्ट में इनकी कमी ना दिखाई दे तो इनको बेसल डोज में नहीं डालते हैं। दूसरा कारण है, दूसरा टाइम होता है कि अगर इनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम खड़ी फसल पर दिखाई दे तो इनको स्प्रे द्वारा, छिड़काव द्वारा इनको पूर्ण किया जा सकता है। क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो कहते हैं इनको, कहते ही इसलिए हैं कि
2: जी
0: इनकी जो है बहुत सूक्ष्म मात्रा की ज़रूरत होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनकी
2: जी
0: बहुत सूक्ष्म मात्रा में
2: जी
0: ज़रूरत
2: डॉक्टर
0: होती
2: साहब,
0: है।
2: एक किसान भाई का फ़ोन लेते हैं। हेलो हेलो,
3: लाल जी, राम राम। गढ़गंगा
2: राम राम जी। हाँ
3: नैवान से जिला हापुड़ में घनश्याम बोल रहा हूँ मैं।
2: जी घनश्याम भाई, क्या हाल हैं आपके?
3: बढ़िया, मैं तुम्हारी बात सुनकर और भी सही हो जाए। डॉक्टर साहब को सब राम राम।
0: राम राम जी, राम राम।
2: तो क्या सवाल है आपका?
3: मेरा ये सवाल है, ये मैंने जो है हल चढ़वा के मट्टी चढ़वा दी गन्ने में।
2: यानी गन्ने में पहले आपने उसकी हल चलवाया, उसके बाद में
3: हाँ जी,
2: मिट्टी चढ़ा दी
3: हाँ जी,
2: और कोई उर्वरक वगैरह डाला?
3: हाँ मैं ये तो पूछ रहा हूँ, देसी खाद डाल के ये वाल चलवाया आँखों।
0: क्वेश्चन क्या है आपका?
3: आप सिस्टम ये है जी क्या, इसमें जो है खाद बखेरना चाहिए अपना।
2: इन्होंने देसी खाद डाली,
0: देसी खाद आपने बखेर के हल चलवा दिया।
3: हाँ,
0: फसल कितनी बड़ी है?
3: फसल बड़ी है कोई दो दो डेढ़ मीटर की।
0: दो डेढ़ मीटर की कब बोई थी? मार्च में? मार्च,
3: हाँ हाँ, ब्योर है, ब्योर।
0: हाँ ब्योर है, बोई कब थी? गेहूं काटने के बाद?
3: हाँ हाँ, गेहूं में ही थी।
0: अच्छा, गेहूं में ही बोई थी।
3: हाँ,
0: तो अब ऐसा है कि जो आपने खाद डाल दी, कूड़ी की खाद डाली है?
3: हाँ, कूड़ी का डाला ही मेरा, गोबर का।
0: अच्छा, अभी मिट्टी नहीं चढ़ाई?
3: ना, मिट्टी चढ़ा दी हल से।
0: अच्छा, हल से मिट्टी चढ़ाई है।
3: हाँ,
0: अच्छा, तो मिट्टी चढ़ा, वो तो ठीक कर दिया आपने जो करा, तो उसमें
3: हाँ,
0: अगर कूड़ कूड़ बिल्कुल बंद हो गए ऊपर से या थोड़े थोड़े वो खाली है बीच में से?
3: ना खाली है, एक एक बिलांत खाली है।
0: तो अब वो खाली नहीं रहना चाहिए, मिट्टी चढ़ाने का तो मतलब ये पूरा भरना चाहिए बीच में से भी। तो अब उसे उसे करोगे नहीं करोगे? अब
3: तो खुदाई कर देंगे दोबारा फिर।
0: खुदाई क्या, उसमें मिट्टी चढ़नी चाहिए, लेकिन अगर खाद डालना चाहते हो आप तो उसमें मिट्टी चढ़ाने से पहले कूड़ों में डाल के उसके बाद मिट्टी चढ़ानी चाहिए।
3: हाँ, कूड़ों में डाल के खाद यही हल चलवा था हमने।
0: अच्छा, वो देसी खाद भी आपने कूड़ों में ही डाला?
3: हाँ हाँ
0: वो और बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा काम किया है।
3: तो अब इसी बात को पूछ रहे हैं कि उसमें ये यूरिया खाद बखेरना चाहिए अब?
0: वो डालना तो पहले ही चाहिए था मिट्टी चढ़ाने से पहले, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, क्योंकि
3: अच्छा,
0: वो मिट्टी में दबना चाहिए ना खाद।
3: हाँ
0: लेकिन आप अगर वो बता रहे हो खाली है तो उस पे अगर डाल के आपको
3: हाँ
0: दोबारा मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी फिर।
3: हाँ चलो कर देंगे, कोई बात ना है।
0: हाँ ठीक
3: ये
0: है,
3: बात
0: ठीक
2: ठीक है घनश्याम जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, वो कि जब बरसात मान लीजिए देर से आती है तो उसमें सिंचाई है, निकाई गुड़ाई है, इसका क्या महत्व होता है?
0: देखिए, सिंचाई और निराई गुड़ाई का तो महत्व है ही है शिवनंदन जी।
2: जी
0: बिना पानी के तो कोई भी फसल होती नहीं है।
2: जी
0: जब पानी की ज़रूरत हो पानी देना ज़रूरी होता है। घास को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर घास नहीं निकालेंगे तो जो हम फर्टिलाइजर डालें वो घास ही ले लेगी, हमारी फसल तो लेगी नहीं।
2: जी
0: और प्रकृति ने एक और प्रबंध किया है कि जो खरपतवार होते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है, वो हमारी फसल से भी पहले ले लेते हैं सारे उर्वरक को और जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो इसलिए फसल अगर हमारी साफ रहेगी और निराई गुड़ाई होती रहेगी और तभी हमारी फसल सही हो पाएगी। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत महत्व है।
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। इस समय हमारे किसान भाई सुन रहे हैं गन्ने की पाठशाला, और आज का हमारा विषय है गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन। हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीतू सिंह जी, जो कि प्रोफेसर हैं कृषि प्रसार अमेठी नोएडा में। तो डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी किसान ने मिट्टी चढ़ाने से पूर्व उर्वरक डाला और मिट्टी चढ़ा दी और उसके तुरंत बाद बरसात हो जाती है, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा?
0: बरसात होने का तो अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि बरसात हुई कितनी है, पूरी तरह से खूड़ के अंदर तक नमी चली गई या नहीं चली गई, अन्यथा हमको पानी लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो मिट्टी चढ़ाई है और अंदर हमने खाद डाला है, हमारा पानी खाद तक पहुंचना चाहिए, उस खाद तक भिगोना चाहिए उसको, तभी वो घुलनशील अवस्था में पहुँचेगा। अगर बारिश इतनी हो गई है कि वो अंदर तक पहुँच गया तो पानी लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमें पानी लगाना
2: और
0: पड़ेगा।
2: नहीं, अगर ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई?
0: देखिए, बहुत ज़्यादा हो गई तो आपने मिट्टी चढ़ाई हुई है तो वो खाद तो बेकार जाएगा नहीं, तो आप उसको थोड़ा, अगर बहुत ज़्यादा मतलब क्या मतलब 1 फुट पानी भर गया तो निकालना पड़ेगा फिर तो वो।
2: हाँ नहीं, वही कह रहे हो कि अगर
0: हाँ,
2: पानी ऐसा है कि एक खेत से बह के दूसरे खेत में जा रहा हो।
0: तो दूसरे खेत में जा रहा हो, अगर अपने में ही जा रहा है, उसमें खाद नहीं लगाया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखियो, नाइट्रोजन तो उसमें पानी के साथ जाएगी जाएगी, उसे कोई
2: जी
0: रोक नहीं सकता। लेकिन
2: जी
0: अपने खेत में कर दें, धान के में कर दें, दूसरे गन्ने के में कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा है।
2: डॉक्टर साहब, ऐसा है कि सारे खेत अपने नहीं होते हैं, एक खेत के पड़ोस में दूसरे का खेत
0: तो पड़ोसी के में कर दे, उसका भला हो जाएगा, बजाय कि उसे अलग अलग डाले।

0: भाई का फोन लेते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते सर जी। हेलो,
0: नमस्ते। हाँ, अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम सुशांत सुशांत है सर।
0: जी सुशांत जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं ओडिशा से बात करता हूँ।
0: तो क्या सवाल पूछना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम गन्ने से संबंधित है?
1: जी, मेरा सवाल है कि डॉक्टर यश त्रेजा सर सर से
0: जी
1: कि वो हिमिक एसिड है,
0: जी
1: उसका एप्लीकेशन मेथड क्या है, मतलब शुगर कैन ड्रॉप के लिए,
0: देखिए,
1: और इसका
0: ह्यूमिक
1: क्या
0: एसिड,
1: बेनिफिट है?
0: हाँ, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप उसका सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो
1: जी
0: वो ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और लेकिन नकली भी आ रहे हैं, उससे सावधान रहना है। तो एक कई प्रकार का आता है, ये बॉल्स भी आते हैं, फ्लेक्स भी आते हैं, इसके पाउडर भी आता है। तो इसको
1: सर,
0: पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं आप, और उसको अगर ज़मीन में डालना है तो आप उसको बुआई के समय डाल सकते हैं। 1 किलो पर एकड़ का बहुत होता है डोज, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, और महंगा भी होता है किसान को, नहीं तो महंगा पड़ेगा।
1: जी सर जी,
0: ठीक है सुशांत जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, डॉक्टर नीतू सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जब हमारे किसान भाई गन्ने की फसल में संतुलित उर्वरक प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो फसल का उत्पादन और बढ़े, उसके लिए क्या कुछ वैज्ञानिक आधुनिक विधियाँ भी ला रहे हैं?
2: जैसे आपने कहा ना, संतुलित उर्वरक
0: प्रयोग के लिए, हाँ
2: प्रयोग के लिए, तो अभी जो रिकमेंडेड हमारा जो डोज़ है संतुलित के लिए, जैसे आपका 150 से लेके 180 केजी
0: जी
2: यूरिया, आपका 60 से 80 केजी के करीब पोटाश, और
0: जी
2: आपका फास्फोरस भी लगभग इसी मात्रा में। तो ये जो हमारा संतुलित है, ऐसी कोई आप जो तकनीकी की बात कर रहे हैं,
0: जी तकनीकी है जिसमें और भी चीज़ें साथ में, आपके जैसे जैविक उर्वरक की बात की,
2: हाँ
0: दूसरे भी उर्वरक उसमें प्रयोग किए जाते हैं, दूसरी भी मतलब जो अनुपात आपने बताया, उसके अलावा कोई और भी अनुपात है कि जिससे उत्पादन दक्षता और बढ़ सके? हाँ,
2: तो आप एनपीके की बात कर रहे हैं कि अन्य इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी,
0: सबकी बात कर
2: सभी
0: रहे
2: की? तो
0: हैं।
2: इसे हम
0: जी
2: एक कह सकते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट,
0: जी
2: है ना। इंटीग्रेटेड में क्या करते हैं कि हम इसमें अपना रसायन उर्वरक यूज़ भी कर रहे हैं और बायो फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम जो आज आप कह रहे हैं नई तकनीकी, यही है जहाँ पे हम इनका समय पे, और आप डोजेस क्या लेंगे और दूसरा एप्लीकेशन कैसा है इसका, कब कर रहे हैं आप, है ना, इसका
0: जी
2: बहुत महत्व है
0: जी जी
2: उसके ईल्ड को बढ़ाने में। गलत
0: जी
2: समय पे अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो समय पे करें, और एक उसकी जो मात्रा है वो सुनिश्चित हो कि आपने अपना मृदा का जो सॉइल टेस्टिंग के आधार पे करके आपने किया, यही साइंटिफिक। क्योंकि सॉइल में जो मृदा में हमारे जो तत्व है ना, अगर
0: जी
2: आपके पहले से ही हैं और आप उसमें और डाल देंगे तो वो उसका विपरीत प्रभाव भी चला जाता है। तो उसके आधार पे करें।
0: तो डॉक्टर तेवतिया जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने से उन्हें अच्छा उत्पादन मिले, क्योंकि अब इस समय हमारे किसान भाई गन्ने की जो आखिरी उर्वरक की डोज कुछ तो दे चुके हैं, कुछ देंगे, उसके बाद मिट्टी चढ़ाएंगे, तो कौन कौन सी कृषि क्रियाएं और करें जिससे उन्हें उत्पादन अच्छा मिले, क्या आप सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए, अभी एक तो जो मिट्टी चढ़ाने से पहले जो उर्वरक डाल दें, वो जैसा कि हमने बताया,
0: जी
1: उसके बाद में नाइट्रोजन अप्लाई ना करें, खरपतवारों का नियंत्रण रखें, अगर रोग और कीट लगते हैं तो उनका नियंत्रण करें, बंधाई करें अच्छी से, वो गिरने ना पाए, नहीं बंधाई हो
0: हाँ,
1: नहीं
0: गन्ना
1: की तो गिर जाएगा।
0: जी
1: बंधाई उसके लिए मिट्टी चढ़ाते समय ये ध्यान रखें, दोनों तरफ से उसको मिट्टी को दबा देंगे तो गिरना और भी कम हो जाएगा, गिरने की संभावना कम हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी फसल पर रोज़ाना खेत पे जाएं, रोज़ाना उसका निरीक्षण करें, कोई रोग कीट या कुछ वो दिखाई दे एबनॉर्मल चीज़ तो उसका तुरंत निदान करें, और गन्ने की पाठशाला सुनते रहें। हाँ, क्योंकि हम महीने में 2 बार उन्हें समय समय पर बताते रहते हैं, तो अगर उनसे कोई भूल हो जाएगी तो हम उसको

0: जरूर उसका निदान बताएंगे। दूसरा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था शिवनंदन जी, आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं और जैविक खाद की भी बात करी है
1: जी।
0: तो देखिए ये इनको मैं तीन कैटेगरी में बांटता हूँ, एक तो रासायनिक उर्वरक हो गए, एक जीवाणु खाद हो गया, एक जैविक खाद हो गया।
1: जी
0: जीवाणु खाद होते हैं जिसको बायो फर्टिलाइजर, जिनमें जो वो होते हैं जीवाणु होते हैं
1: जी,
0: जैसे फास्फोट सोलविलिंग बैक्टीरिया हो गया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक मोबिलाइजिंग, अभी तो सबके बोरोन के भी आ गए, सभी के बैक्टीरिया आ गए।
1: जी
0: तो उसके बाद में ये जो जैविक खाद है कूड़ी का खाद होता है। देखिए जब से मैकेनाइजेशन आई है हमारे गन्ने में, तब से हमारे बैल पशु कम हो गए और खाद की उपलब्धता कम हो गई। तो
1: जी डॉक्टर
0: किसान
1: साहब,
0: भाइयों से ये कहूँगा उसको खाद को बराबर डालते रहें, जितना डालोगे उतना ही फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल फायदा होगा। डॉक्टर नीतू सिंह जी, डॉक्टर तेवतिया जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों को राम।
2: आज गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत आप सुन रहे थे गन्ने की फसल में मानसून पूर्व उर्वरक प्रबंधन विषय पर विशेष जानकारी। आज के हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीतू सिंह और जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ थे डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया।
3: बिल्कुल, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटास लिमिटेड।
4: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद।
5: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर, शीघ्र बुक करें।
2: इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सुनने वाले भाइयों बहनों का हमारा राम राम। प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारसा और कार्यक्रम संयोजक थे शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल।

अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल आवाज़ जगजीत सिंह की, और इस प्रोग्राम के तहत आइए सुनते हैं दूसरी गज़ल आवाज़ चित्रा सिंह की।

0: चित्रा सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये खूबसूरत गज़ल। अब से थोड़ी ही देर में आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: TLI है ना।
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी अपराध मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली मजिस्ट्रेट कार्यालय में सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में आगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के सुव्यवस्थित, समन्वित और संतुलित विकास को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अंतर्राष्ट्रीय

0: आतंकी अपराध मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में 7 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते अवैध हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण में शामिल थे, और बाद में इन्हें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आपूर्ति करते थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 5 अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस, आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लेनदेन से जुड़े कई बैंक खातों के विवरण भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए दिल्ली NCR में कई संभावित आतंकी घटनाओं को समय रहते विफल कर दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली मजिस्ट्रेट कार्यालय में सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यहाँ कंप्यूटर सुविधाएं, करियर परामर्श सत्र, कौशल विकास कार्यक्रम, विशेषज्ञ व्याख्यान और मार्गदर्शन कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर में आने वाले नागरिकों के लिए AC वेटिंग रूम, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, समाचार पत्र, पुस्तकें और पत्रिकाओं सहित रीडिंग कॉर्नर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और अन्य आगंतुकों को अपनी बारी की प्रतीक्षा के दौरान व्यवस्थित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में इसे प्रतीक्षालय तक सीमित न रखकर इसे युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एक ज्ञान और कौशल विकास केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहां कानून, प्रशासन, करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर भी स्थापित किए जाएंगे। इससे युवाओं को नई जानकारी, कौशल विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्राप्त होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज का नया भारत संकल्प और गति के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, बोगीबील ब्रिज और चेनाब ब्रिज जैसी परियोजनाएं देश की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग क्षमता और बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए की गई पहल ने कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित किए हैं। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 पर पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रगति पथ यात्रा के दौरान लोगों को इन उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि जल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसका विस्तार करना पर्यावरण अनुकूल राजधानी के निर्माण के लिए आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि इस प्रकार की मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणालियां भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर जल भराव की समस्या को कम करने तथा दिल्ली में शहरी जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समीक्षा के दौरान श्री संधू ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष से प्रणाली की संरचना, परिचालन दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता संबंधी विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने आगामी मॉनसून को देखते हुए शहर में ऐसे पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से अपनाने और उनका विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: तरनजीत सिंह संधू ने खान मार्केट में चल रहे सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल।

0: उन्होंने कहा कि खान मार्केट जैसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक और वाणिज्यिक स्थलों की उन्नति, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, यातायात और पैदल यात्री प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा आगंतुकों, पर्यटकों और स्थानीय व्यापारियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के सुव्यवस्थित, समन्वित और संतुलित विकास को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत करने, क्षेत्रीय आवागमन तथा संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और NCR से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय ने आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड राजधानी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ये नागरिकों की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ यमुना, गंगा और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा कि अल नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट।
1: समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, ताकि मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कल नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना, स्वयं सेवकों की सहभागिता बढ़ाना और देश भर में नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहलों का भी अनावरण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान देश भर में जागरूकता और सामुदायिक जन सहभागिता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जाएगा। इनमें सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान, जागरूकता रैलियां, साइकिल रैलियां, युवा नेतृत्व वाले अभियान, पोस्ट निर्माण, निबंध प्रतियोगिताएं, वेबिनार, विशेषज्ञों के साथ संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल है। सुपर्णा और शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की मीडिया प्रभारी और प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा है कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर एक समग्र समाधान प्रदान करता है। आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में बुजुर्ग आबादी में वृद्धि हो रही है, जिससे स्वस्थ वृद्धावस्था एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य प्राथमिकता बन गई है। डॉक्टर रीमा ने कहा कि

0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकी अपराध मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली मजिस्ट्रेट कार्यालय में सिटीजन लाउंज कम न्यू एज लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की दौड़ में आगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सत्य मार्ग पर स्थापित मॉड्यूलर वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के सुव्यवस्थित विकास को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक का आयोजन। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका, और इस गीत मालिका की माला को पिरोने आए हैं तलत और
2: तरन्नुम।
1: बिल्कुल। और तरन्नुम मालिका यानी कि जहाँ तक मैं समझ रही हूँ माला, और माला में अगर अलग अलग मोती हों तो क्या ही बात है।
2: बिल्कुल, जैसे हर मोती का अपना एक अलग किरदार होता है, पूरी एक जो मोतियों की एक लड़ी होती है वो बनकर तैयार होती है मालिका। तो हमारे प्रोग्राम में भी ऐसी कुछ ख़ास चुनिंदा नगमे लेकर हम आपके सामने आज पेश करेंगे। बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने,
1: बहुत बहुत ऐसे गाने सेलेक्ट किए हैं आपने और मैंने कि लोग डांस करने पे मजबूर हो जाएंगे। कोशिश यही है
2: क्योंकि ये जो वक्त होता है, शाम का वक्त होता है, वो थोड़ा थकावट भरा भी होता है, लेकिन अगर ऐसे मस्ती वाले
1: काम बड़ा ज्यादा करना होता है, एनर्जी चाहिए
2: एनर्जी चाहिए। तो चलिए
1: बस एनर्जी हम
2: शुरुआत करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: भाई जून ने तो वाकई में ओए ओए हुए करवा दी। जून ने हमारी जून ही बदल के रख दी तरन्नुम।
1: बिल्कुल, वो तो
0: गर्मी
1: गर्मी इतनी है तलत, और शुक्र करो कि आज ही कुछ मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि खुशगवार मौसम नजर आने लगा, हल्की हल्की हल्की हल्की बारिश।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पता है ये खासियत सिर्फ हमारे देश में है, हमारे भारत देश में।
1: बिल्कुल हाँ, और कह सकते हैं ना कि मौसम की अगर बात करें तो मौसम, वैसे तो हम चार मौसम कहते हैं, बदलते मौसम की बात करें तो चार मौसम होते हैं, लेकिन मौसम भी छह होते हैं भारत में।
0: जी जी जी
1: तो हम अपने श्रोताओं को बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कौन कौन से मौसम होते हैं, क्योंकि अक्सर हम बात सिर्फ सर्दी गर्मी बरसात और बसंत की ही करते हैं।
0: बिल्कुल, आप बताइए आपके पास क्या है।
1: जी हाँ, ये छह मौसम होते हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, वर्षा ऋतु यानी बारिश, शरद ऋतु यानी कि इसे हम पतझड़ भी कहते हैं, और हेमंत ऋतु, और फिर शिशिर ऋतु यानी कि सर्दी।
0: मतलब हम हर मौसम के आगमन की भी बदलाव को महसूस करते हैं कि कब एक मौसम दूसरे मौसम में तब्दील हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, तब्दील हो रहा है,
1: जी
0: बदल रहा है, तो वो भी एक अलग
1: अलग
0: एहसास
1: एहसास
0: है।
1: लिए होता है, अलग मौसम अलग मिजाज लिए
0: और
1: होता
0: भारत
1: है।
0: की बात है और मेड इन इंडिया तो आजकल पूरे विश्व के सर चढ़कर बोल रहा है, जिसका जादू तो क्यों ना हम सुन लें गीत मालिका में मेड इन इंडिया।
1: Wicked! Come again, come again!

यहाँ हर एक की पसंद जो है मेड इन इंडिया है. आप कहीं पे भी जाइए, बस इंडिया के जो गीत हैं यानी बॉलीवुड फिल्म सॉन्ग्स जो हैं वो हमें

0: शाह सुने जाते हैं, हर कहीं सुने जाते हैं।
1: और तरन्नुम ना सिर्फ गीत संगीत बल्कि यहाँ के खाने, यहाँ की बातें, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ का काम, यहाँ के उद्योग, यहाँ की बहुत सारी, और आजकल तो चर्चा में है बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि इंडिया का जो एआई है लोगों को काफ़ी भा रहा है, हमारी तकनीक लोगों को बहुत पसंद आ रही है।
0: तो चलो इसी बात पर बजाएं ताली।
1: बिल्कुल, और दे ताली है फिल्म वीर से।

0: और बात अगर तालियों की हो जाए फिर उसके बाद मज़ा आता है, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं, तरन्नुम, और बच्चे घर पे हैं, कोई दादी के घर जा रहा है, कोई नानी के घर जा रहा है, कोई पिया के करीब आ रहा है, कोई पिया से दूर जा रहा है, और ये जो वक्त है कुछ बातें याद करने के लिए भी होता है।
1: बिल्कुल। और जो तुमने गाना अगला जो निकाल के रखा
0: जी
1: है
0: जी
1: वो ये
0: जी
1: मुझे याद दिलाता है अपने पुराने वक्त में। मतलब मैं थोड़ा जब बच्ची थी लेकिन डांस करने का बहुत मन करता था, और घर में ऐसे गानों को सुनकर बस मेरा मन करता, मैं थिरकती रहूं,
0: बिल्कुल
1: नाचती
0: बिल्कुल
1: रहूं।
0: बिल्कुल। और क्योंकि बात मैंने छुट्टियों से भी शुरू की है, गाना देख के आप जिस तरह से ललचा गई हैं सुनने के लिए, लेकिन बात ये भी है तरन्नुम, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, और जब बड़े हो जाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैं महसूस कर रही हूँ 2 महीने की छुट्टियों में, कि हम नानी के घर नहीं जाते, हम दादी के घर नहीं जाते। ये
1: हाँ,
0: सबसे बड़ा
1: क्योंकि
0: डिसएडवांटेज है बड़े
1: अब
0: हो
1: जो
0: जाने का।
1: है बड़े आपका जो कह सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो या फिर ऑफिस जाना हो या फिर काम का प्रेशर हो, बच्चों को उनके पेरेंट्स इतना वक्त दे ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहीं दूर शहर में या कहीं दूर जो है वो बच्चों को लेके जा भी नहीं पाते हैं।
0: वो बात भी है, लेकिन आप बताइए, आप कितने साल पहले गई थी अपनी नानी के घर?
1: अरे तलत क्या बताऊं, कि अफसोस की बात है कि मेरी नानी नहीं रही, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग भी तो हैं। मैं 6 महीने में सोचती हूँ कि बस मिलाऊं सबसे, वो जो
0: चलिए, तो
1: मोहब्बत है वो
0: अच्छी बात है।
1: बरकरार रहे, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और गीत मालिका की हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उसे हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो ये भी एक माला का मोती ही है, याद।
1: बिल्कुल।

0: तो तलत बताओ अब क्या करोगी?
1: चोरी चोरी
0: किसकी चोरी भाई?
1: चोरी यहाँ इस वक्त तो खैर किसी चीज़ की चोरी नहीं कर सकते, वक्त की चोरी करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर सकती, क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं है, उसे चुरा कोई नहीं सकता। बस
0: जी
1: चुरा हम उसको इस सूरत में सकते हैं कि उसे खूबसूरती के साथ और अच्छे मन के साथ उसे जिया जाए।
0: बिल्कुल, और इसका यही तरीका है कि खुश रहें और प्यारे प्यारे ये जो गीत हम सुना रहे हैं गीत मालिका में, ये भी सुनते रहिए, है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चोरी चोरी से बात हुई तो अब क्यों ना एक गाना सुन लें, चोरी चोरी।
0: जी।

0: वाकई ये जो चोरी होती है बहुत ही प्यारी होती है। कहते हैं ना कि किसी की प्यार की जो चाहत होती है वो इस तरह से पूरी होती है कि दिल जो है वो
1: चुरा लिया
0: चुरा
1: जाता
0: लिया
1: है।
0: जाता है, और उसमें भी अपना एक अलग मज़ा होता है ना।
1: लेकिन तरन्नुम में कल मुझे यह एहसास हुआ कि मोहब्बत जो है ना वो ज़रा सज़ा भी है। मज़ा तो अपनी जगह है लेकिन मोहब्बत में सज़ा भी है।
0: अपने अपने मिजाज हैं, अगर मोहब्बत में अगर झगड़े हैं, जुदाई हैं, तो उसके भी अपने अलग मज़े होते हैं। हमें वो मज़े नहीं आते,
1: हाँ,
0: अलग
1: ये
0: बात
1: देखने का नज़रिया है
0: है।
1: कि आप उस सज़ा को भी मज़ा
0: मज़े ले
1: में आप
0: लें।
1: महसूस करिए कि हाँ भाई उसके अपने अलग रंगों के मज़े हैं।
0: जी
1: तो खैर अगली तरफ बढ़ते हैं, और बहुत खूबसूरत एक इंडी पॉप सॉन्ग है, अगर इजाज़त है तो मैं प्ले करूँ।
0: बिल्कुल।
2: Pichak dum dum, pichak dum, pichak dum dum, pichak dum.

0: आगे जाने।
1: बिल्कुल सही बात है तलत की, आगे जाने राम क्या होगा। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, अपने भविष्य का कुछ पता नहीं होता कि अगले पल क्या होना है, और बस हर पल को अच्छे से जीना चाहिए, क्यों।
2: बिल्कुल सही कहा, और जो हर वक्त जो हर पल गुजर रहा है उसे गनीमत जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पल आपको तकलीफ दे लग रहा हो, परेशानी भरा लग रहा हो, लेकिन थोड़ा सा इसे हम नेगेटिव भी मैं कह सकूँगी, हो सकता है कि इससे अगला पल जो हो वाकई बहुत अजीब हो
1: बिल्कुल
2: और ऐसा हो कि वो पिछले से ज़्यादा सुकून वाला न लग कर बहुत तकलीफ दे लगे और वो परेशानी आसान लगे जो इससे पहले आप झेल चुके हैं।
1: तो हर पल तैयार रहना
2: बिल्कुल
1: चाहिए,
2: बिल्कुल
1: हर परेशानी
2: तैयार।
1: को अच्छे से झेलने का। अच्छे से झेलने का कहने का मतलब है कि आप अगर दिल दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखकर और खुश मिजाज रहकर हर पल को जिए तो आगे की ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी।
2: जी, और वो वक्त आपकी यादगार बन जाएंगे कि जब आप कभी कभी किसी मुश्किल में परेशानी में होंगे तो आप अपने वो सुहाने पल, वो सुहाने लम्हे आप याद कर पाएंगे और एक जोश आएगा कि फिर से वो वक्त आ सकता है। और तरन्नुम, अब जो वक्त है वो हमसे कह रहा है कि जल्दी से हमें टाटा कह देना चाहिए, लेकिन लेकिन लेकिन इतनी जल्दी कैसे, एक गीत तो सुनना
1: एक
2: पड़ेगा।
1: गीत बिल्कुल, और कुछ अच्छा सा गीत सुनोगे, बस दिल कहे कि मैं बस नाच उठूं, खुश हो जाऊं।
2: बिल्कुल, और देखिए ये जो गीत है ये फिल्म ओए लक्की से है और इस गीत को गाया जो है वो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी और ये जुगनी है, और जुगनी जब कभी आप सुनेंगे किसी की भी आवाज़ में सुनेंगे तो आपको ज़िंदगी की ना एक नई रवानी महसूस होगी और जुगनी वाकई में आप उसको उस वक्त जी जाएंगे। जुगनी एक प्रथा है तरन्नुम गाने की, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये गीत हम सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पड़ाव पर।
1: आखिरी गीत है, लेकिन इस आखिरी गीत के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से सोचिए कि आप जो है कुछ ऐसे जिए कि आपका हर पल बहुत खुशमिजाजी वाला हो।
2: बिल्कुल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और अब समय होने वाला है 8:45। आप सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज़। 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का। कृपया अब समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए जो है समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन

0: सरकारी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
5: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
4: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
3: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
6: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत

0: against terrorism.
1: Last year, on the intervening night of 6th and 7th of May, Operation Sindoor sent a clear message to the world that India does not seek war, but terrorism will not be tolerated. Operation Sindoor drew a new red line that if terrorism is a state policy, it will be met with a direct and forceful response. Targeting strongholds of Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Hizbul Mujahideen, India successfully destroyed 9 major terrorist launch pads located in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. More than 100 terrorists were killed in this operation. There was widespread global support, with numerous global leaders extending their support to India. Talking to Akashvani News, Lieutenant General KJS Dhillon, retired, who was the 15th Corps commander in Jammu and Kashmir, praised the intelligence of government agencies during Operation Sindoor.
2: The intelligence which was gathered over the 15 days period, or the gap in between Pahalgam and terror strikes on 6th-7th May 2025, intelligence was so accurate, acquired by various means, collated, synthesized and then acted upon.
1: Meanwhile, to secure its land borders spanning over 15,000 kilometers across 7 neighboring nations, India today conducts its effective foreign policy guided by the principle of nation first, while simultaneously advancing towards self-reliance in the defense sector. Talking to Akashvani News, Professor Anup Kumar Dey from Silchar said open border was a huge issue in Assam and Narendra Modi government has worked steadfastly to address this issue.
3: Pradhan Mantri Narendra Modi ji.
4: Since the Prime Minister Narendra Modi took charge, he highlighted this biggest issue of Assam. And today, fencing has been completed in most of the areas. Because of that, not only infiltration from there has been stopped, but also the illegal trade that used to happen from there has been cut off.
1: NDA government remains resolute and deeply committed to a policy of zero tolerance against terrorism. With Anand Kumar, Suparna Sekia, Akashvani News, Delhi.
0: Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupinder Yadav today held a detailed review along with Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan on crop residue management. The meeting also discussed prevention of stubble burning in the context of air quality management in Delhi NCR and adjoining areas. In a social media post, the minister said that the review was focused on ways and means to efficiently and effectively manage and monitor and crop residue in a bid to combat air pollution in Delhi NCR. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction, and sustainable development initiatives. According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the rules of implementation were adopted on 8th of June this year, following the Memorandum of Cooperation signed between the two countries last year for the joint crediting mechanism. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the MOU reached between the US and Iran. US has not clarified whether Lebanon is part of the final agreement. Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu yesterday described the agreement as US President Donald Trump's decision, noting that Israel had its own priorities and would remain in a buffer zone in Lebanon as long as necessary. India Meteorological Department, IMD, has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh for tomorrow. Similar weather conditions are expected over Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Andaman and Nicobar Islands. The Met Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Fencing Association of India, FAI, has officially announced the Indian senior team for the 26th Senior Asian Fencing Championships 2026, which will be held in Delhi from 19th June to 24th of June. Marking a historic milestone, India will host the prestigious continental event for the first time. Over 30 countries and more than 400 top athletes will participate in this high-stakes competition. India's 24-member squad comprises 12 women and 12 men and will be led by CA Bhavani Devi, India's first and only fencing Olympian. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in a Group 1 clash at New Jersey in United States tonight. In another fixture, Norway will face Iraq in a Group 1 encounter at Boston Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi participates in G7 summit in Evian, France. Also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gurkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. That's all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर एवियां में G7 सरबराह इजलास में शिरकत की। वह आज रात कनाडा और बरतानिया के वज़राए आजम नीज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ बाहमी मीटिंग भी करेंगे। वो कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा खरीफ सीज़न के लिए तैयारियों का जायज़ा लेने की गरज से आला सतह की एक मीटिंग की। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफ़ल्स को जल्द ही नई ज़िंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1,000 से ज़्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। भारत और जापान ने जहरीली गैस के अखराज में कमी करने और पायदार तरक्याती इकदाम से मुतालिक तआवुन को फ़रोग देने की गरज से पेरिस माहदे के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मेकानिज़म के लिए नफाज के जाबते को अपनाया है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ जंग ख़त्म करने के माहदे में इसराइल को लबनान से अपनी फ़ौजें भी वापस बुलानी होंगी। IMD ने शुमाली भारत में कल के लिए बिजली चमकने और तुंद हवाओं के साथ गरज चमक की पेशगोई की है। और फेंसिंग यानी शमशेर जनी की सीनियर एशियाई चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के शहर एवियां में जारी G7 समिट में एक आला सतह के वर्किंग इजलास में हिस्सा लिया। इस इजलास का मौजू था नई शराकत दारियां और बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम की तामीर नौ का फरोग। इस इजलास में G7 मुल्कों के लीडर, शराकत दार ममालिक और आलमी बैंक और अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक के सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से वजीर आजम मोदी और शरीक होने वाले दीगर लीडरों के बाकायदा खैर मकदम के फौरन बाद ये मीटिंग शुरू हुई। एक ग्रुप फोटोग्राफ के बाद वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी की और लिखा कि भारत और G7 ममालिक आलमी खुशहाली, पायदारियत और इंसानों की फलाह को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे अंकित कुमार, जो वज़ीर आज़म के G7 के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके हमराह गए हुए हैं, ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ कराने की गरज से एविया से ये रिपोर्ट भेजी है।
6: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। उर्दू खबरों के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
5: इससे कबल आज दिन में वजीर आजम कल शुरू हुए समिट में शिरकत के लिए दो रोजा दौरे पर एविया पहुंचे। अपनी आमद के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने लिखा कि वो एक کہ وہ اہم عالمی معاملات پر دنیا کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت اور تبادلہ خیال

0: तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के खिलाफ नरेंद्र मोदी हुकूमत की कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता, लेकिन वो दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लाइन खींच दी कि अगर दहशतगर्दी किसी की स्टेट पॉलिसी है तो उसे एक बराह रास्त और क़ुव्वत से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। इधर 7 पड़ोसी मुल्कों तक फैली 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी ज़मीनी सरहदों के तहफ़ के लिए आज भारत मुल्क को अवलियत देने के उसूल की रहनुमाई में अपनी मुअस्सर खारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही वो दिफा के शोबे में खुद कफील होने की जानिब पेशरफ्त कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने कहा कि आसाम में खुली सरहद एक बड़ा मसला था और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए तेज़ी के साथ काम किया है। एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई पूरी तरह पुरअज़्म है। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
1: ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहदे की दफा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल आवरी के जवाबित को इख्तियार किया है ताकि आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के मुतालिक तआवुन को फ़रोग दिया जा सके। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत के मुताबिक अमल आवरी के जवाबित को क्रेडिटिंग के मुश्तरका मैकेनिज्म के लिए पिछले बरस दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए तआवुन के मुफाहमत नामे के बाद इस बरस 8 जून को इख्तियार किया गया। ये मैकेनिज्म तख़फीफ के प्रोजेक्टों में शराकत दारी का एक खाका फराहम करता है जिसकी रूह से भारत में जहरीली गैसों के अखराज में तख़फीफ या कतई ख़त्म किए जाने की बात की गई है, साथ ही पायदार तरक्की के लिए तआवुन की बात भी की गई है। ईरान ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के मुआहदे के तहत इसराइल को लिबनान से बाहर निकलना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जनूबी लिबनान में इसराइल की जारी मौजूदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाए मुफाहमत नामे की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने वजाहत नहीं की है कि आया लिबनान कतई मुआहदे का हिस्सा है या नहीं। इधर इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कल मुआहदे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला करार दिया था और कहा था कि इसराइल की अपनी तरजीहात हैं और वो जब तक ज़रूरी होगा उस वक्त तक लिबनान में एक बफर जोन में रहेगा। नीट UG 2026 का दोबारा इम्तहान 21 जून को होने वाला है और इससे कब सरकार ने ऑनलाइन मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर इस महीने की 22 तारीख तक बंदिशें आयद की हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक बयान में इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म को यह हिदायत भी दी गई है कि वो इस महीने की 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सहूलत को गैर फ़ाल बनाए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने पेशगोई की है कि कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरज चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह के मौसमी हालात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार जजाइर में भी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल ज़ैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में शुमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के बाद हिस्सों में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। भारत की फेंसिंग एसोसिएशन FAI ने शमशेर जनी की 26वीं सीनियर एशियाई चैम्पियनशिप 2026 के लिए भारत की सीनियर टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये चैम्पियनशिप 19 से 24 जून तक दिल्ली में मुनक़िद होगी। भारत इस बावकार कॉन्टीनेंटल मुकाबले की

0: बिलीव मी वॉज अ घास्टली ट्रेजेडी, बट देर वर वेरियस मेनी अदर सच इंसिडेंट्स इन द रूरल एरियाज वेर यंग गर्ल्स वेर पिक्ड अप. यू हैव सौंदेश खाली इंसिडेंट वेर वुमेन वेर अब्यूज्ड, सेक्शुअली अब्यूज्ड इन पार्टी ऑफिसेज. ऑल द डिटेल्स विच आर नाउ कमिंग अप, कमिंग आउट अबाउट स्टूडेंट यूनियन ऑफिसेज, दैट दोज वेर एक्चुअली हाउसेज ऑफ इलिसिट प्लेजर. सो दिस इज द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर यू हैड पुट इन टू प्लेस टू स्टे इन पावर. Obviously, people won't accept.
1: So, Kanchan ji, going forward, West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has now announced a series of investigations. You know, he has set up committees to look into excesses across the spectrum. One is what you just said, and also the extortion rackets, the cut money rackets that were going on. That will help.
0: It is important that there should be fair investigation, fair prosecution, and fair justice. Because अगर आपने जो जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं, ये अन्याय किया है, इनको अगर सजा नहीं मिलता है, इफ दे आर नॉट पनिश्ड, देन टुमारो यू विल फाइंड अनदर सेट ऑफ एक्सप्लॉयटर्स कमिंग इनटू प्ले. सो ये जरूरी है. दूसरी बात जो है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिटेल्स अब उभर के आ रही हैं, किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, किस किस्म का तोलाबाजी हो रहा, किस किस्म का कट मनी. यू सी, दीज आर ऑल थ्री थिंग्स. तोलाबाजी इज कोई अगर रेड़ी भी लगाता है, ठेला लगाता है, उसका दिन में 100 रुपए का, या कोई ऑटो चलाता है तो उसका दिन में 100 रुपए का रोजगार होता है, तो आप उससे जाकर 50 रुपए उगा लीजिएगा. दैट इज तोलाबाजी. कट मनी है कि अगर कोई काम हो रहा है, सरकार काम करवा रही है, पंचायत का काम है, कुछ है, जो भी है, उसमें जो ठेका जिसको मिल रहा है, रास्ता बनाने का, ड्रेन बनाने का, टैप लगाने का, आप उससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उसका एक परसेंटेज आप उससे निकाल लीजिएगा, रंगदारी टैक्स जिसे कहते थे. सो दैट वाज कट मनी. एंड देन यू हैड सिंडिकेट्स. आप घर बना रहे हैं तो आपको अपना ईंटा, बालू, सीमेंट, लोहा पार्टी के लोगों से खरीदना पड़ेगा और उन्हीं के रेट पर खरीदना पड़ेगा. उनका जो ब्रांड है, उनका जो भी है, वही लेना पड़ेगा. आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. या आप अपना घर बेच रहे हैं, समझिए आपके पास मकान है जिसका वैल्यू 10 करोड़ है, वो लोग आकर बोलेंगे, सिंडिकेट कहेगी जी ये मकान हम लोग तय करेंगे, आप कितने में बेचोगे, किसको बेचोगे, और 1 करोड़ का बिकवाएंगे, बाकी 9 करोड़ से वो लोग आधा 4.5 करोड़ अपने जेब में ले लेंगे.
1: So an absolutely exploitative system.
0: It was not a government. It was a monumental, क्या कहें? It was a factory of corruption. It was an industry of corruption. It was not a government.
1: एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. अपने विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने May 4 को एक बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो गोल्डन एज जब थी, तो 3 भाग हमारे देश के उस गोल्डन एज के पिलर्स थे, अंग, बंग और कलिंग. तो अंग मतलब बिहार पहले भाजपा की विक्ट्री में आ चुका था, उसके बाद उड़ीसा भाजपा जीत चुकी थी, और अब बंगाल की बारी थी, वो अब May 4 को रिजल्ट में हो गया. तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है तो ये 3 भागों को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि ये पिछड़ गए हैं भारत की विकास यात्रा में.
0: ये बात सही है. और अंग बंग कलिंग जो आप कह रहे हैं, बट उसमें आप असम को भी जोड़िए, जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी जोड़िए. और जब तक ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ईस्ट की इकोनॉमिक कहानी एक कॉम्पिटिटिव स्टोरी नहीं बनेगी, तब तक भारत अपने आप को विकसित भारत नहीं कह पाएगा. अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, वेस्ट इंडिया काफी डेवलप्ड है, साउथ इंडिया भी काफी डेवलप्ड है, ईस्ट इंडिया बस एक ही जगह रह जाता है जहां पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हो पाया. मिडिल इंडिया, आप अगर मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी स्टोरी है, बीमारू प्रदेश से आज कहां पहुंच गई है. अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, नया प्रदेश है और इतनी डिप्राइव्ड जोन थी कि उसको अलग स्टेट बनाना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ कहाँ पहुंच गया, और वेस्ट बंगाल वहीं का वहीं पड़ा रह गया. तो हमें आगे का देखना पड़ेगा. एंड वेस्ट बंगाल कैनॉट जस्ट बी अ पोटैटो इकोनॉमी. That we produce the country's most largest amount of potatoes.
1: Like you heard Kanchan Gupta ji, that the destiny of India is inextricably linked to the destiny of Bengal, because you would recall that it was from Bengal that the British also

0: You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: और अब से कुछ ही देर बाद सुनेंगे आप समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई जिम्मेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता अंकित कुमार की एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है।
2: शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह के दौरान कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है। इकाई ने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से संचालित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मौसम विभाग ने कल उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में सुनिए मधुमिता बोस की गाए कुछ गजलें।

कार्यक्रम गुलदस्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मधुमिता बोस की गाए कुछ गजलें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। लीजिए प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सलीम कुमार का सितार वादन राग जोगेश्वरी। तबले पर संगत दी है अमान अली खान ने। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जी हाँ, आपकी फरमाइश इस प्रोग्राम को लेकर मैं हूँ आज आपके साथ तरन्नुम। जहाँ होंगी बहुत प्यार भरी बातें, आपके मैसेजेस और ये खूबसूरत नगमे जो इस प्रोग्राम का एक अलग हिस्सा है। कह सकते हैं कि बहुत ही चुनिंदा गाने आपके लिए लेकर हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लेकर आएं, और साथ ही साथ आप भी हमें फरमाइश करते हैं, यह हमें बहुत अच्छा लगता है। और आइए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं मुकेश की आवाज़ से।

तो मुकेश के इस खूबसूरत आवाज़ में, ये खूबसूरत सा जो गीत आप सुन रहे थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। वाकई दोस्तों, जब कोई साथी मिल जाता है एक सफ़र पर, साथ चलने के लिए हम सफ़र मिल जाता है, तो ज़िंदगी के उस पड़ाव तक, उस मंजिल तक पहुंचना जो है आसान हो जाता है, क्योंकि दो राहें हो जाती हैं लेकिन मंजिल एक होती है। और ये राहें कभी आकर एक होकर साथ चलने का वादा करती हैं, मोहब्बत में रहने का वादा करती हैं, ज़िंदगी में साथ निभाने का वादा करती है। उनकी हर पसंद नापसंद एक हो जाती है, क्योंकि दिल के जज्बात जो हैं वो जुड़ जाते हैं। और ऐसे ही जज्बात कुछ जुड़े हैं आपके हमारे साथ, जहाँ आप इतने प्यार से हमें मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, और आप की जो फरमाइश है उस फरमाइश को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हम जल्दी से उन लोगों के नाम भी ले लेते हैं जो बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने नाम सुनने का अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम में। जी हाँ, छत्रपति संभाजी नगर से हमें मेल किया है राजेश सावले पाटिल ने, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती श्री शीतल राजेश का हमें मेल आया है, और चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने हमें मेल किया है, और इन्होंने गीत की फरमाइश भी की है, और कोशिश करेंगे कि इनके गीत को ज़रूर सुनवाएं। सेक्टर 67 मोहल्ला चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का हमें मैसेज मिला है। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने हमें मेल किया है। अनारकली बाज़ार जगराव से हमें मैसेज आया है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गाविया मल्होत्रा का, और इनके साथ भाई सुच्चा सिंह पाठक का भी हमें मेल आया है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमें मैसेज किया है पीएस नाहौकर, निर्मला नाहौकर, विशाल नाहौकर ने, और इसी के साथ मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुहर्रेकर ने हमें मेल किया है। और ऐसे ही बहुत सारे मेल हमारे पास मिले हैं, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनके नामों को ज़रूर शामिल करें। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये अगला गीत।

सपना कोई भी हो, अगर मंजिल तक पहुंचने का जो जज्बा आपके दिल में है, अगर वो पैदा हो चुका है, तो समझिए कि मंजिल तक पहुंचने में कोई भी कमी नहीं रहेगी और आप जो चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होगा। और ये बात आप ज़िंदगी के हल फलसफे से जोड़कर भी देख सकते हैं। ज़िंदगी में उन तमाम मुश्किलों का जो आप सामना कर रहे हैं, आपको अंधेरा लग रहा है हर और चारों तरफ कोई भी दिशा नहीं दिख रही जो आपकी मंजिल तक बढ़ने का एक नया रास्ता आपको दिखाई दे, नज़र आने लगे, ऐसे में बस आंख बंद करके अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश आप करिए। और जहन में अगर उस मंजिल तक पहुंचने का जो जज्बा है वो आपके दिल में पैदा होगा, तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे, अपने आप उस मंजिल तक आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। और कुछ ऐसा ही है जब आप किसी हमसफ़र की तलाश करते हैं और साथ चलने के लिए आप दोनों जो हैं एक ही रास्ते पर चलते हैं, तो ये ज़िंदगी का सफ़र जो है आपके लिए बन जाता है एक खूबसूरत मंजिल। हर पल, हर सफ़र, हर रास्ता आपको मंजिल नज़र आने लगेगा। इसी खूबसूरत बातों के साथ हम उन लोगों के नाम भी ले लेते हैं जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमें मैसेज किया है। और मैसेज आया है शास्त्री नगर बीट शहर से, किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल का। माल टेकड़ी अमरावती से हमें मैसेज किया है प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे और श्रद्धा ढेकरे ने। और अगला जो मैसेज है वो है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में कोई गीत सुनाने की दरकार की है, ज़रूर पूरी की जाएगी इंशाल्लाह। और नाम जो है उनका है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी और बेबी वामिका और वाणी थांदी। और अगला मैसेज है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, ज़ियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। एक और मैसेज है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़।

कक्कड़ से। मिहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने हमें मेल किया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। पुलिस पब्लिक फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं और कोशिश रहेगी कि ये ज़रूर हम आपको गीत सुनवाएं। और अगली जो फरमाइश आई है वो है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से, सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी और साथ में हैं प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। एक और मैसेज ले लेते हैं गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से। राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा ने हमें मेल किया है और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये अगला गाना। जी हाँ, आप ही की फरमाइश थी, आप ही में से किसी की फरमाइश थी कि लता मंगेशकर का और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उनको कोई गीत सुनना था, तो इनकी फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में कई कई वादे होते हैं और कुछ वादे तो हैं हमसे टूट जाते हैं और कुछ जो है ज़िंदगी भर हम उस वादे को पूरा करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। और कहते हैं कि ज़िंदगी में आप किसी को भी चुनिए, कोई भी वादा करिए, उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करिए। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि जो इतने प्यार से आप हमें मैसेज करते हैं, मेल भेजते हैं, हम आपके नाम को ज़रूर लें। और गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली ने हमें मेल किया है और अगला जो नाम है वो भी हम ले लेते हैं। अगला नाम है 16 नंबर वार्ड से गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी और सोमवार रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी और इनके साथ है लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा चौधरी, कुमारी वंदना मराठा, भाव मराठा। और इसके बाद हमें मैसेज जो है बहुत लोगों के मिल रहे हैं और उन लोगों के नाम हम लें। इससे पहले आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में गाया ये खूबसूरत गीत।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत एहसास है। हाथ थामे रखना कि दुनिया में भीड़ भारी है, खो न जाऊं कहीं मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। यूं तो अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा अगर हमराज मिल जाए जो हमारी भी जिम्मेदारी ले ले, तो ज़िंदगी तो भाई क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ इस खूबसूरती से गाया इस गीत को महेंद्र कपूर ने, जो आज भी हम बहुत पसंद करते हैं। और पसंद करने वालों की फहरिस्त भी बहुत लंबी है, उनके नाम भी ले लेते हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर से इंदौर, मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे ने हमें मैसेज किया है। और अगला जो मैसेज हमें मिला है वो है मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, निहारिका और हार्दिक के साथ वंश भट्टा ने हमें मैसेज किया है। गांव लोहगढ़ ठाकुना वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह ने हमें मैसेज किया है। और अगला मैसेज जो है वो है गुन्नौर से आदिल कमर का, फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, और इन्होंने हमें मैसेज किया है। और एक और मैसेज आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा का। जी हाँ, और इन्होंने बताया है कि रात की तन्हाई में एक छोटे से कस्बे से ये हमें इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और बस हमारी भी कोशिश रहती है कि आप जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, बस दिल से हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। और अस्तपुरा जिला मऊ से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, और इनके साथ हैं बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद का हमें मैसेज मिला है। किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल का हमें मेल आया है। और बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा का हमें मेल आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ और सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जी हाँ, प्रीत की लगन ही कुछ ऐसी होती है कि जब दिल ना जुड़ने वाले हों तो भी जुड़ जाते हैं, एहसास जुड़ जाते हैं, मोहब्बत हो जाती है। और कुछ ऐसी ही मोहब्बत हो गई है आपको हमसे और हमको आपसे। जी हाँ, बहुत से ऐसे मैसेज मेल हमें मिलते हैं, लेकिन समय की कुछ ऐसी पाबंदी रहती है हमारे पास कि हम उन नामों को शामिल भी नहीं कर पाते, लेकिन चलते चलते हम कुछ और मेल ले लेते हैं। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का हमें मेल आया है, और हमें मैसेज करने वाले जो हैं वो हैं चिरमिरी कुर्सिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे ने हमें मैसेज किया है। अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, सादिक अंसारी का हमें मैसेज आया है, और एक मैसेज

मणि रेडियो श्रोता क्लब से मैसेज मिला है हमें, और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से मैसेज किया है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, और खलीफा की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। और इसी के साथ अगला जो मैसेज है वो है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का। विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे का हमें मैसेज मिला है मित्रनगर से। और अगला मैसेज हम पढ़ें, इससे पहले हम आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों साथी समझदार हो या ना समझ हो, अगर मोहब्बत हो तो साथ ज़िंदगी भर निभाया जा सकता है। और कुछ हमारा भी साथ आपके साथ यूं ही बना रहता है कि हर रोज़ कार्यक्रम में हम आपके समक्ष हाजिर हो जाते हैं कुछ चुनिंदा गीतों के साथ और आपके मेल के साथ। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए दो तीन मैसेज और ले लेते हैं। और दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमें मैसेज किया है बसंत कुमार सिन्हा ने, और इसके बाद जो मैसेज हमें मिला है वो, इनका नाम तो हम ले ही चुके हैं, और ताज मंजिल लक्कड़ बाज़ार खंडवा से हमें मैसेज किया है मोहम्मद रफ़ीक पवार, बेनज़ीर कौसर, साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराडे, वनीता गंगराडे और मोहम्मद हसनैन पवार का हमें मैसेज मिला है। और उम्मीद करते हैं कि अगले कार्यक्रम में फिर आपके नामों को ज़रूर शामिल करेंगे। और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सबकी फरमाइश से, आप सबकी पसंद से।

सी खूबसूरत गीत के साथ इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

0: मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर बल दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों तथा व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 4 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को इस वर्ष की विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और ये इसकी बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 45 टन चिकित्सा सामग्री भेज चुका है और जरूरत के अनुसार आगे भी मदद देने को तैयार है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसियन शहर के पास स्थित बर्गिन स्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnership.

जिसमें हम लेकर आते हैं एक कलाकार, और उस कलाकार का जो फिल्मी करियर होता है उसके साथ आगे बढ़ते हैं, साथ होते हैं गीत, और 1:10 का समय भी फिल्मी गीतों पर आधारित ही कार्यक्रम होता है जिसका नाम होता है गीत सुनहरे, यानी कि गोल्डन एरा का वो फिल्म संगीत जिसे आज हम सुनते हैं, यानी कि वो 60-70-80 का दशक का संगीत जिसे आज जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं। गीत बहार कार्यक्रम आप सुनते हैं 2:10 पर, जिसमें लेकर आते हैं हम नॉन स्टॉप फिल्म संगीत, और 3:10 का समय भी होता है गजल गीत पर आधारित कार्यक्रम का। उसके बाद भी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो 12:10 हो चले हैं, समय हो चला है कार्यक्रम आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का। और आज के इस कार्यक्रम में भी एक बात करने वाले हम एक कलाकार की, जी हाँ, या फिर कहें एक शायर की, जिसने फिल्मों को अदब की जुबान दी। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं उस शायर को जिसने उर्दू अदब की नफासत को हिंदी सिनेमा के गीतों में उतार दिया। वो शायर जिसकी कलम ने इश्क को भी लिखा, तन्हाई को भी, और इंसानी जज्बातों को भी। नाम था शहरयार। 16 जून 1936 को उत्तर प्रदेश के आंवला में जन्मे अखलाक मोहम्मद खान ने आगे चलकर शहरयार के नाम से ऐसी पहचान बनाई कि उर्दू शायरी और फिल्म संगीत दोनों की दुनिया उन्हें सलाम करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे शहरयार के साथ में, गीतों के साथ में, आपका दोस्त अतुल कार्यक्रम में।

जी हाँ, जैसा कि अक्सर होता है और बहुत सारे कलाकारों की जब हम बात करते हैं, उनके करियर की बात करते हैं, तो एक कॉमन बात बहुत निकल कर आती है, जी हाँ, कि वो जो कलाकार अदाकारा कुछ और करना चाहते हैं लेकिन कुछ और कर जाते हैं। ऐसा ही कुछ शहरयार के साथ भी था। पिता की इच्छा कुछ और थी और बेटे का रास्ता कुछ और। बहुत कम लोग जानते हैं कि शहरयार के पिता चाहते थे कि बेटा पुलिस अधिकारी बने, लेकिन युवा अखलाक मोहम्मद खान ने का मन साहित्य और शायरी में बसता था। इसी जुनून ने उन्हें पहुंचा दिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जहां उन्होंने पढ़ाई की, शोध किया यानी कि रिसर्च की, और बाद में उर्दू विभाग में अध्यापन भी किया। 1966 में वे AMU में व्याख्याता बने और आगे चलकर उर्दू विभाग के अध्यक्ष भी रहे। उनका पहला काव्य संग्रह इस्म आज़म 1965 में प्रकाशित हुआ, जिसने साहित्यिक जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और वहीं से कहते हैं कि उनका जो फिल्मी करियर, वहीं से अपना परवान चढ़ा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में हम बात कर रहे हैं शहरयार की। कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। ipradiodelhi@gmail.com पर अपने संदेश या अपनी बातें भेजकर, हमारा ईमेल एड्रेस ipradiodelhi@gmail.com। बात कर रहे हैं शहरयार की। जी हाँ, फिल्मों में उनका करियर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, अगर उसकी बात करें तो शहरयार का फिल्मी सफ़र किसी योजना का हिस्सा नहीं था, यानी कि कोई ऐसा प्लान नहीं था। वे मुंबई जाकर

संघर्ष करने वाले गीतकार नहीं थे। दरअसल फिल्मकार मुजफ्फर अली उनके मित्र थे। जब मुजफ्फर अली ने अपनी पहली फिल्म गमन बनाई तो उन्होंने शहरयार की गजलों को फिल्मों में शामिल किया। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, और अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारों जैसी रचनाओं ने उन्हें फिल्मी दुनिया में अलग पहचान दिलाई। तो यहीं से अगर कहा जाए तो उनका, हालांकि कहा जाता है कि फिल्मी करियर उनका बहुत लिमिटेड रहा, बहुत छोटा रहा, लेकिन जितना भी रहा वो गीत गजल आज भी जब हम सुनते हैं तो उस दौर में चले जाते हैं और बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं।

जी हाँ, कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में आज हम बात कर रहे हैं शहरयार की। हमने बात की उनका फिल्मी करियर कैसे स्टार्ट हुआ, हमने बात की गमन की, और ये गज़ल भी जो अभी आपने सुनी। उसके बाद अगर बात करें तो उम्र अफजान, जी हाँ, बात करें अगर उनकी शायरी की तो अमर हो गई वो इस फिल्म से। 1981 में आई फिल्म उम्र अफजान ने शहरयार को अमर बना दिया। संगीतकार खयाम की धुनें और शहरयार की शायरी, ये जो संगम बना वो भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास की सबसे खूबसूरत जोड़ियों, साझेदारियों में गिना जाता है। इन आंखों की मस्ती के ये क्या जगह है दोस्तों, दिल चीज क्या है। अगर इन सारे गीतों की बात करें तो ये केवल गीत नहीं बल्कि कहा जाए तो साहित्यिक रचनाएं हैं। आज भी इन गजलों को उर्दू अदब और फिल्म संगीत के श्रेष्ठ उदाहरणों में गिना जाता है।

आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल, 12:42 और 37 सेकंड का समय, कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शहरयार की। और कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं, मैं हूं आपका दोस्त अतुल। जी हां, बात की हमने शहरयार की फिल्मी करियर की और उनके जो शुरुआती दौर की बात करी, लेकिन बात करें अगर उनकी सफलता की जो उनको मिली, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। फिल्मी सफलता के बाद भी शहरयार ने खुद को पूरी तरह, जी हाँ, कहा जाता है कि पूरी तरह बॉलीवुड के हवाले नहीं किया। एक मज़ेदार बात यह है कि जब उनकी लोकप्रियता बढ़ी, यानी कि जब वो फेमस हुए, तब कई बड़े निर्माता निर्देशक उन्हें लगातार फिल्में ऑफर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम फिल्मों के लिए लिखा। उन्होंने स्वयं कहा था कि वे गीतों की दुकान नहीं बनना चाहते हैं। यही कारण है कि उनकी फिल्मोग्राफी या फिल्मी करियर, जिसे हम कहें, बहुत छोटा है, लेकिन गीत जो उन्होंने लिख दिए, गज़लें जो लिख दी, आज भी गुनगुनाई जाती हैं। तो आज का ये कार्यक्रम माध्यम बना है शहरयार के उन गीतों को सुनने का, गुनगुनाने का, जिसके सहारे आज हम कार्यक्रम में बढ़ते चल रहे हैं आगे।

शहरयार को अगर वैसे तो कहें बहुत पहचान मिली, बहुत शोहरत मिली फिल्मी करियर में। लिमिटेड करियर रहा, जैसा कि अभी हमने सुना था कि बहुत कम फिल्में की, लेकिन जितनी फिल्में की, जितने गीत लिखे, जितनी गज़लें लिखी, आज भी पसंद की जाती हैं। लेकिन अगर उनके करियर की बात करें तो शोहरत में जो उनको मिली उसमें चार चांद तब लगे जब उन्हें साहित्य और शायरी में उनके योगदान के लिए बहुत सम्मान मिला, भरपूर सम्मान मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको 1987 में मिला ख्वाब के दरबंद हैं जो उन्होंने लिखा उसके लिए, और 2008 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्दू साहित्य के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उनको मिला। वे ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले चुनिंदा उर्दू साहित्यकारों में शामिल हैं। यह सम्मान केवल एक शायर को नहीं बल्कि पूरी उर्दू शायरी की परंपरा को मिला था। ऐसे थे शहरयार।

शहरयार से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अगर बातों की बात करें, जी हाँ फैक्ट की बात करें, तो वे जीवन भर अलीगढ़ में रहे, फिल्मी करियर के लिए मुंबई नहीं बसे। वे मशायरों के बेहद लोकप्रिय शायर थे और शहरयार जो है साहित्यिक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया, यानी एडिटिंग भी की, एडिटर भी रहे और अकादमिक जीवन को भी कभी नहीं छोड़ा। उनकी शायरी में प्रेम के साथ साथ अकेलापन, आधुनिक जीवन की बेचैनी और इंसानी संवेदनाएँ प्रमुख विषय रहीं। उनकी पहचान केवल फिल्मी गीतकार की नहीं बल्कि आधुनिक उर्दू कविता के प्रमुख स्तंभों में होती है। और कहा जाता है कि शायर कभी नहीं मरते। 13 फरवरी 2012 को शहरयार इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन सच तो यह है कि शायर कभी नहीं जाते। वे अपनी नज़मों में रहते हैं, गज़लों में रहते हैं और उन आवाज़ों में रहते हैं जो उनकी पंक्तियाँ गुनगुनाती हैं। शहरयार ने एक बार लिखा था कि ख्वाबों का संसार इंसान को जिंदा रखता है। आज भी जब इन आंखों की मस्ती या दिल चीज क्या है सुनाई देता है, तो महसूस होता है कि शहरयार कहीं आसपास ही है। इसी एहसास के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने संदेशों के माध्यम से बता सकते हैं। इस कार्यक्रम का जो है क्लोजिंग अगर कहें, अंत कर रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, अपने दोस्त अतुल को दीजिए इजाजत।

0: इसी के साथ आज का सुनो का सफरनामा यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं कुछ ही पलों में 1 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबे चंपा कोरबा थर्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 755 करोड़ रुपए है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इस परियोजना में चंपा और कोरबा के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण शामिल है, जिसमें पहले से मंजूर हो चुके मडवा रानी सारकगुंडिया सेक्शन को शामिल नहीं किया गया है। इस कॉरिडोर की पहचान भारतीय रेल के मिशन 3000 MT और हाई डेंसिटी सिटी नेटवर्क कॉरिडोर के अंतर्गत की गई है, जिनका उद्देश्य माल ढुलाई को और बेहतर बनाना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अफ्रीकी संघ की वर्चुअल शिखर बैठक में भाग लिया। बैठक में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन के लिए $1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। भारतीय महिला हॉकी टीम FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS राघु। Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Evian, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnership, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark in Arm campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also

0: तो बताइए बताइए।
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: तुमसे
1: शादी का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाबा,
1: सुनो तो, सुनो ना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप
2: जी हाँ आप भी मुस्कुराइए। कल आज और कल फिल्म से गीत आपने सुना, 1971 की वो फिल्म। इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी किशोर कुमार और आशा भोसले ने। जी हाँ आप हैं गीत सुन रहे कार्यक्रम में गोल्डन एरा का वो फिल्म संगीत जिसे लेकर आते हैं हम इस कार्यक्रम में, यानी 60, 70, 80 का वो दशक जिसे कहा जाता है सुनहरा दौर, या फिर कहें जिसे माना जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो दौर जो शायद कभी भी लौट कर नहीं आएगा। आज जब हम लगभग 50 साल बाद या फिर कहें उससे भी और ज़्यादा समय बाद इन गीतों को सुन रहे हैं, तब भी देखिए ना चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है। तो ऐसा था वो दौर, ऐसा ही रहने वाला है आज का ये कार्यक्रम खूबसूरत, जिसमें ऐसे गीतों के साथ हम बढ़ते चलेंगे आगे। कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं iparadiodelhi@gmail.com पर मेल भेजकर आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। आपके साथ आपका दोस्त अतुल

0: शैतान है आँखें,
1: हैवान है आँखें,
0: शैतान है आँखें,
1: हैवान है आँखें,
0: शैतान है आँखें,
1: हैवान है आँखें,
0: शैतान है आँखें,
1: हैवान है
0: आँखें, शैतान है आँखें,
1: हैवान है आँखें,
0: शैतान है आँखें। आँखों का इतना वर्णन जी, आँखों से तो मोहब्बत भी झलकती है, आँखों से तो मोहब्बत भी नज़ाकत पेश करती है। महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में गीत आपने सुना आदत से मजबूर फिल्म से, और कार्यक्रम में आगे बढ़ें और मोहम्मद रफ़ी का एक खूबसूरत गीत जब आप सुनेंगे तो मुझे तो पूरा यकीन है, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी।

हंसते जख्म फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और गीत जब सुना होगा आपने, 1973 में हम ले गए थे इस गीत के माध्यम से। जी हाँ, अब से यानी कि लगभग 53 साल पहले वो दौर था इन खूबसूरत फिल्मों का, इन खूबसूरत गीतों का, इन खूबसूरत कलाकारों का, इन खूबसूरत गायकों का, जिन्हें हम आज भी जब सुनते हैं तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यही मकसद है इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है गीत सुनहरे, यानी कि गोल्डन एरा का फिल्म संगीत, जिसे लेकर आते हैं हम आकाशवाणी के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है मुझे, यानी आपके दोस्त अतुल को।

कुली फिल्म का एक खूबसूरत गीत आपने सुना, शब्बीर कुमार और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की आवाज़ में। और गीत आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे में, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। 1:41 और 51 सेकंड का समय। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त

सागर फिल्म कहेगी एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज़ और बहुत सारी यादें इस गीत के साथ हमारी ताज़ा हो गई है ना भाई। तो कार्यक्रम में देखें, इन गीतों के साथ, इन यादों के साथ हम बढ़ते चले। कार्यक्रम का नाम था गीत सुनहरे, यानी कि उस दौर के वो सुनहरे गीत जिसे हम कहते हैं गोल्डन एरा। इन गीतों के साथ आज हम बढ़ते चले कार्यक्रम में, और बढ़ते बढ़ते देखिए वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से समय शायद इससे ज़्यादा परमिशन या फिर कहीं की इजाज़त नहीं देगा। फिर किसी कार्यक्रम में जरूर मिलेंगे ऐसे ही और भी गीतों के साथ, जो कि अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, त्रिशूल फिल्म से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। यह आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में रात्रि के 2 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात

0: व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की और दोनों देशों की पुरानी मित्रता को और मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग के साथ बैठक में व्यापार, वाणिज्य और भविष्य की प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वो जल्दबाजी में बुआई ना करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वो बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनसीआर के नियोजित और संतुलित विकास, परिवहन और संपर्क सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल पी आर शंकर ने नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की नियुक्ति की आलोचना की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो एआई की मदद से तैयार किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Naam campaign. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world. Be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarv Jan Hitaay Sarv Jan Sukhaay has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people, and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnership should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with

कुछ तकनीकी कारणों से ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। कार्यक्रम नॉन स्टॉप फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप हैं आकाशवाणी के AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में 3 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन संबंधों और व्यापार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ बैठक में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने

कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और गालिब गजल के सरताज थे और हैं। उनका कलाम आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना उनके अपने दौर में था। उनका मुहावरा और बयान आज के दौर में भी मॉडर्न लगता है, इसलिए गायकों के लिए गालिब सदाबहार हैं। वो किसी भी लिबास में सज जाते हैं। जगजीत ने उन्हें मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अब वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। लीजिए सुनिए जी उमा द्वारा बजाया वायलिन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026। सुबह के 4:53 और 50 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि 5:20 पर आप देशभक्ति गीत का आनंद ले सकते हैं। पांच बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर मंजरी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: 6:45 का वक्त होगा कार्यक्रम रामचरित मानस का, जबकि 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। अब सुबह के 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने तथा आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस वर्ष के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्धऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और दूसरा काम ये कि जैसे हमने कहा 20 मिनट्स के बाद का ब्रेक, तो उस ब्रेक में आप कमर को बस सीधा करके बैठेंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ इतना भी यदि आप करते हैं 30 सेकंड्स के लिए हर 20 मिनट के बाद, तो आपको गर्दन में दर्द कभी नहीं हो सकता। हम क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे पॉस्चर में बैठ रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारी लाइफ का निर्माण करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये यौगिक रूप से हम प्राप्त करते हैं। सुबह जल्दी उठिए तो रात को अपने आप समय पे नींद आनी आरंभ हो जाएगी, लेट्स डू इट वाइस वर्सा। तो ये एक सेल्फ टॉक थेरेपी आपको सुबह उठने में बहुत लाभ देगी। हम कहते हैं जो तुम्हारी दादी खाती थी अगर तुम वो खा लो तो तुम कभी बीमार ना पड़ो, क्योंकि हमारी जितने भी पूर्वज हैं, हमारी दादी दादा नाना नानी, वो सब हम उन्हीं के तो डीएनए है ना आगे, तो वो सब जानते थे, बस हम उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है। देखिए आहार में तो हमें बस तीन नियम याद रखने हैं। पहला नियम कि पहले लोग घर पर भोजन करते थे और जब पेट में गुड़गुड़ होती थी तो बाहर जाते थे, है ना। और अभी उल्टा हो गया है, अभी हम जब भूख लगती है तो कहते हैं चलें बाहर, और जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो कहते हैं चलें घर। ठीक है, पेट में गुड़गुड़ में घर जाना इज ओके, लेकिन जब पेट में भूख लगे तो बाहर नहीं दौड़ें, यानी जो घर का भोजन है उसका सेवन करें। और आहार में हम सब ये ध्यान रखें, सिर्फ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रख लें कि जो भी भोजन डब्बे में पैक होकर के आ रहा है, फिर चाहे वो कितना डिजाइनर डब्बा है या कितना देसी डब्बा है, डब्बे का भोजन यानी पैक्ड फूड अगर आप अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा दें और साथ में चीनी, जो सफेद चीनी होती है, उसे अपनी डाइट से हटा दें, रिप्लेस कर दें गुड़ से, शक्कर से, तो वो आपके लिए लाभकारी है। और बस जब आपके सामने भोजन आए तो अपने आप से ये कुछ प्रश्न करने, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, है ना। और अगर मन में आ रहा है, दुविधा है खाऊं कि ना खाऊं, तो बिल्कुल मत खाओ।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये रूल याद रखना है, खाऊं कि ना खाऊं बिल्कुल मत खाओ, जाऊं कि ना जाऊं यानी फ्रेश होने तो जरूर जाओ। ये भी इतना भी अगर हम कर लें तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से सही रहेगा। और एक चीज और इस यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारा जो बॉडी शेप है ना, हम सब चाहते हैं वी शेप हो, यानी अच्छी सी चेस्ट, उससे अच्छे ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट और बिल्कुल पतली सी कमर। तो हम बस ऐसा भोजन ही करें कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट, उससे कम लंच और छोटा सा डिनर। लेकिन अभी हम उल्टा करने लगे, हम भागते दौड़ते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम ऑफिस में लंच करते हैं थोड़ा ज्यादा सा, और घर आके बहुत, इसीलिए अब हमारी बॉडी की शेप उल्टा भी बनती जा रही है ना। पेट तो इतने बड़े बड़े हो और अपर बॉडी आपकी कम हो, तो बस वी शेप भोजन करें तो निश्चित रूप से हम सब स्वस्थ रहेंगे।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब आनंद लेते हैं देशभक्ति गीत का।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए पंकज नौटियाल द्वारा गाया राग अहीर भैरव।